100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, शक संवत 1948 तदनुसार 29 जून 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारुरिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनका कपूर के समान गौर वर्ण है, जो साक्षात करुणा के अवतार हैं, जो समस्त सृष्टि के सार हैं, जो सांपों को हार के रूप में गले में धारण करते हैं, हम उन शिव संग पार्वती जी को प्रणाम करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि वे सदा हमारे हृदय में निवास करें और हमारा कल्याण करें।

मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहिं पद पंकज सेव। हे विश्वनाथ हे त्रिपुरारी आप हम सबके स्वामी हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जड़ चेतन नाग मनुष्य और देवता ये सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। अर्थात भगवान शिव केवल देवताओं के पूजनी नहीं है बल्कि वे महादेव हैं। दानव मानव पशु पक्षी और प्रकृति का कण कण उनकी ही शरण में रहता है। आपकी भक्ति निष्पक्ष और वे सबके दुखों को हरने वाले हम सबके भोलेनाथ हैं।

आप सुन रहे हैं भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि आकांक्षा के साथ 100.7 FM रेनबो पर। कहते हैं जहां स्वार्थ है वहां श्रद्धा नहीं हो सकती, और जहां श्रद्धा है वहां स्वार्थ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसलिए अपने आराध्य के सामने कभी शून्य मन शांत हृदय लेकर जाइए, स्वयं को प्रभु के सामने समक्ष समर्पित कर दीजिए। आप सब कुछ पालेंगे, संतोष, समृद्धि, सुकून।

सर्वे मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रकार के कल्याण करने वाली हमारी माँ हे कल्याणमयी हमारे सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। हे तीनों लोक की देवी गौरी हमें अपनी शरण के योग्य बनाए। नारायण की शक्ति हो आप। हम सभी भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें।

कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोए। आप सुन रहे हैं भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि, आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

जब हम ये मान लेते हैं कि पूरे संसार को चलाने वाला, सबका कृपा करने वाला और सबकी चिंता करने वाले कोई और नहीं बल्कि परम शक्ति स्वयं है, तो हमारे मन का अकारण भय और तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सच्ची भक्ति हमें यही भरोसा दिलाती है कि जिसने हमें संसार में भेजा है वे हमारी कृपा, हमारे कल्याण का भी ध्यान रखेंगे। इसलिए चिंता छोड़िए, प्रभु पर विश्वास रखिए और केवल अपने कर्म श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। इस कलियुग में मात्र दया ही धर्म का आधार है और सभी पापों का आधार अभिमान है। इसलिए स्वयं को प्रभु का दास मानकर उसके बनाए जीवन संसार की सेवा, दया ही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।

हनुमान नहीं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है और ना ही कोई उनके जैसा श्री राम के चरणों का परम प्रेमी अनुरागी है। संसार में सबसे बड़ा भाग्य धन या वैभव पाना नहीं है, बल्कि प्रभु के चरणों में अनन्य और निश्चल प्रेम होना है। हनुमान जी के इसी निष्काम भक्ति और समर्पण का इस संसार में प्रतीक है। प्रभु कृपा सदैव हम पर बनी रहे इसी मनोकामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजी हवा के साथ कुछ मोटिवेशनल थॉट्स और दिल को छू लेने वाले सॉन्ग्स के साथ अतीत कहने से लेकर देश और दुनिया की ताजा खबरें अब नहीं रहेंगी आपसे दूर, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आज गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आइए अब आपको बता दें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। सुबह 8:30 पर सुनिएगा कुछ पुराने नगमे, प्रोग्राम होगा सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9:00 से हमेशा की तरह लेकर आएंगे प्रोग्राम रसबहार और सुबह 9:45 पर विविधा के अंतर्गत लेकर आएंगे प्रोग्राम चित्रपट से। सुबह 11:00 से सुनिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम हम नवा, जिसे आज आप सुनेंगे ऋतु और आशीष के साथ। दिन में 3:00 से होगा प्रोग्राम म्यूजिक आवर। दिन में 3:45 पर सुनेगा प्रोग्राम हेल्थ मैगजीन, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा से दीप शिखा गुप्ता की बातचीत, विषय होगा जनरल हेल्थ। और शाम 4:00 से सुनना ना भूलेगा फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों, एक सकारात्मक सोच हमारी पूरी सुबह को बेहतर बना सकती है और एक बेहतर सुबह पूरे दिन को सफल बना सकती है। इसी सोच के साथ हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं मॉर्निंग मंत्रा। आज के मॉर्निंग मंत्रा में हम लाए हैं पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा के विचार। पंडित विष्णु शर्मा का कहना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। बल और धन कुछ समय के लिए साथ दे सकते हैं, लेकिन सही समय पर लिया गया बुद्धिमानी भरा निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है।

दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि नशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में बाधा है। यह व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य और भविष्य तीनों को कमजोर करता है। आइए नशा मुक्त समाज की दिशा में हर व्यक्ति को जागरूक करें और एक बेहतर कल की ओर बढ़ें। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले गाने की ओर। FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों अतीत के आईने में नजर डालें तो आज की तारीख है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की तारीख यानी 29 जून 1893 को भारत के महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महाल नोबिस का जन्म हुआ था और इनके योगदान को सम्मानित करते हुए हर साल आज की तारीख यानी

29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 29 जून 1934 को भारत की अग्रणी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी पहली उड़ान भरी। और फिलहाल अतीत के आईने से निकलकर हम आ जाते हैं वर्तमान में, और वर्तमान में यानी कि अभी ये प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और इसमें टाइम हुआ है सुबह के 7:31 और 25 सेकंड्स। आज है 29 जून 2026, दिन है सोमवार का और जो लोग अभी अभी सोकर उठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग है जी।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब हम बढ़ते हैं देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत राहत सामग्री लेकर वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान कल यानी संडे को आबिदजान पहुंचे। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से बड़ोदरा में शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अब किसी भी सरकारी पेंशन भोगी के अकाउंट से अतिरिक्त भुगतान की राशि बिना पूर्व सूचना के नहीं काट सकेंगे। रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

और गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब हम बढ़ते हैं अपने कानपुर महानगर से जुड़ी कुछ खबरों की तरफ। CSJMU यानी छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में संचालित विभिन्न कोर्सेस की खाली सीटों पर एडमिशन की लास्ट काउंसलिंग आज यानी 29 जून को होगी। इसके साथ ही कुलसचिव राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर और सभी संबद्ध

महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 में संचालित होने वाले कोर्सेस में एडमिशन की तारीख 5 जुलाई कर दी गई है। पुलिस उप निरीक्षक और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट आज और कल यानी सोमवार और मंगलवार को 37वीं वाहनी पीएसी मैदान में होगी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

और दोस्तों गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में खेल जगत से जुड़ी खबरों की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो आज 3 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसके अंतर्गत साउथ अफ्रीका और कनाडा, ब्राजील और जापान, जर्मनी और पराग्वे के बीच मैच खेले जाएंगे।

दोस्तों मौसम से जुड़ी खबर की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 39.4 और मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस। और आगामी 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के कारण 29-30 जून 2026 के मध्य गरज चमक बिजली और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है और लू एवं उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। फिलहाल मुझे यानी आज आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश और दुनिया की ताजा खबरें समाचारों के साथ। तो बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन, महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन

0: हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्नपत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन

0: अधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 07 01123717106 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। और प्रोग्राम का पहला गाना आ रहा है सेहरा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार रामलाल।

लता मंगेशकर की आवाज में अब आ रहा है अनपढ़ फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के लिखे गीत को सुरों में ढाला है मदन मोहन ने।

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में अब आ रहा है आंधी फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
1: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
0: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो जगाऊं अगर तुम कहो।
1: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
0: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
1: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
3: एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए

भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं।

0: से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप और इस समय प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम का अगला गाना आ रहा है पत्थर के सनम फिल्म से। आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर के, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम का अगला गाना आ रहा है कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोसले और अमिताभ बच्चन की आवाजों में अब आ रहा है द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी और ये संगीत है, जी हाँ, राहुल देव बर्मन का।

इस गाने के साथ ही आज का सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल मैं यानी आज आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में रस बहार प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

यू आर लिस्निंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। एक बार फिर शुरू हो गया एक नया दिन, नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ, और एक बार फिर हम हाजिर हैं रसभार प्रोग्राम के साथ। कहते हैं कि हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, ठीक उसी तरह हर नए सप्ताह का पहला वर्किंग डे भी हमारी लाइफ में नए टारगेट्स और नई एनर्जी लेकर आता है। आज रसभार प्रोग्राम में हम बात करेंगे वर्किंग डेज के पहले दिन की।

जी हाँ दोस्तों, वीक ऑफ के बाद जब अलार्म की आवाज फिर से सुनाई देती है तो मन कुछ पल के लिए यही सोचता है कि काश छुट्टियां थोड़ी और होती। लेकिन लाइफ कभी रुकती नहीं है। छुट्टियों के बाद शुरू हुआ सप्ताह का ये पहला दिन केवल ऑफिस, स्कूल, बैंक, अस्पताल या किसी संस्थान में लौटने का दिन नहीं होता, बल्कि ये अपने अधूरे सपनों को फिर से स्पीड देने का दिन होता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सक्सेस किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाती हैं।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रसबहार। और आज रसबहार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि छुट्टियों के बाद सप्ताह

सप्ताह के पहले वर्किंग डेज की शुरुआत कैसे करें? अक्सर देखा जाता है कि सप्ताह के पहले दिन लोग थोड़े सुस्त रहते हैं। सप्ताह भर के कामों का प्रेशर, अधूरे टारगेट्स और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मन में टेंशन पैदा कर देती है। लेकिन अगर हम वर्किंग डेज के पहले दिन को उत्साह और पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करें तो पूरा वीक बेहतर बन सकता है। वर्किंग डेज के पहले दिन और हम क्या क्या करें जिससे कि हमारा पूरा सप्ताह ही सक्सेसफुल बन जाए, आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस गाने के बाद।

दोस्तों आज के रसभर प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि एक सफल सप्ताह की शुरुआत कैसे करें। तो कुछ अच्छी आदतों से हम एक सफल सप्ताह की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह टाइम पर उठना, थोड़ी देर एक्सरसाइज या योग करना, पौष्टिक नाश्ता करना और दिन भर के कामों की लिस्ट बनाना हमें व्यवस्थित और आत्मविश्वासी बनाता है। वर्किंग प्लेस पर पहुंचकर अपने सहकर्मियों को मुस्कुराकर अभिवादन करना, एक दूसरे का हालचाल पूछना और सहयोग की भावना से काम करना वर्किंग प्लेस का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बनाता है। याद रखिए, आपका अच्छा बिहेवियर भी हमारी सक्सेस की एक इंपॉर्टेंट चाबी है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
2: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat।
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
2: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और आज रस बहार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि छुट्टियों के बाद जब हम अपने अपने काम पर वापस लौटते हैं तो वर्किंग डेज के पहले दिन की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में टाइम की इंपॉर्टेंस पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

जो इंसान समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। इसलिए पहले वर्किंग डे पर यह तय करें कि हम टाइम पर अपने सभी काम पूरे करेंगे। और फिलहाल अभी टाइम हुआ है कि हम आपको सुनवाएं एक बेहतरीन गाना।

दोस्तों, जब कोई नया सप्ताह शुरू होता है तो ये जो पहला वर्किंग डे होता है ना, वो हमें एक नया मौका देता है कि हम पिछली गलतियों से सीखें और इस बार कुछ बेहतर करें। अगर पिछले सप्ताह कोई काम अधूरा रह गया हो, कोई टारगेट पूरा ना हो पाया हो, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सप्ताह का पहला वर्किंग डे हमें फिर से शुरुआत करने का मौका देता है। और जब हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, वो कुछ अलग काम नहीं करते, लेकिन उनके काम करने का तरीका थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है। फिलहाल अभी हम बढ़ रहे हैं रसबहार प्रोग्राम के अगले गाने की ओर।

दोस्तों रसभर प्रोग्राम के आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि हर सोमवार एक नई किताब का पहला पन्ना है और ये हमारे हाथ में है कि हम उस पन्ने पर शिकायत लिखते हैं या सफलता की नई कहानी। फिलहाल रसभर प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर में हम लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम विविधा। तो बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 9:45 हो चुके हैं और विविधा के अंतर्गत हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम चित्रपट से। चित्रपट से प्रोग्राम का ये पहला गाना आ रहा है गुरु फिल्म से, आवाज है चिन्मयी कीर्ति और साथियों की, म्यूजिक है यार रहमान का और लिरिक्स हैं गुलजार की।

चित्रपट से प्रोग्राम का आखिरी गाना आ रहा है यमला पगला दीवाना मूवी से। आवाजें हैं ममता शर्मा और जावेद अली की। आप इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए और चित्रपट से प्रोग्राम से मुझे यानी अजय आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियंस ऑफ द ब्लू हेरोजाइन दिया गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया और सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है।

0: इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस अवसर के वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। अयोध्या में श्रीराम मंदिर दान प्रकरण में सभी 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस 8 आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई निगरानी में जांच की मांग की गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी दाखिल एक याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में ऑडिट और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सहारनपुर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1,31,00,000 रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए गाजियाबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 26 एटीएम कार्ड, 24 बैंक पासबुक, 19 चेकबुक और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी संभाग के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आज सुबह राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा?
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
6: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10 बजकर के ठीक 3 मिनट हुए हैं और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और इस समय प्रोग्राम जो चलने वाला है, शुरू हो चुका है, वो है सुपर हिट सॉन्ग्स। जी हाँ, सुपर हिट सॉन्ग्स, जबकि आपको मिलते हैं बैक टू बैक खूबसूरत सुपर हिट सॉन्ग्स की झड़ी और इस झड़ी में आप खो जाएं। तो इस झड़ी को शुरू करते इस खूबसूरत से गाने के साथ और ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। ये रहा आज के प्रोग्राम का पहला सुपर हिट सॉन्ग।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।

सुपर हिट सॉन्ग्स, और इस आखिरी गाने के साथ प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग यही वाइंड अप करना होगा। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, उसमें हम ही रहेंगे आपके साथ। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और मेरे साथ मेरी हम नवा हैं
1: आरजे रितु। स्वीकार कीजिए श्रोताओं मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीष तुम्हें भी नमस्कार।
0: जी हाँ, स्वागत और नमस्कार के बाद अब हम बढ़ते रितु, अभी थोड़ा सा एक मैं आपसे शेयर करूंगा, एक घटना शेयर करूंगा जो मैं सुबह आ रहा था जिसने मेरे मन को बहुत आहत किया। मैं सुबह आ रहा था और अपनी लेन पर आ रहा था, सड़क से अपनी साइट पर आ रहा था, लेकिन अचानक से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा।
1: ओहो कैसे?
0: अरे भाई मैं अपनी लेन पर आ रहा था लेकिन तभी अचानक से एक स्कूटी वाला जो है बिल्कुल उल्टी दिशा में मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था और मैंने जो है एक क्षण में उसको देखा और मैंने अपनी जो बाइक थी उसको जो है हल्का सा मोड़ लिया और मैं मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो भाई बड़ा ही निवेदन है, अनुरोध है।
1: हाँ।

0: बिल्कुल आशीष, वैसे ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिल जाती हैं सड़क पर
1: जी।
0: लोग हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं और इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता है कुछ कि हमें कौन से साइड से जाना है, क्या करना है। और
1: अच्छा, साइड की भी बात है ना, इसके साथ ही साथ जो है कई लोगों को आपने देखा होगा कि हेलमेट नहीं लगाते हैं, या फिर हेलमेट को लगाते हैं तो सिर्फ जो है ना उससे चालान से बचने के लिए
0: बस,
1: और बस उस चौराहे पर हेलमेट लगा लिया जहां कैमरे लगे या कोई ट्रैफिक पुलिस का सिपाही लगा हुआ है, या फिर उसके बाद अपना उस हेलमेट को उन्होंने हाथ में टांग लिया या फिर उन्होंने घुटने में टांग लिया।
0: बिल्कुल, और कभी कभी तो आशीष देखा है बच्चों को कि वो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए तो घर से लगा लेते हैं हेलमेट, और जैसे ही घर से थोड़ा दूर जाते हैं और वो हेलमेट उतार करके रख लेते हैं। लेकिन ये गलत है क्योंकि ये हमारी सुरक्षा है, हेलमेट लगाना ये कोई शौक नहीं है।
1: जी जी है। और एक और चीज जो बहुत देखने में आती है, जब कभी भी आप जो है ट्रैफिक सिग्नल में फंसेंगी है ना, जब क्रॉसिंग बंद होती है,
0: बिल्कुल,
1: तब जो है ना किस तरह से लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं ना, नीचे से लुढ़का कर झुका कर किसी तरह से, ये है कि बस हम जल्दी से निकल जाएं।
0: बिल्कुल, और इस जल्दबाजी में कितनी दुर्घटना हो जाती हैं और कितने ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं और ये सब जानते हैं लेकिन उसके बाद भी लोग ऐसा करते हैं।
1: अब बस इतना ही तो सोचना है कि भाई ये जो ट्रैफिक नियम बने हैं ना वो हमारी सहूलियत के लिए बने हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे दुर्घटना हमारी ही होगी। फिलहाल बातें बहुत सारी हम नवा प्रोग्राम में अभी करनी बाकी है, अभी शेयर कर लिए जाए जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं। क्यों
0: बिल्कुल आशीष, तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, इस पर हम बात करेंगे। पुस्तकों को बनाए अपना मित्र, ये भी हमारा एक बहुत
1: साथ ही साथ आज है 29 जून और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और हेल्दी हैबिट्स बेहतर जीवन, यानी कि अगर हमारी आदतें जो है ना वो अच्छी हैं तो हमारा जो जीवन है वो अपने आप ही बेहतर होगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे।
0: और रिश्तों में दरार आने पर हम क्या करें, ये भी आज का एक विषय है। साथ ही स्वयं सहायता समूह और रेसिपी भी होगी।
1: तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा प्रोग्राम में हम अपने लिसनर्स से शेयर करेंगे फिलहाल, लेकिन अभी वक्त है एक अच्छे से प्यारे से गाने का।
0: हाँ आशीष, लेकिन हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमें उनके जो मैसेजेस का इंतजार है वो हमारा एक विषय है, हेल्दी हैबिट्स बेहतर जीवन है ना। तो हम अपने श्रोताओं से आशा करते हैं कि वो हमारी इस ईमेल आईडी पर अपने विचार हमसे जरूर साझा करेंगे, और हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
1: जी हाँ, एक बार हम फिर से बता दें कि हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com, और आपको विचार अपने किस पर साझा करने, आपको विचार साझा करने हेल्दी हैबिट्स बेहतर जीवन।

0: तो आशीष, हमने शुरू कर दिया है अपना प्रोग्राम हम नवा इस गाने के साथ, और अब आगे बढ़ते हैं और हम बता दें कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। ये दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनकी प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: अब यह भी बता दिया जाए कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष भर अपेक्षाकृत गर्म जलवायु रहती है और यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। दुनिया के सबसे घने वर्षावन, दुर्लभ वनस्पतियां, रंग बिरंगे पक्षी और अनेक वन्य जीव इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रकृति का खजाना कहा जाता है।
0: बिल्कुल, और विश्व की लगभग 40% से अधिक जनसंख्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफी, कोको, केला, नारियल और मसाले इन्हीं क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ये क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हैं बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का भी आधार है।
1: भारत भी एक महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय देश है। हमारे देश में पश्चिमी घाट, सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्र जैव विविधता के अद्भुत उदाहरण है। यहां अनेक दुर्लभ जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं।
0: बिल्कुल आशीष, लेकिन आज ये क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण इनकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता खतरे में पड़ती जा रही है।
1: और यदि समय रहते हमने इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो इसका प्रभाव केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आशीष तुमने, प्रकृति का संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जल और ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है बल्कि पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और मानव जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल, और इन क्षेत्रों का संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण मिल सकेगा।
1: बिल्कुल।

0: आशीष, एक बात बताओ, तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है कि नहीं?
1: हाँ, बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, और जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये जो रेडियो है ना उसको ऑन कर लेता हूँ और एक तरफ जो है ना किताब ले लेता हूँ।
0: अच्छा, मतलब रेडियो सुनते सुनते किताब पढ़ते हो क्या?
1: बिल्कुल।
0: वाह, क्या बात है। वैसे आशीष, कहा जाता है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। एक सच्चा मित्र हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारी गलतियों को सुधारता है और कठिन समय में हमारा साथ देता है। ठीक उसी प्रकार पुस्तकें भी हमें ज्ञान, प्रेरणा और जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ऋतु। पुस्तकें ज्ञान का अथाह भंडार हैं। इनके माध्यम से हम इतिहास, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, स्वास्थ्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महान व्यक्तियों के जीवन संघर्ष और उनकी सफलताओं की कहानियां हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। पुस्तकें हमें केवल पढ़ना ही नहीं सिखाती, बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती हैं।
0: बिल्कुल, और आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी जीवन शैली को बदल दिया है। हालांकि तकनीक उपयोगी है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। छोटी छोटी जानकारियां तो हमें इंटरनेट से मिल जाती हैं, लेकिन गहन ज्ञान और विचारों की गहराई पुस्तकें ही हमें देती हैं। पुस्तकें हमारी एकाग्रता बढ़ाती हैं और धैर्यपूर्वक सीखने की आदत विकसित करती हैं।
1: पुस्तकों का एक और बड़ा गुण यह है ऋतु कि वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। जब हम अकेले होते हैं तब भी एक अच्छी पुस्तक हमारा मनोरंजन करती है, हमें नई दुनिया से परिचित कराती है और हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसलिए पुस्तकें वास्तव में हमारी सच्ची मित्र हैं।
0: बिल्कुल, और आशीष, विद्यार्थियों के लिए तो पुस्तकों का महत्व और भी अधिक है। नियमित अध्याय से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, शब्दावली बढ़ती है, लेखन और बोलने की क्षमता विकसित होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जो विद्यार्थी पुस्तकों से मित्रता कर लेते हैं, वे जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं।
1: हमें प्रतिदिन कुछ समय पुस्तकों के लिए जरूर निकालना चाहिए, चाहे कहानी की पुस्तक हो, प्रेरणादायक जीवनी हो, कविता संग्रह हो या ज्ञानवर्धक पुस्तक। हर पुस्तक हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। यदि हम पुस्तकों को अपना मित्र बना लें तो हमारा व्यक्तित्व अधिक परिपक्व, विचारशील और सफल बन सकता है।
0: बिल्कुल, और पुस्तकें केवल ज्ञान का स्रोत नहीं हैं, बल्कि जीवन की सच्ची मार्गदर्शक होती हैं। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि पुस्तकों को अपना मित्र बनाएंगे, पढ़ने की आदत विकसित करेंगे और ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करेंगे।
1: पुस्तकें ज्ञान की वो रोशनी है जो जीवन के अंधकार को दूर कर सफलता का मार्ग दिखाती है।
0: बिल्कुल आशीष, और बचपन में हमने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, जैसे कि चाचा चौधरी होती थी, नंदन आती थी, पराग आती थी, बहुत सारी छोटी बुक्स, पंचतंत्र की कथाएं जो होती थी, उनमें कितनी मॉरलिटी होती थी, मतलब उसमें कितनी अच्छी अच्छी कहानियां होती थी। तो अगर हमारे पेरेंट्स चाहें तो बच्चों को ये बुक्स ला करके दे सकते हैं, जैसे कि मोबाइल पकड़ा देते हैं या वो टीवी देखते हैं, तो उसकी जगह आप बुक्स दे सकते हैं। और वैसे जो बड़े हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनकी मतलब जिनके उपन्यास हैं, कहानी हैं, कहानी संग्रह हैं, तो वो भी ले सकते हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं, उनकी भी गबन है, गोदान है, बहुत सारी उनकी
1: दो
0: उपन्यास
1: बैलों की कथा,
0: दो बैलों की कथा,
1: बहुत अच्छी कहानी, ईदगाह,
0: बहुत अच्छी कहानी है।
1: अच्छा, कहानी में जब हम पढ़ना चालू करते हैं कहानियां, उपन्यास, तो जब वैसे तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, और लेकिन जैसे ही हम किताब पकड़ लेते हैं तो फिर ये लगता है कि अब इस किताब को पूरा ही कर लिया।
0: बिल्कुल ऐसा होता है, ये एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, होता है बुक्स में। और जैसे कि मन्नू भंडारी हैं, उनकी भी उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, कहानी संग्रह है उनके, एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, ये बहुत सारी उनके जो हैं कृतियां हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और चाहें तो पढ़ सकते हैं। मतलब अगर जो बुक्स के शौकीन नहीं है या जो नहीं

0: पढ़ते हैं, तो वो बुक्स को जरूर पढ़ें, अपने बच्चों को बुक्स से अवगत कराएं, बुक्स को उनका फ्रेंड्स बनाएं। और इसी के साथ हमारे साथ आज जुड़ी हैं आद्या, जिन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ही शौक है, तो देखें कि वो क्या बता रही हैं हमारे श्रोताओं को।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आद्या और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आज मैं बात करना चाहती हूं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है, और वो है बुक्स। हम सब ने सुना है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन कभी सोचा है कि आखिर एक किताब हमारी दोस्त कैसे बन जाती है? एक बुक वो दोस्त होती है जो हमें कभी जज नहीं करती, कभी बोर नहीं करती, और हमेशा हमें कुछ नया सिखाती है। वो हमें न्यू वर्ल्ड्स में लेके जाती है, नए कैरेक्टर्स से मिलवाती है, और हमें लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। मेरी खुद की रीडिंग जर्नी बचपन से शुरू हुई थी। मुझे आज भी याद है जब मम्मी मेरे लिए चाचा चौधरी की कॉमिक्स लाया करती थी। उसके अलावा मेरे पास छोटे छोटे चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडियाज और एक्टिविटी बुक्स भी हुआ करती थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये छोटी छोटी बुक्स मेरी पर्सनैलिटी को इतना शेप कर रही हैं। इन्होंने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ाई, मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प की, एंड मेरी इमेजिनेशन को इतना बढ़ा दिया कि मैंने खुद के दिमाग में छोटी सी दुनिया बना ली। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी रीडिंग चॉइसेस भी चेंज हुई। मैंने अलग अलग स्टोरीज पढ़ी, रोल डाल, फेमस फाइव, टिंकल कॉमिक्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और मुझे एक बुक गूज़बम्प्स भी बहुत पसंद थी। बचपन में मुझे कॉमिक्स और स्टोरीज तो एंटरटेनमेंट करती ही थी, लेकिन वो एक तरह से हमारे लिए एक्सरसाइज भी होती थी। हम इमेजिन करते थे कि कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर रहे थे और अपने माइंड में पूरी दुनिया क्रिएट कर रहे थे। आप समझ रहे हैं कितना ब्रेन स्टिमुलेट होता है इससे। बाद में मैंने फैंटेसी बुक्स भी पढ़ी, जैसे ट्वाइलाइट और अलग अलग, और फिर मुझे एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आया रिलेशनशिप्स, दूसरों के इमोशंस समझने में और सब चीज़ों में। लेकिन बुक्स का इम्पोर्टेंस सिर्फ स्टोरीज तक लिमिटेड नहीं है। रीडिंग हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। जैसे हमारे बॉडी को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज चाहिए होती है ना, वैसे ही हमारे ब्रेन को ग्रो करने के लिए मेंटल स्टिम्युलेशन चाहिए होती है। बुक्स हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं, वोकैबुलरी बढ़ाती हैं, क्रिएटिविटी को इन्हांस करती हैं, और हमें दूसरों के इमोशंस को समझने में हेल्प करती हैं। आज के टाइम में एक चीज़ तो हम सभी नोटिस कर रहे हैं कि चिल्ड्रन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कभी कभी बच्चे बिना डिवाइस के खाना भी नहीं खाते हैं, रोने लगते हैं। टेक्नोलॉजी यूज़फुल तो है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्क्रीन्स पर डिपेंडिंग हो जाएंगे तो इमेजिनेशन और इमेजिनेशन की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग मिलती है उससे, वो कम हो सकती है। इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही बुक्स को चिल्ड्रन की लाइफ का पार्ट बनाएं। शुरुआत सिंपल बुक्स, कॉमिक्स, एक्टिविटी बुक्स या शॉर्ट स्टोरीज से हो सकती है। पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ बैठकर स्टोरीज रीड कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और रीडिंग को एक फन एक्टिविटी बनाएं, तो बच्चों में नेचुरली रीडिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी। बुक्स को होमवर्क मत बनाइए, बुक्स को एक एडवेंचर बनाइए। क्योंकि जब एक चाइल्ड एक स्टोरी पढ़ता है तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखता, वो काइंडनेस, करेज, इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और पता नहीं क्या क्या सीखता है। एक बच्चा जो बुक्स के साथ ग्रो करता है, उसके अंदर एक पूरी दुनिया होती है आइडियाज़, इमेजिनेशन और नॉलेज की। तो आइए हम सब भी अपनी लाइफ में बुक्स को थोड़ी जगह दें। बच्चों को डिवाइसेस से पहले बुक्स से इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि एक अच्छी किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो हमें ग्रो करने के लिए होती है। थैंक यू दोस्तों, आप सुन रहे थे FM रेनबो कानपुर, और याद रखिए, एक अच्छी किताब हमेशा एक अच्छी दोस्त होती है। धन्यवाद।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी।
1: यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, और इस समय प्रोग्राम चल रहा है हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष, और मेरे साथ मेरी हम नवा हैं
1: ऋतु और आशीष। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और अब हम ऐसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सुखी और सफल जीवन की नींव होते हैं।
0: अब देखिए ऋतु, आज के आधुनिक युग में हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है। तकनीक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी

0: के बढ़ते उपयोग ने हमें अधिक समय तक बैठे रहने की आदत डाल दी है। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे समय में हेल्दी हैबिट्स यानी स्वस्थ आदतों को अपनाना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।
1: बिल्कुल आशीष, और यही हमारा टॉपिक है आज का, हेल्दी हैबिट्स बेहतर जीवन। स्वस्थ जीवन की शुरुआत संतुलित आहार से होती है। हमारे भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, दूध, अंकुरित अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। जंक फूड, अत्यधिक मीठा और तला भुना भोजन सीमित मात्रा में लेना चाहिए। जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा।
0: इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है। पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और बॉडी से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है।
1: बिल्कुल, और नियमित व्यायाम और योग स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, योग करना या कोई खेल खेलना हमारे शरीर को फिट और ऊर्जावान बनाए रखता है। योग केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर रही है।
0: अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद भी जरूरी है ऋतु। अक्सर लोग काम या मनोरंजन के कारण देर रात तक जागते रहते हैं जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल आशीष, और विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद हमारे मस्तिष्क को तरोताजा रखती है और कार्य क्षमता बढ़ाती है।
0: स्वस्थ आदतों में मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत महत्व है। सकारात्मक सोच, ध्यान, मेडिटेशन और परिवार के साथ समय बिताना मानसिक तनाव को कम करता है। हमें अपने जीवन में खुश रहने और दूसरों को खुश रखने की आदत विकसित करनी चाहिए।
1: इसके अलावा आशीष, व्यक्तिगत स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण हेल्दी हैबिट है। नियमित रूप से हाथ धोना, दांतों की सफाई करना और अपने आसपास साफ सफाई रखना हमें अनेक बीमारियों से बचाता है।
0: आज की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहने की जरूरत है। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थ न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि व्यक्ति के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए नशा मुक्त जीवन बहुत जरूरी है।
1: यदि हम इन छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में हिस्सा बना लें तो हम न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि जीवन में अधिक सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल भी बनेंगे।
0: याद रखिए, अच्छी आदतें ही अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की सबसे मजबूत नींव हैं। अच्छी आदतें आज अपनाइए ताकि कल एक स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य आपका इंतजार करे।
1: फिलहाल तो इंतजार कर रहा है हमारा एक सॉन्ग।
0: बिल्कुल।

0: और रितु, हमने अपने श्रोताओं से मेल मांगी थी कि हेल्दी हैबिट्स बेहतर जीवन के लिए, अगर आपके पास कोई विचार हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और हमारे पास एक मेल जो है वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रही है और ये भेजी है शिवांशी ने कल्याणपुर से। और इन्होंने लिखा है कि आशीष जी और रितु जी, आप दोनों का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक है और इस चीज़ के लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सकारात्मक पहल के साथ आज का हमारा बेहतर विचार है कि स्वस्थ जीवन शुरुआत सिर्फ अच्छे भोजन से नहीं बल्कि अच्छे विचारों से भी होती है।
1: और आगे लिखती हैं कि क्योंकि जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। सकारात्मक सोच हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है, तनाव कम करती है और जीवन में नई ऊर्जा भरती है। इसलिए हर दिन अपने मन में अच्छे विचारों को जगह दें, अच्छी आदतें अपनाएं और मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करें। याद रखिए, बेहतर विचार बेहतर आदतें और बेहतर जीवन की पहचान है।
0: बिल्कुल, और इनको मेल करने के लिए शिवांशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें कल्याणपुर से मेल भेजी थी। अच्छा रितु, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: चाहे रिश्ता माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का, दोस्तों का या किसी अपने का, हर रिश्ता विश्वास, सम्मान और प्रेम की डोर से बंधा होता है।
1: हाँ आशीष, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलत फहमियाँ, नाराजगी, व्यस्तता, अहंकार या संवाद की कमी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती हैं। ऐसे समय में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर रिश्ते में मतभेद हो सकते हैं। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें मनभेद बनने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल रितु, और जब भी किसी रिश्ते में दरार महसूस हो तो सबसे पहले शांत मन से सोचे कि समस्या की शुरुआत कहां से हुई। बिना पूरी बात जाने किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। कई बार जो बातें हमें सच लगती हैं वो केवल हमारी गलत फहमी भी हो सकती हैं।
1: बिल्कुल आशीष, रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है खुलकर और सम्मान पूर्वक बातचीत करना। अपनी बात कहें लेकिन सामने वाले की बात भी उतने ही धैर्य से सुने। जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तब समाधान का रास्ता निकलना आसान हो जाता है।
0: एक और जरूरी बात है ऋतु की, ईगो को रिश्तों से बड़ा

0: ना बनने दें, कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ ईगो प्रॉब्लम होती है, और लोग सिर्फ इस लिए बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहल वही क्यों करें। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो रिश्ता आपके लिए अनमोल है उसमें पहल करना हार नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की समझदारी होती है।
1: माफ करना और माफ़ी मांगना भी रिश्तों की मजबूती का आधार है। अगर गलती आपकी है तो बिना झिझक स्वीकार करें, और अगर सामने वाले से गलती हुई है तो अवसर मिलने पर उसे माफ़ करने का प्रयास करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर गलत व्यवहार को स्वीकार किया जाए, बल्कि जहां संभव हो रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जाए।
0: आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के साथ साथ कई बार दूर भी कर दिया है। आमने सामने की बातचीत की जगह मैसेजेस ने ले रखी है, इसलिए अपने प्रियजनों के लिए समय निकालिए। कुछ पल साथ बैठकर बात करना कई गलतफहमियों को खत्म कर सकता है।
1: इसके साथ ही हर रिश्ते में सम्मान बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। गुस्से में ऐसे शब्द ना कहें जो लंबे समय तक दिल को चोट पहुंचाएं। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले एक बार सोच बहुत जरूरी है।
0: और एक बात हमेशा याद रखें, हर रिश्ता हर परिस्थिति में नहीं बच पाता। अगर किसी रिश्ते में लगातार अपमान, हिंसा या असुरक्षा हो तो अपनी सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे मामलों में भरोसेमंद परिवारजनों, फ्रेंड्स या उचित विशेषज्ञ की हेल्प लेना सही कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल आशीष, और आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि रिश्ते किसी पौधे की तरह होते हैं, उन्हें समय के साथ देखभाल और अपनापन चाहिए होता है उन्हें। अगर हम नियमित रूप से इनकी देखभाल करें तो रिश्ते जीवन भर महकते रहते हैं।
0: बिल्कुल।

0: आशीष, आज के दिन की बात करें तो हम भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे मनाया जाता है और ये दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रोफेसर महाल नोबिस ने देश की आर्थिक योजनाओं और सांख्यिकी के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया था। उन्होंने ही 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में आंकड़ों के महत्व को रेखांकित करना है।
1: और बात करें सांख्यिकी में करियर की, तो सांख्यिकी का क्षेत्र वर्तमान डेटा संचालित दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता करियर विकल्पों में से एक है। ये गणित, कंप्यूटर विज्ञान और व्यावसायिक रणनीतियों का एक अनूठा मिश्रण है। प्रमुख करियर विकल्पों में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सांख्यिकीविद और बीमांकक शामिल हैं। और ऋतु, अब हम बात करने जा रहे हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। अब देखिए, जो स्वयं सहायता समूह होता है उसमें समूह के सदस्य नियमित रूप से छोटी राशि बचाते हैं जिसे एक साझा कोष में जमा किया जाता है, जिससे वे आपातकालीन जरूरतों और छोटे ऋणों के लिए एक दूसरे की मदद कर सके।
0: इसके साथ ही आशीष, समूह के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि लेदर वर्क, मसाला उद्योग, एम्ब्रॉयडरी और प्लास्टिक उत्पाद आदि बनाने की, जिससे कि सदस्यों को विभिन्न लघु उद्योगों में रोजगार मिल सके।
1: इसी तरह कानपुर देहात के झिंझक ब्लॉक के बजीत जसू गांव की महिलाएं मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम करके दूसरे लोगों के साथ अपने जीवन को रोशन कर रही हैं।
0: सरकार महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। योजनाओं के तहत कई महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही हैं। कानपुर देहात के झिंझक ब्लॉक के वजीत जजू गांव की महिलाओं ने बगिया बाबा नाम से स्वयं सहायता समूह बनाया है।
1: समूह की महिलाओं को मोमबत्ती के साथ अगरबत्ती, धूपबत्ती बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। इन्होंने कारोबार शुरू करने के लिए CCL से करीब 1,10,000 रुपए का लोन लेकर काम शुरू किया और अब समूह की महिलाएं कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
0: बगिया बाबा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने योजना के तहत मोमबत्ती के साथ अन्य उत्पादों को बनाने की भी ट्रेनिंग ली है। अब यही महिलाएं कारोबार को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने का कार्य कर रही हैं।
1: समूह की महिलाएं अब मिठाई के डिब्बे भी बना रही हैं और दोना पत्तल की मशीन भी लगा रही हैं। समूह की महिलाओं का लक्ष्य गाँव की अन्य महिलाओं को जोड़कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाना है।
0: आशीष, अगर कई लोग साथ में मिलकर आपसी सूझबूझ से किसी भी काम को करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। हाँ, और स्वयं सहायता समूह की सफलता का भी यही राज है।
1: जी हाँ, बिल्कुल यही राज है। फिलहाल हम बिल्कुल भी राज नहीं रखते और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं प्रोग्राम का ये अगला गाना।

0: और ऋतु, धीरे धीरे हम लोग भी हमनवा प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी पायदान पर आ चुके हैं, और इस आखिरी पायदान पर हम क्या बताते हैं?
1: मैं समझ गई, रेसिपी बताते हैं आशीष। और आज हम लेकर आए हैं छोलर दाल।
0: ये छोलर दाल बंगाल की एक बेहद प्रसिद्ध और पारंपरिक शाकाहारी डिश है, जिसे मुख्य रूप से चने की दाल से बनाया जाता है। ये दाल स्वाद में हल्की मीठी, सुगंधित और खड़े मसालों से भरपूर होती है।
1: क्या बात है आशीष। और सामग्री बता देते हैं हम अपने श्रोताओं को।
0: जी,
1: चने की दाल लेना है 1 कप, अच्छी तरह धोकर 1 घंटे के लिए भिगोई हुई।
0: जी,
1: ताजा नारियल 1/2 कप लेंगे, बारीक के टुकड़े में कटे हुए काजू जो है वो 8-10 लेंगे, और पानी 2.5 कप लेना है दाल उबालने के लिए, है ना, और किशमिश 1 बड़ा चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, चीनी 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं स्वाद के अनुसार, मीठा करने के लिए जैसा आप चाहें।
0: जी,
1: नमक स्वादानुसार, घी 2 से 3 चम्मच लेना है, और खड़े जो मसाले हैं वो है 1 तेज पत्ता, 2-3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1/2 चम्मच जीरा।
0: और जो बनाने की विधि है उसका, उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। स्टेप वन में आपको क्या करना है कि स्टेप वन में आपको दाल उबालनी है। भीगी हुई चने की दाल का पानी निकालें। कुकर में दाल, 2.5 कप पानी, हल्दी पाउडर और

0: थोड़ा नमक डालें। मध्यम आंच पर कुकर में 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं ताकि दाल गल जाए लेकिन साबुत बनी रहे, एकदम मैश ना हो। और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें धीरे धीरे। अब स्टेप 2 में आप मेवे और नारियल भूनें। एक पैन या कढ़ाई में 1 चम्मच घी गर्म करें, इसमें कटे हुए नारियल के टुकड़े, काजू और किशमिश डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें और इन्हें अलग प्लेट में निकाल कर रख लें। इसके बाद आपको तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए आपको उसी पैन या कढ़ाई में बचा हुआ घी डालें और गर्म करें। इसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी डालें। कुछ सेकेंड तक भूनें जब तक खुशबू ना आने लगे। अब इसमें अदरक का पेस्ट डालें और 1 मिनट तक पकाएं। और सबसे आखिरी में स्टेप 4 में आपको दाल मिलानी है। दाल मिलाने के लिए आपको क्या करना है कि पकी हुई उबली दाल को तड़के में डालें, इसमें भुने हुए नारियल, काजू और किशमिश मिला लें।
1: खा सकते
0: नहीं रोटी के साथ भी खा सकते हैं।
1: बिल्कुल, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और बहुत ही डिफरेंट दाल है आशीष, ये तुमने बताई है हमारे श्रोताओं को और मेरे लिए भी डिफरेंट है। तो बिल्कुल हम तो इसको ट्राई करेंगे ही करेंगे और हमारे श्रोता भी जरूर से ट्राई करेंगे।
0: जी हाँ, आप भी ट्राई करिए और हमारे श्रोता भी बिल्कुल ट्राई करें। फिलहाल अभी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम नवा प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। तो मुझे यानी आरजे आशीष
1: और मुझे यानी आरजे ऋतु को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे। यहां वो मुरादाबाद मंडल में लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों की समीक्षा और नए कार्यों की कार्ययोजना के संबंध में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री मुरादाबाद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री यहां मुरादाबाद सदर, मुरादाबाद देहात व कुंदर की विधानसभा क्षेत्रों और नगर निगम मुरादाबाद के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहां मुख्यमंत्री गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय परिसर का भी निरीक्षण करेंगे। परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान का लक्ष्य न केवल नियम लागू करना है बल्कि स्कूल परिवहन को एक सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी सेवा बनाना है। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी, साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन जांच की जाएगी। अभियान में प्रवर्तन दल नियमानुसार बसों के फिटनेस की जांच करेगा। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ चालान, वाहन निरुद्ध फिटनेस निलंबन ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल खतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक हुरमुज जल डमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमरीका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं तक चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, कासगंज, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, लखनऊ समेत आसपास के क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज चमक और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी 12:03 हो चुके हैं, प्रोग्राम शत्रुपा लेकर हाजिर है। तरन्नुम, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी लेडी लिसनर हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, ऐसे में आपको भी बदलना होगा अपना खान पान, अपना लाइफ स्टाइल। कैसे? सुनते रहिए रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

जी हाँ, फोटो। और फोटो जब महिलाएं खिंचवाती हैं तो बहुत ही मुस्कुरा के खिंचवाती हैं, बहुत ही उनको लगता है कि एक एक चीज परफेक्ट आनी चाहिए, यानी जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब पिक्चर परफेक्ट कब होती है? पिक्चर परफेक्ट जब होती है जब हमारी और आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर से हेल्दी हैं, अंदर से आप चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तभी आपका जो चेहरे पे नूर है, स्पार्क है, वो फोटो में नजर आएगा। ऐसे तो बहुत सारे मेकअप की चीज़ें हैं जो बाजार में मिलती हैं, लोग उसको लगा लेते हैं, लेकिन जब वो फोटो को देखते हैं, एक्चुअल फोटो जब उनके सामने आती है, तो ध्यान देते हैं वो कि भाई आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे हैं, या फिर उनको लगता है बहुत ही हम लीन नजर आ रहे हैं, बहुत ही ऐसे कैसे हो गया, कैसे ऐसे हो गया। लोग फिर राय देना शुरू करते हैं कि भाई ऐसा करो, इतना पानी पी लिया करो, ऐसा करो, सुबह उठ के ये सारी चीजें खा लिया करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये वाले सीड्स ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन आप बताइए कि क्या एकदम से जो पौधा होता है, जब हम बीज किसी जमीन की मिट्टी में बोते हैं, तो क्या एकदम से पौधा निकलता है? क्या एकदम से पौधे में फल आना शुरू हो जाते हैं? नहीं। इसी तरह हमारी और आपकी हेल्थ है। जब हम अपनी हेल्थ पे शुरू से लेकर एंड तक, एंड इन द सेंस कि सुबह से लेकर रात तक, जब हम अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ना सही थोड़ा सा भी ध्यान देते रहें, तो फिर हमारी जो हेल्थ है ना वो एकदम हेल्दी रहेगी। और ये किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ये सीट खा लो, वो सीट खा लो। यानी एकदम जब आप पिक्चर खींचेंगे ना तो पिक्चर परफेक्ट नजर आएगी। अब देखिए, मौसम बदल रहा है, कल से बहुत ज्यादा उमस है, परसों और भी ज्यादा उमस थी, हल्की बारिश हुई, लोग खुश हो गए कि भाई बारिश का मौसम आ गया है। अब जो लेडी होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनको क्या करना होता है? उनको तो भाई किचन में जाना ही जाना है, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे उमस का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, कोई भी मौसम हो। लेकिन किचन में जाते जाते लोग उनसे फरमाइशें करते हैं, ये खाना बनाओ, ये ऐसी रेसिपी तैयार करो, वो लोग भी फॉलो करती हैं कि भाई अब मौसम बदला है, तो जाहिर सी बात है खाने में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसी के साथ ज़रूरत है आपकी सेहत को लेके आपके खाने में तब्दीली लाने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस मौसम में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही साथ अपनी स्वच्छता का ख्याल रखिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली महिलाओं में होती हैं, जिनको बहुत जरूरत है उसको ध्यान देने की, साफ सफाई रखने की, सावधानी बरतने की, तभी आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो बरसात में हेल्दी रहने के लिए किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। और लोग आपको देख के कहेंगे कि कितनी खूबसूरत है, एकदम परम सुंदरी, बताएंगे। यस, इस ट्रैक के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: टॉल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
6: आई एम संध्या त्रिगुनी, बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
7: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
8: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

जी 12:20 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है, शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन हेल्थ की और कैसे औरतें जो हैं वो अपना ध्यान रख सकती हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि भाई अब परसों से या फिर कह लीजिए कल से बहुत सारी चीज़ें जो महिलाओं के हैं वो बदलने वाली हैं। स्कूल खुलने वाले हैं, जून जा रहा है और जब तक जून रहा लोगों ने बहुत एंजॉय किया, गर्मियों में छुट्टियाँ रहीं, लोग यहाँ गए वहाँ गए और जो एक टाइम टेबल था ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। मतलब ये था कि सुबह अगर जल्दी उठना है तो देर से सो के उठ रहे हैं, उसके बाद सुबह जैसे ही उठे तो थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज होती है, थोड़ा बहुत जो योग होता है, वो सारी चीज़ें दरकिनार करके सीधे किचन में जाते हैं। अरे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, खाने का भी टाइम आ गया है और लंच का भी टाइम आ गया है और नाश्ते का भी टाइम आ गया, बच्चे भी सो के उठ जाएंगे, सास को भी ये देना है, ससुर को भी ये करना है, मम्मी को ये करना है, पापा को ये करना है और उसमें बेचारी एक महिला, एक औरत दौड़ दौड़ के इतना काम करती है। अब देखिए उमस है तो बहुत ज़्यादा पसीना भी हमारी बॉडी से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, ऐसे में पानी को भी वो काफ़ी इग्नोर करती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही हेल्दी रहें, और अक्सर लो ब्लड प्रेशर भी महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचिए कि अच्छा आयरन की कमी होगी, अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या करना है क्या करना है। बहुत ही ईजी से टिप्स हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं अगर आप कर सकती हैं तो कम से कम दो डेट्स खा के एक नॉर्मल दूध अगर आप पी सकती हैं नॉर्मल टेम्परेचर का, अगर आपको चिल्ड अच्छा लगता है चिल्ड पी लीजिए, अगर आपको ठंडा अच्छा लगता है आप ठंडा पी लीजिए, अगर आपको दूध से थोड़ी बहुत एलर्जी है भी तो आप दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉर्मली काला नमक है अगर आपके किचन में, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में काला नमक मौजूद नहीं होता है, काला नमक है उसमें आपने थोड़ा सा नींबू डाला है एक ग्लास पानी में, उसके बाद थोड़ी सी आपने जगरी पाउडर उसके अंदर अगर डाल लिया, गुड़ को अगर डाल लिया और वो आप दिन में एक दो बार पी लेती हैं अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी शुगर पेशेंट अगर आप नहीं है या फिर मान लीजिए आपको कोई और वजह से कुछ चीज़ें बना है, तो अगर ये सब चीजें आप पे नहीं है

खुदा ना खास्ता हूं भी, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपके नहीं है तो आप इन सब चीजों का अगर 2-3 बार भी इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन मानिए आप इतनी खूबसूरत नजर आएंगी, इतनी हेल्दी नजर आएंगी, आपको खुद लगेगा कि आपने काम इतना कर लिया लेकिन आपको थकान तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुई। और अब अगले जो ट्रैक है उसके बाद हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे शरबत हैं, ऐसे ऐसे जूस कह लीजिए कि जिनको आप जब इस्तेमाल करेंगे, उस पर मिंट का आप इस्तेमाल करेंगी, पुदीने का इस्तेमाल करेंगी, तो इतना टेस्टी वो शरबत बनता है, इतना टेस्टी वो ड्रिंक बनता है, जब आप उसको अपनी डाइट में शामिल करेंगी ना तो फिर आपको लगेगा कि भाई तरन्नुम ने बिल्कुल सही बताया है। और अब आज से बस आप खरीद खरीद के लाएंगी, आम की बात नहीं कर रहे हैं, आम की बात तो वो बेचारे जो फल है ना वो कोने में चले जाते हैं, उन फलों को आपको लेके आना है और बहुत ही महंगे नहीं है, बहुत ही आपके बजट के अंदर है, आपको उनको लाना है और उसका शरबत बना के पी लेना है। उसके बाद फिर आप बताइएगा कि आपको जरा सी भी रत्ती बराबर भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पैसे बहुत सारे हों या ना हों, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।

0: भागो भागो कोई गधा अपने पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताऊ,
1: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाऊ।
0: छुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहनी भाई

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: कहानी है बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
4: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
5: जोर का झटका है जोरों से लगा।
3: अंदाज है सबसे निराला,
4: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

12:34 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और जुगनी ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे थे। और जुगनी के बाद अगर आप चाहते हैं जुगनू की तरह चमकना और अगर आपको लगता है कि इस उमस भरी गर्मी में आपको एनर्जी जो है, आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसे स्टोर रहे, ऐसे ही बरकरार रहे, तो उसके लिए एक बहुत ही ईजी सा शरबत हम आपको शेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शरबत सिर्फ महिलाएं ही पी लें, महिलाओं के लिए इसलिए खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि महिलाएं ही हैं जो पूरे घर का ध्यान रखती हैं, सारी फैमिली का ध्यान रखती हैं। और अगर वो ही चुस्त दुरुस्त नहीं होंगी तो बताइए फिर कौन अच्छे अच्छे खाने खिलाएगा, कौन अच्छे अच्छे नाश्ते आपको बनाएगा, कौन आपको प्यार से थपकी देगा, कौन आपको प्यार से झप्पी देगा। तो ये सारी चीजें जो है वो महिलाओं के ही हिस्से में आती हैं, तो महिलाओं का भी पूरा राइट है कि वो एकदम हेल्दी रहें। तो फिलहाल प्लम की अगर हम बात करें, जी प्लम, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आप देखिए कि जो ठेले नजर आते हैं या जो शॉप नजर आती है फ्रूट्स की, उन पे आपको वो नजर आ जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग उसको हाथों में उठाते हैं, देखते हैं और फिर रख देते हैं। अरे नहीं, खट्टा होता है, अरे नहीं बच्चे खाते ही नहीं है, ये अंदर से थोड़ा सा कड़वाहट भरा होता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लगता है, तो फिर क्या लें, बनाना ले लें, ये ले लें। वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कुदरत ने इस मौसम में, हर मौसम में ऐसे ऐसे फ्रूट्स आप तक भेजे हैं जो अगर हम उनको लगातार इनटेक करते हैं, लगातार उनको हम खाते हैं, तो फिर हम हेल्दी रह सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आम बहुत ज़्यादा आप खा लेते हैं, अगर आपने 5 आम खा लिए हैं और 5 जामुन अगर आप खा लेते हैं, तो जो शुगर लेवल होता है ना वो एकदम बैलेंस्ड रहता है। उसी तरह अगर हम प्लम की बात करें, इसको आलूचा भी बोलते हैं, इसको आलू बुखारा भी लोग कहते हैं, और कभी कभी तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, आलू बुखारा अच्छा किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, लेकिन ये जो लाल लाल गोल गोल तरह के होते हैं, और समझ गए होंगे आप, बड़े ही शाइनी टाइप के होते हैं, चमकने वाले होते हैं, उसी को कह रहे हैं हम। और प्लम आप जाके बोलेंगे, या फिर अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लम बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। आपको करना क्या है, एकदम फ्रेश आपको जो ताजगी भरा, आपको ताजगी महसूस करा दे, वो ड्रिंक हम आपसे शेयर करने वाले हैं। आपको करना क्या, बहुत ईजी है। अभी अगर आप किचन में खाना बना रही हैं और वाकई अगर आलू बुखारे आपके घर में है, प्लम है आपके घर में, तो 5 से 6 पके हुए आलू बुखारे यानी प्लम को आप ले लीजिए, उसको बीज निकाल लीजिए, उसके बाद 10 से 12 पुदीने की पत्तियां, ये भी बहुत इजीली मिल जाएंगी, 1 नींबू का रस, नींबू भी बड़ा सस्ता है, नींबू भी आपके किचन में जरूर होगा, इसके अलावा 1 चम्मच शहद या फिर चीनी, चीनी का इस्तेमाल कर लीजिए, शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, और टेस्ट के हिसाब से काला नमक। अब देखिए सारी चीजें जो है ना, पुदीने की पत्तियां हैं यानी मिंट है, इसमें भी बहुत ज्यादा फायदे हैं आपके लिए गर्मी के लिए, नींबू है इसमें भी बहुत ज्यादा फायदे हैं आपके लिए, सिट्रिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है, शहद है वो भी बहुत फायदेमंद है, काला नमक वो तो बहुत ही फायदेमंद है, भले ही वो काला है लेकिन उसका जो फायदा है ना बहुत ही ग्रेट फायदे होते हैं। आपको करना क्या, सारी चीजों को आपने निकाल लिया यानी बीज आपने निकाल लिए प्लम के, और अब आपको ब्लेंडर में सारी चीजें जो है वो डाल देना, जरा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद उसको एक साथ पीस लीजिए, बस छलनी में छान लीजिए और बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए,

ठंडा ठंडा परोसने से पहले खुद भी जरूर पीजिए। बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आप बनाती हैं और आप हमेशा कहते हैं खिलाना अच्छा लगता है, तो उसके बाद पहले खुद भी तो खाइए, खुद भी तो आप हेल्दी रहिए, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो है ना उनको परोस दीजिए, सर्व कर दीजिए। और उसके बाद जब आप ये शरबत जो हमने आपको बताया प्लम का, जब आप पी लेंगी तो इतनी आपको एनर्जी फील होगी ना कि एकदम जो ये ऐसे ऐसे करके पसीना पोछते हैं ऐसे ऐसे करके हटाते हैं, ये सारी चीज़ें आप हटाना बिल्कुल भूल जाएंगे और साथ ही साथ आपको अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहती हैं कि भाई अब रोज़ रोज़ का इतना टाइम है, तो रोज़ रोज़ तो टाइम है ही नहीं मेरे पास, तो 3 से 4 दिन तक इसे आप ईजिली स्टोर भी कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ही आयरन लगता है किसी भी फल में, जैसी छुरी लगती है, उसके जितने भी पोषक तत्व जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बाइट करके खा लीजिए। अगर नहीं आपके पास चलिए टाइम है तो आप कोई भी फल ले लीजिए, उसको बाइट करके खा लीजिए। कहीं ना कहीं से आपको हम लोग यही समझाते रहते हैं कि भाई कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, लेकिन एटलीस्ट अपनी सेहत का तो ध्यान रखो। सेहत है तो समझ लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
4: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
5: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
4: ओनली 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ ठीक है, डांस में तन डोल दिए और मन डोल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी गर्मी से भी तन डोल जाता है और मन भी डोल जाता है, यानी डूबा डूबा लगता है। ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं दिल बैठा जा रहा है, क्या करें, बड़ी टेंशन है, बहुत गर्मी है, ये है वो है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी ये है कि बहुत ज़्यादा जो फैशन में लड़कियां रहती हैं, बहुत ज़्यादा फैशन में जो महिलाएं रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी जीन्स या फिर बहुत ज़्यादा कसे हुए कपड़े इस मौसम में ना पहने, खासतौर पर बारिश के मौसम में, क्योंकि उमस होती है तो पसीना बहुत आता है, पसीना बहुत आता है तो जो कसे हुए कपड़े होते हैं ना, वो रैशेज हैं या फिर इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें को पैदा कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके ढीले ढीले कपड़े पहनिए जो जल्दी से सूख जाएं, बहुत पसीना आया तो आसानी से सूख जाएं और आपकी स्किन को इरिटेट ना करें, आपके मूड को भी इरिटेट ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि उमस है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी है उसमें से सोडियम और जो फ्लूइड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना होने पाए। अब चलिए, ये तो बात हो गई कि भाई जो महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती रहती हैं, बिजी रहती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं घर में होती हैं जो बुज़ुर्ग हो गई हैं। बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं वो उतनी जल्दी काम नहीं कर सकती, उतनी जल्दी वो अपना ये देखभाल नहीं करती हैं, बहुत कम पानी पीने पे फोकस करती हैं। उनको लगता है अगर पानी पिएंगे तो फिर जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है क्या करते हैं कि पानी ही नहीं पीते हैं। और अक्सर यही वजह होती है कि आप देखिए कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं उनके पैरों में सूजन भी आ जाती है, कभी कभी क्या होता है उनको खांसी लगातार आती रहती है, उसका कोई भी कहीं पर इन्फेक्शन नहीं निकलता लेकिन खांसी आने लगती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वो एक ही जगह पर बैठी हुई हैं, एक ही जगह पर उनको वही खाना दिया जा रहा है जो सब लोग खा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बच्चे और बुज़ुर्ग बराबर होता है तो उनका भी दिल करता है कि बच्चे अगर ऐसा खा रहे हैं, कोई भी स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं तो मुझे भी मिलना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एज के साथ दिमाग में आने लगती हैं। तो अब क्या है कि भाई उनको भी ज़रूरत है हाइड्रेशन की, तो ठंडा माहौल उनको भी चाहिए, हल्के कपड़े उनको भी ज़रूरी है कि आप पहनाइए। उनकी जो बढ़ती उम्र है उसकी वजह से उनका जो जिस्म का, उनका जो शरीर है उसका तापमान जो है वो बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने की हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए घर पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको गर्मी से पूरी तरह से सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, पानी की कमी उनको बिल्कुल ना होने दें। आप बार बार पूछिए कि आपने पानी पिया कि नहीं पिया, या फिर उनको टाइमली नींबू पानी दीजिए, नारियल पानी दीजिए। उसके अलावा उन्हें प्यास अगर लगी है या नहीं भी लगी है तब भी उनसे पूछिए कि कितनी देर में उन्होंने पानी पिया है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी पेय पदार्थ हैं जो उनकी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए, जैसे छाछ है बहुत फ़ायदेमंद है, लस्सी है, अब आजकल मौसम बदल रहा है तो दही का थोड़ा सा आप अवॉइड कर दीजिए तो ठीक है, लेकिन जो ताज़ा फल

उनका कोई भी नुकसान नहीं होता। उनको विदाउट फ्रिज के जो फ्रूट्स होते हैं उनको ज़रूर उनकी डाइट में शामिल करवाइए। उसके बाद ये है कि चाय है बहुत ज़्यादा, अगर चाय को उनको लगता है क्रेविंग हो रही तो भी उनको चाय को मना कीजिए। कॉफ़ी है या बहुत ज़्यादा मीठे जो कोल्ड ड्रिंक है जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे उनको परहेज़ कराइए। दूसरी चीज़ ये है कि कपड़े उनको भी सही पहुँचाइए, ठंडा जो माहौल है उनके पास भी रखिए और धूप से जितना हो सके उनको बचाइए। बिल्कुल लाइट उनको खाना दीजिए और उनको फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराइए। तेल मसाले ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके पैर कितने साफ़ हैं ये भी बहुत देने की ज़रूरत है। अगर घर में कोई महिला ऐसी है जो डायबिटिक है उनके पैर कितने साफ़ हैं, कितनी उन्होंने सफाई की है, ये ध्यान देना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाएं वो टाइमली ले रहे हैं कि नहीं। अक्सर ये होता है ना, बुजुर्ग सोचते हैं इतनी दवाएं खाते हैं, अरे काम करते हैं, दवाएं नहीं खाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप, भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा है या घर में कोई ऐसा है मेंबर जो उनको दवाएं देता है, लेकिन फिर भी आप उनको चेक कीजिए, उनसे प्यार से पूछिए, थोड़ा सा उनके पास प्यार से बैठिए। बच्चों को भी बार बार दिखाइए कि जाओ देखो दादी ने खाना खाया कि नहीं खाया। दादा है या कोई भी घर में बुजुर्ग है, जब बच्चों में आप ये सारी चीज़ें डालेंगे, संस्कार डालेंगे, तो बच्चे भी वही करेंगे जो वो आपको देखेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि अगर किचन का भी कोई काम है और बच्चे घर में छुट्टी पे हैं तो उनसे भी थोड़े थोड़े काम कराते रहिए, तभी तो उनको आदत पड़ेगी। अगर आप एकदम से उनको काम करने को बोलेंगे तो फिर उनके अंदर वो आदतें नहीं डेवलप हो पाती हैं जो बचपन में अगर ना करवाई गई हों। तो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को डाल सकती हैं। बच्चों को कैसे बुजुर्गों का ध्यान रखना है, कैसे बार बार उनके पास बैठने को कहिए, बार बार उनके पास जाने को कहिए, बार बार आप उनसे पूछिए कि बेटा तुमने मुझे नहीं पूछा, तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुमने मेरे साथ वो नहीं किया, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, मेरे साथ ऐसा करो। तो जब आप ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, उनके जहन में डालेंगी तो फिर बच्चे भी बड़े जब होंगे तो वो भी वही करेंगे जो आप कर रही हैं। फिलहाल 12:54 हो गए हैं। अब एक काम हमें करना है और वो काम ये है कि हमें जो है वो आप तक एक गाना पहुंचाना है। और गाने के बाद एक और प्रोग्राम है जिसको हम और आप कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, होठों पे तेरी बात। और उस में टॉपिक आज हमने ये लिया है कि कौन सी ऐसी दो आदतें हैं जो हर इंसान में होना ज़रूरी है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwadilakhnow@gmail.com। फिलहाल प्रोग्राम शत्रुपा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 569 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विस्थापित 2500 परिवारों को नागरिकता और पट्टा वितरण किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता गरीब, युवा और महिला सुरक्षा को लेकर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज है। कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोगों की समस्याओं का समाधान तय समय सीमा के भीतर हो। इसके उपरांत पीड़ित पक्ष से बात कर उनकी संतुष्टि के बारे में जानकारी ली जाए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में राजस्व संबंधी मामलों पर कहा कि सरकार अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, इस पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। वहीं मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा का शेड्यूल और गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई हैं। यूपीटीईटी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को ऑफलाइन मोड में होगी। इस राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए लगभग 15,99,638 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यूपीटीईटी 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप भी जारी की जा चुकी है। यूपीटीईटी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर असेंबली हलकों में 569 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने 2500 बेघर खानदानों में शहरियत और लीज तकसीम की। जलसायाम से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि हुकूमत का अज़्म गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन का तहफ्फुज़ है। मरकजी वजीर ममलकत और पीलीभीत के MP जितिन प्रसाद भी इस तकरीब में मौजूद थे।
1: हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे।
0: पीलीभीत के बाद वज़ीर-आला मुरादाबाद जाएंगे, जहां वो मुरादाबाद डिवीज़न में महकमा तामीरात-ए-आम्मा के पुराने कामों का जायज़ा लेने और नए कामों के लिए एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की मीटिंग की सदारत की और कई प्रोजेक्टों बशमूल एक्सप्रेसवे, सनअती इंफ्रास्ट्रक्चर, देही रोजी रोटी, तवानाई और EV चार्जिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रोजेक्ट को मुकर्रा मुद्दत के अंदर और मेयारी तरीके से मुकम्मल किया जाना चाहिए। वज़ीर-आला ने तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, तिब्बी इदारों, जिलाई सतह के मर्दाना और ख़वातीन अस्पतालों और होटलों के फायर NOC स्टेटस की फौरी तस्दीक की हिदायत दी। वज़ीर-आला ने एक्सप्रेसवे समेत दीगर मंसूबों के लिए ज़मीन के हुसूल के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत दी। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के साथ सनअती इलाकों की तरक्की के लिए मुनासिब ज़मीन की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर खसूसी ज़ोर दिया। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए के 143 तरक्याती

जी, और आज हमने आपसे सवाल ये किया है कि कौन सी दो आदतें हैं जो सब इंसानों में होना चाहिए, और इस पर बहुत सारे हमारे पास मेल आ चुके हैं, लोगों ने अलग अलग तरह के जवाब दिए हैं। और वाकई ये जो जवाब हैं, ये कहते हैं ना कि दिमाग की कुछ बत्तियां ऐसी होती हैं जो बुझी रहती हैं, और जब ये जवाब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, जब हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी हमारे अंदर होनी चाहिए। सुधांशु हैं, लिख रहे हैं राधे राधे, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से।

अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच सुधांशु, आपके कान बहुत अच्छे हैं इसलिए हमको हमारी जो आवाज़ है वो अच्छी लगती है। दूसरों की बात को केवल जवाब देने के लिए नहीं, ये इन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया है, दूसरों की बात को केवल जवाब देने गहराई से समझने के लिए पूरे ध्यान से सुनना, यानी सक्रिय श्रवण, इन्होंने ये लिखा है। दूसरी चीज है अनुकूलनशीलता, बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहने का जज्बा रखना। और एक और आदत है जो इन्होंने लिखी है कि सब में होनी चाहिए, वो है सिविक सेंस, जो कि सब में होना चाहिए। थैंक यू सो मच सुधांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया और इतना अच्छा सा आपने हमें जवाब दिया। अब जो नेक्स्ट मेरे पास मेल आया है वो लिख रहे हैं, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ, आपको भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। लिख रहे हैं कि आपके टॉपिक के हिसाब से मनुष्य को जीवन में धर्म और सत्कर्म ये दोनों जरूर करना चाहिए, मैं कुछ नाम है जिनका लेना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक आपने मैसेज किया, मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। पिंकू सोनी जी टिकैत नगर से हैं और कुछ नाम इन्होंने लिए हैं, कुलदीप आकाश, नारायण जी, बहन रिंकी, पिंकी जी और सभी लिसनर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो चीजें हैं जो ये कहते हैं कि होनी चाहिए। सुल्तान रजा साहब का मेल आ गया, लिख रहे हैं सब्जी मंडी बरेली से, और जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा, पूरा रजा परिवार, लिख रहे हैं कि आज का टॉपिक बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले आदत होनी चाहिए, किसी ने गलती की, हमारे साथ कोई धोखा किया तो हम उसे माफ कर दें बिना किसी भावना के साथ, और उसके बाद ये एक आदत होनी चाहिए जब किसी की मदद करनी हो बुरे वक्त में या किसी का एक्सीडेंट हो जाए सड़क पर, तो हमारे अंदर सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए, ना जाने कि ना जात की बात हो ना कोई धर्म की बात, फौरन उसकी जैसी भी हो मदद करनी चाहिए। अच्छा, कई आदतें इन्हें लिख दी हैं लेकिन सारी आदतें बहुत अच्छी हैं सुल्तान साहब, ये आदतें आप अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए, उतार लीजिए। और बहुत अच्छी बात आपने लिखी कि हमेशा सड़क पे कहते हैं ना कि अगर कोई छोटा सा पत्थर भी पड़ा और आप उसको सिर्फ पैर से किनारे कर देते हैं तो उसका भी जो पुण्य है, उसका भी जो सवाब है वो इतना है कि हम और आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब तो ये हो गई कि ये आदत है, आदत यानी जब इस तरह की आप छोटी छोटी काम करते हैं तो लोग भी आपको देख के आपसे प्रेरित होते हैं और फिर वो भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। शैलेश कुमार जी का मेल आ गया है और टाइगर पूर्णिमा की ओर से तरन्नुम बाजी को सलाम आदाब कबूल हो, और कोई सवाल पूछने की इन्होंने कहा, मेरा दिल कर रहा है आपकी इजाज़त हो तो पूछें, लेकिन अभी सवाल पूछने का नहीं, हमने आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब हमें चाहिए और वो आप हमें दे नहीं रही हैं, इसलिए थोड़ा सा इस मैसेज को नहीं यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कस्बा बराड़ा ज़िला अम्बाला हरियाणा से हैं और देखिए गाने की फरमाइश कर दी, इतनी बेखरारी है 2 बजे के प्रोग्राम की कि 1:20 पे इन्होंने हमें मेल कर दिया कि भाई अला गाना में सुनवा दीजिए। और भी बहुत सारे मेल मेरे पास आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से भी मेल आ गया है, लेकिन अभी जो सवाल है वो यही चल रहा है होठों पे तेरी बात में कि कौन सी 2 आदतें हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए, वो जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए जो गानों की फरमाइश है वो धड़ाधड़ हमारे पास जो मेल है आ रहे हैं। वकील अहमद साहब हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, लिख रहे हैं आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, कार्यक्रम अच्छा लगता है, सच बोलना और सभी का सम्मान करना चाहिए। सच बोलना और सभी का सम्मान, 2 आदतें, बहुत अच्छी बात और सब में होना चाहिए। लिख रहे हैं कि मौसम ठंडा हो गया है और कुछ अर्ज भी कर दिया है, चलिए अर्ज किया तो मेरा फर्ज है कि हम पढ़ दें उसे। लिख रहे हैं गजब की गर्मी है शहर में लेकिन दिल किसी का भी पिघलते नहीं देखा। अच्छा, एक ही लाइन में शेर है, गजब की गर्मी है शहर में लेकिन दिल किसी का भी पिघलते नहीं देखा। देखिए दिल पिघलाने की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले तो हमें अपना दिल पिघलाना होगा, अपने दिल को हमें नरम रखना होगा, तभी हमें दूसरों की जो दिल है, खूबसूरत सा जो दिल है उसमें हम झांक सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए आप नरम रहिए, सामने वाला भी आपके साथ ऑलरेडी नरम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। रोशनी रावत जी हैं और मेल कर रही हैं, 12 बजे से लगातार सुन रही हैं और लिख रही हैं आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, मीठी टिकिया खाइए तो आवाज़ मीठी होगी। फिलहाल गांव बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हैं, अभी चंडीगढ़ में हैं। कितने दिनों से चंडीगढ़ में आप, मतलब आने का आपका कोई इरादा ही नहीं लग रहा है। मैं लिख रही हैं आज के टॉपिक पर कि आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है लेकिन दूसरों को सुनना और समझना कोई नहीं चाहता। ये बिल्कुल आपने 100% की बात कही है, हालांकि टका यहाँ नहीं नेपाल में चलता, लेकिन 100% की आपने हमें बात कही है। दूसरी चीज ये है कि खुद को रख कर उनकी दर्द या खुशी को महसूस करना, और हमारे पास नहीं है हम अक्सर उसका रोना रोते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है जैसे खूबसूरत जिंदगी, परिवार, आज की सुबह, उसके लिए शुक्रिया कहना हमें

खुश रखता है। इनका कहना यह है कि हमें हमेशा दो चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, शुक्रिया कहना खुदा का, ऊपर वाले का, भगवान का। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरों को सुनना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और महेंद्र दीपन जी हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, मेल करते हैं, और इन्हीं ने लिखा है इस बात पे कि मैम मैंने नोटिस किया है इतने महीनों से आप जितना दिल से प्रोग्राम करते हो उतना कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है महेंद्र, क्योंकि सारे लोग हैं दिल जान लगा के प्रोग्राम करते हैं, और ये बात अलग है कि सबको अलग अलग, किसी का अंदाज है, किसी का अलग अलग प्रेजेंटेशन है, तो आपको क्या अच्छा लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आज का जो प्रोग्राम है, ये लिख रहे हैं महेंद्र कि दिल से साझा करता हूँ अच्छे संस्कार और तमीज़ का होना। मेरा मानना है कि आज के दौर में इंसान चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अगर उसके इतने अच्छे संस्कार और बात करने की तमीज नहीं तो सब कुछ अधूरा है। हाय महेंद्र, आपने मेरे दिल की बात कर ली। और सच में कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी उनके पास डिग्री है, लेकिन तमीज नाम की तो कोई चीज है ही नहीं उनके पास। और क्यों है ये जरूरी? तमीज और तहजीब एक ऐसी आदत है जो बिना किसी खर्च के दूसरों का दिल जीत लेती है। अपनों का आदर करना और हर छोटे बड़े से अदब के साथ पेश आना एक ऐसा क्वालिटी, एक ऐसा गुण है जो आज के वक्त में हर इंसान में होना बेहद जरूरी है। और सच में तमीज का होना बहुत जरूरी है। इतनी अच्छी आपने बात लिखी है, और बस क्या कहें, मतलब क्या कहें। अब एक काम करते हैं, कहते नहीं है, एक बहुत ही बढ़िया सब ट्रैक है जो हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, एफएम रेनबो।
5: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
6: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
7: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

और 1:39 हो चुके हैं, और उसके बाद जो जबान है ना, लोग कहते हैं कैची की तरह इसकी जबान चलती है, मेरी जबान भी कैची की तरह चलना शुरू हो जाती है 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच। और फिलहाल अभी जो हमने सवाल आपसे पूछा था इस प्रोग्राम में होटो पे तेरी बात में, कि कौन सी ऐसी 2 आदतें हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किया, आपने जवाब दिए हैं। और प्रवीण जी का मेल आ गया है, लेकिन प्रवीण जी बहुत बेकरार हैं 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच के प्रोग्राम के लिए, उन्होंने अभी से ही हमें मेल कर दिया। प्रवीण जी, ये प्रोग्राम होटो पे तेरी बात है, इसमें आप अपने रिक्वेस्टेड नंबर हमसे नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो स्लॉट है वो अलग से है, 2 बजे से 3 बजे के बीच है, इसलिए प्लीज हम आपका मेल इस वक्त नहीं पढ़ पाएंगे। जावेद अख्तर साहब हैं, लिख रहे हैं तरन्नुम बाजी, ये बाजी आपा और बज्जो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं कभी कभी बड़ी इरिटेट करती हैं, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा जब ओहदा मिल जाता है ना, कहता है ना कि जब कोई घर में सबसे बड़ा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं, तो कभी कभी तो बड़ा इरिटेशन होता है, अरे भाई आपा, बज्जो, बाजी और ये दीदी, ये सब लगता है कि ना कहो, और कभी कभी ये लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, बड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये लिख रहे हैं कि हमारे अंदर आदतें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम किसी की बिला वजह गीबत ना करें। गीबत यानी किसी की बैक बिचिंग, किसी की बुराई, पीठ पीछे बुराई, इसका बहुत बड़ा गुनाह कहा गया, और इन्होंने कहा है कि भाई वो ना करें और बुजुर्गों का ख्याल करें। मेरे अंदर जो 2 आदतें हैं वो ये हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और अपने लोगों के लिए परेशानी के वक्त खड़ा रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है जावेद साहब, और ऐसी जो आपकी आदतें हैं ना उसको बना के रखिएगा। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं शमसुल खमराही बेगम रुखसार, और मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश अनिजा जी हैं मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं आपका हार्दिक अभिनंदन कहते हैं, बहुत प्यार से लिखते हैं, बहना जी करके लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपको भी प्यार भरा नमस्कार सतीश जी। और लिख रहे हैं कि 2 आदतें हैं जो जरूर होनी चाहिए, एक तो हमेशा हमारे दिल में परार्थ की भावना होनी चाहिए, स्वार्थ की नहीं, और दूसरा सुबह उठते ही परमात्मा के आगे नतमस्तक होना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब तक आपने अच्छे से संभाल रखा है और आगे भी आपने ही देखना है। ये सांसें आपकी और आपकी हर योजना पर फूल चढ़ाएंगे, इस रोज इस प्रण की आदत होनी चाहिए। इतनी अच्छी आपने बात लिखी है और सही बात है कि ऐसा ही होना चाहिए, हर सांस का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये जो सांस आ रही है जा रही है इसका भी शुक्र हमें अदा करना चाहिए। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा जी, बिमला अनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए।

सुधाकर जाधव जी हैं और लिख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू नी जो लोग रहते हैं उनके सुख दुख में हम हमेशा साथ रहते हैं। आपना आवाज बहुत ही सुंदर है, कौन सी चक्की का आटा खाती कि आपकी आपकी आवाज इतनी अच्छी है। जाफराबाद से हैं और इनका जो मेल करने का अंदाज है ना सुधाकर जी का, वो टूटी फूटी इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, इतना अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि हिंदी को पूरी अच्छी तरह से सीख लें। और चक्की का आटा, तो चक्की तो चक्की है, गेहूँ वही गेहूँ है जो आपकी तरफ आता होगा और वही गेहूँ पिसता है और वही दो रोटी खा लेते हैं, अगर रात की बच जाती है तो वो भी खा लेते हैं, शुक्र कर लेते हैं भाई चलो खाना यहाँ तक गया, यहाँ से हलक तक नीचे उतरा, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और अभी चक्की गई आटा खाते रहिए। और बहुत सारे नाम इन्होंने लिखे हैं, अगर कहिए तो पढ़ देते हैं। और ग्राम पंचायत कालेगांव से सुधाकर राजेश जाधव, प्रशांत राजेश जाधव, संचिता वायल, प्रतिमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी, हर्षदा देशमुख, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बिट्टू भाटिया जी का मेल आ गया, छज्जर हरियाणा से हैं ये। बिट्टू भाटिया जी, 2 बजने में भी बहुत वक्त है, इतनी बेकरारी, इतना उतावलापन आखिर क्यों है, कहीं जा नहीं रहे, हम यहीं बैठे हैं और आपका मेल भी पढ़ेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। अमन नवाब हैं, लिख रही हैं, हेलो डियर अप्पी, कैसी हैं आप, अच्छा केक भेजा है, हार्ट भेजा है, इमोजी भेजा है। और यही कहना चाहूंगी, इंसान के अंदर कुछ आदतें होनी चाहिए जो मेरे अंदर हैं, अल्लाह का शुक्र है। लिख रहे हैं, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो हमेशा खुद को पता हो और खुदा को पता हो, जैसे दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, डुग्गी पीट कर की गई मदद बेकार है। और अगर आपने किसी से वादा किया है तो पीछे मत हटिए, उसका वादा को निभाइए, बिल्कुल सही बात। परिवार समाज एक तरफ और एक इंसान एक तरफ, जिससे आपने वादा किया है कोशिश करनी चाहिए, आपसे किसी को भी दुख ना पहुंचे। अगर कोई खुशी आप दे सकते हैं किसी को तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इतने सारे दिल आपने दे दिए, दिल तो एक ही होता है लेकिन आपने 15-20 दिल तो इधर ही दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और किसका मेल आ गया मेरे पास, मुनीश कुमार राज जी का मेल आ गया है, लखीमपुर खीरी से, शुभ दोपहरिया कह रहे हैं, आपको भी शुभ दोपहरिया, लिख रहे हैं कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, हर कार्यक्रम है अच्छे, हमारे बात सुनेंगे हमारे बच्चे और बच्चे आपके बड़े हो रहे होंगे या बच्चे हैं कि नहीं है तो भाई हमें नहीं पता। लिख रहे हैं, आपके कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर मुद्दे को इतनी खूबसूरत अंदाज में रखती हैं कि सुनते ही सीख मिल जाती है। और आगे लिख रहे हैं, 2 आदतें सबसे जरूरी हैं, झूठ न बोलने की आदत, सच बोलने वाला इंसान हमेशा सिर ऊंचा करके जीता है, रिश्ते मजबूत रहते हैं और मन को सुकून मिलता है। टाइम को पकड़ कर चलने की आदत, समय की कदर करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहता, समय पर काम करने से इज्जत भी बढ़ती है और काम भी आसान हो जाते हैं। और भी बहुत सारे मेल हैं लेकिन अब थोड़ा सा जुबान को कंट्रोल करते हैं, लगाम देते हैं, पहुंचाते हैं ट्रैक।

और 1:50 हो गए हैं, भले ही इस गाने के कुछ जो बोल हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन नो डाउट गाना हमेशा ये एवरग्रीन हिट है और हिट रहेगा। बहुत सारे मेल मेरे पास आए हैं और बहुत सारे मेल हमने पढ़े हैं। रामेश्वर जी का मेल आ गया है, होटू पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन तरंगम जी, प्यार से ये हमें तरंगम कहते हैं और इतना अच्छा लगता है जब ये तरंगम कहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि दिल से अगर आप कुछ भी कहते हैं किसी को ना तो वो अच्छा ही लगता है, लेकिन सवाल ये कि दिल से होना चाहिए, उसमें दिमाग का मेल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप हमसे कहें कि कुछ भी आप हमें कहें और कहें कि भाई इधर आओ, ऐसे करो, ऐसे बात करो, ऐसे करो, तो हम समझ जाएंगे कि भाई आप प्यार से कह रहे हैं या फिर आप उसके अंदर कुछ दिमाग का भी उसमें झोल आपके आ गया है। फिलहाल लिख रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि क्या लाजवाब प्रस्तुति कर रही हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस भाई को जिसने अस्पताल में भेजा उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरा हाथ और पैर टूट गया था और ग्राम पोस्ट मुंगेसापुर देहा से हैं रामेश्वर कठेरिया उमाकांति कठेरिया। अच्छा, ये धन्यवाद देना चाहते हैं, यानी ये ही कहना चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर धन्यवाद करने की भी आदत होना जरूरी है और बहुत जरूरी बात है। और बहुत अच्छा लिखा आपने कि भाई आप किसने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो हमें नहीं पता कब हुआ, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन आपने तारीफ की, उसका धन्यवाद किया, ये आज आपका दिल थोड़ा हल्का हो गया होगा, है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जहन में दिमाग में बैठी रह जाती हैं और उनको दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल देखिए बिट्टू भाटिया जी फिर से हमें मेल कर रहे हैं, राधे श्याम जी का मेल आ गया है कासगंज से, मास्टर राधे श्याम शाके, गुड आफ्टरनून तरनुम जी, और आप कैसी हैं। दो आदतें प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, सबसे पहले बात तो ये कि बहुत बहुत गुड आफ्टरनून टू यू टू, और बिल्कुल अच्छे हैं, और आप कैसे हैं, तो भाई हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे ऐसे में उम्मीद करते हैं। और लिख रहे हैं कि दो आदतें प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, पहली ये कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, मॉर्निंग में 1 hour वॉकिंग, नाइस प्रेजेंटेशन, कितनी दो लाइन में इन्होंने अच्छी सी बात लिख दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मोहम्मद आसिफ जी ये मेल कर रहे हैं, आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं। अब देखिए इन्हीं ने भी ये लिखा है कि गाना सुनवा दीजिए, गाने तो आपको ऑलरेडी सुनवाए जा ही रहे हैं, लेकिन अभी जो वक्त था वो आपने थोड़ा सा मिस कर दिया। अगर आप प्रोग्राम में कहते तो भाई हम जरूर आपका मेल शामिल करते, और भी बहुत सारे हमारे पास मेल आए हैं, लेकिन वो मेल इस प्रोग्राम के लिए नहीं आया है, वो मेल आए हैं 2:00 से।

लेके 3 बजे के बीच वाले प्रोग्राम के लिए, जिनको हमें 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच पढ़ना होगा। आयल खान का भी मेल हमारे पास आ गया है, बुलंदशहर से है। इंसान की पहचान उसकी आदत से होती है, जिससे वक्त की पाबंदी, दूसरे लोगों के लिए इज्जत, सच्चाई, सफाई, यही अच्छे इंसान की पहचान है। और सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और अब 1:53 हो गए हैं, कुछ ही देर में 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 हो जाएंगे, 2 बज जाएंगे, और आप के मेल का जो झड़ी है ना, वो लगातार इस पे आना शुरू हो जाएगी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब क्या करना है, अब होटो पे तेरी बात कार्यक्रम को वाइंड अप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: Commerce Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग

0: प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट और हमारे न्यूज ऑन IR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आप फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई। वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन नरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
4: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
5: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
6: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवजौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राकियो ने एकमात्र गोल किया।

मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिन भी स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और जल्दी से याद कर लेते हैं जिन लोगों ने हमें मेल किया है, और बहुत सारे मेल मेरे पास हैं और उनको लगातार पढ़ते रहना है हमें, क्योंकि अभी बहुत सारा वक्त हमारे पास है। 2:38 हुए हैं और साथ ही साथ जो मेल संदीप मक्कड़ जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं कल है मेरी मैरिज एनिवर्सरी और गाना इनको अच्छा सुनना है। अच्छा, तो चलिए ठीक है भाई, आज

नहीं तो कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, जो गाने की फरमाइश आपने की है वो बिल्कुल हम सुनवाएंगे। सैफ अंसारी जी का मेल आ गया है। हेलो मैम जी, और मेरा नाम हुस्बा अंसारी है। कभी किसी की मेल आईडी से मेल करती हैं और कभी किसी की, तो फिलहाल इन्होंने मेल किया है लखीमपुर खीरी से, गाने की फरमाइश की है और गाना इनको जो सुनना है बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। वारिस अली खान जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं, जिंदगी कोई किताब नहीं जिसे पलट दो, ये एक एहसास है जिसे हर दिन जी कर समझो। गाने की फरमाइश, इनकी एक खासियत ये है कि गाने बहुत अच्छे पसंद करते हैं। संजय नगर रेश बाग से मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। मनोज बंसल जी का मेल आ गया है, हांसी हरियाणा से, नमस्कार, और आपके कार्यक्रम में गाना जो आपने पसंद किया है मनोज जी वो ऑलरेडी हम प्ले कर चुके हैं। और कभी कभी ये होता है, इतफाक होता है कि एक ही की फरमाइश जो है ना वो कई लोगों की होती है, तो क्लैश कर जाती है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को बड़ी आसानी होती है कि कम से कम एक गाने की फरमाइश चार पाँच लोग होंगे कि अरे वाह मेरी पसंद का गाना प्ले हो गया है। दिलीप कुमार जी का भी मेल आ गया है मेरे पास, मूंदी चक भागलपुर बिहार से हैं दिलीप कुमार सोनी, गाने की फरमाइश की, बहुत ही छोटा सा मेल किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सदानंद मंदूरकर जी का मेल आ गया है, दाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, धन्यवाद। आपका भी सदानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया। महेंद्र दीपन जी का भी मेल आ गया है और बड़ा सजा के भेजा है, आज क्या बात है, आज बड़ा शायराना अंदाज है आपका। महेंद्र जी लिख रहे हैं, रूर नागौर की धरती से महेंद्र दीपन ने बड़े प्यार से संदेश भेजा है, एफएम रेनबो लखनऊ की महफिल में अदब के साथ सलाम भेजा है। हॉटमेल शो में आरजे तरन्नुम मैम की जादुई आवाज का दौर आया है, उनकी सुरीली और शानदार प्रस्तुति ने आज फिर समा बांधा है, और फिल्म डैश का सदाबहार गाना डैश सुनाना है। आरजे मैम से गुजारिश है कि इसी खूबसूरत नगमे को आज बजाना है। सुल्तान रजा बाबू भाई का स्नेह और रोशनी दीदी बबीता दीदी को सम्मान, और महेंद्र भाई ने अपनी इस प्यारी फरमाइश में सब अपनों का नाम लिया। और आप लोग जब इसे को ये कहते हैं ना कि इनका नाम लिया जाए, इनका नाम लिया जाए, तो हम लोग को लगता है चलो हमारी जो मेहनत है सफल हो गई। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, और हम लोगों को क्या चाहिए। मल्होत्रा टीडी महोली जी से मेल आ गया है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और राजेंद्र नारंग जी का मेल आ गया, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। अब्दुल गफ्फार साहब का मेल आ गया है, नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं, अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। हीरा मणि वर्मा जी का भी मेल, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, कोई भी गाना चलेगा सुनवा दीजिए। बबलेश पनवार जी का मेल, प्रसारक महोदया जी नमस्कार, गाने की फरमाइश, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, और डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, क्या बात है, इतने सारे एक दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। चलिए ठीक है, आप लोगों ने गाने की फरमाइश की है, नो डाउट जो गाना आपने पसंद किया है वो बहुत अच्छा है, तो गाने को गा के नहीं, एक काम करते हैं प्ले करते हैं ना, फिर उसको सुनते हैं, तो सुने

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सपने बड़े हैं,
4: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
4: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
4: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

फरमाइश नहीं की है। इसके अलावा आफ्ताब अंसारी जी का भी मेल आ गया मेरे पास। मैसेज पढ़ने का अंदाज इनको बहुत ही शानदार लग रहा है। शिरवानी स्कूल गंज डुंडुवारा उत्तर प्रदेश से हैं। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुमना अंसारी, आलिया अंसारी, और भी मेरे पास बहुत सारे मेल आए हैं। मोहम्मद अमीन जी का मेल आया, अब्दुल गफ्फार, मैनुद्दीन अंसारी, उदय भनपाल, सुरेश नारंग, अनुज स्वर्ण सिंह, बाबू अंसारी, तेज बहादुर यादव और नाजिम राय नगेन मेल कर रहे हैं। मुकेश कश्यप, संतोष खाटसी जी का भी मेल आ गया है, रामेश्वर जी का भी मेल आ गया है, स्वर्ण सिंह जी का भी मेल आ गया है, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी का भी मेल आया, बिट्टू गगनीजा जी का भी मेल आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। आप लोगों ने अपना इतना खूबसूरत सा टाइम निकाला इस प्रोग्राम में मेल करने के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है सतरंगी दुनिया। तो एंजॉय करते रहिए सतरंगी चैनल, बोले तो FM रेनबो, सुनते रहिए।

आपको बता दें कि अब जो मेल मेरे पास आया है वो आया है सत्यनारायण कुरील जी का, और लिख रहे हैं राजस्थान से, कैसी हैं आप, गाने की फरमाइश की है। उदय भानपाल का अभी मेरे पास मेल आ गया है और इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है। कहाँ से लिखा है, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं ये। नूर अंसारी का ग्राम पोस्ट हररपुर मिटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। रोजी डिकेस्ट्रो सहारनपुर से हैं, गाने की फरमाइश के साथ रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल वलिस डिकेस्ट्रो, जॉन डिकेस्ट्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिम रायन का मेल आ गया है, लिख रहे हैं प्यार भरा सलाम, लेकिन कोई भी इन्हें

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक आर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो केवल हमारे शहर या देश का नहीं बल्कि पूरी धरती का सवाल बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पर्यावरण प्रदूषण की। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए हमें इस ईमेल आईडी पर airkansomedia@gmail.com।

दोस्तों, कहीं धुएं से भरी हवा, कहीं प्लास्टिक से पटे समुद्र, कहीं सूखती नदियां और कहीं कटते जंगल, प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है कि अब संभलने का समय आ गया है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमसे और आपसे ही होती है। फिलहाल सुन लेते हैं एक और ट्रैक।

वेल गाइस, आज शहर में बढ़ती गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलते रसायन, प्लास्टिक कचरा और तेज आवाजें हमारी जिंदगी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण लाखों लोगों की सेहत को प्रभावित कर रहा है। बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में सांस की तकलीफ और मौसम में असामान्य बदलाव इसके बड़े उदाहरण हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल सरकार जिम्मेदार है या हम सबकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? शेयर कीजिए हमसे अपने विचार। ईमेल आईडी है airkansoomedia@gmail.com।

दोस्तों, कभी गांव में सुबह पक्षियों की आवाज से होती थी, पेड़ों की छांव, तालाबों का पानी और मिट्टी की खुशबू जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हमने प्रकृति से दूरी बना ली, हमने जंगल काट दिए, नदियों को गंदा कर दिया और हवा में जहर घोल दिया। प्रकृति हमेशा देती है छांव, पानी, भोजन और जीवन, लेकिन जब वही प्रकृति नाराज होती है तो बाढ़, सूखा और भीषण गर्मी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन यहाँ आ रहा है एक खूबसूरत सा ट्रैक।

दोस्तों प्लास्टिक आज सुविधा भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। एक छोटी प्लास्टिक बोतल या पॉलीथिन सैकड़ों साल तक मिट्टी में नहीं गलती। समुद्रों में प्लास्टिक पहुंचने से मछलियां और समुद्री जीव मर रहे हैं। कई बार वही प्लास्टिक हमारे खाने और पानी के जरिए हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। तो भाई कपड़े या जूट के बैग यूज कीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक कम करिए, प्लास्टिक को रिसाइकिल करिए और घर में कचरे को अलग अलग रखिए, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर

0: पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

म्यूजिक आवर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर अपने रेडियो दोस्त ऋतु के साथ। प्रोग्राम में बातें हो रही हैं पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, शेयर कीजिए हमसे अपने विचार। हमारी ईमेल आईडी है airkansomediia@gmail.com।

को बचाते हैं और धरती का तापमान नियंत्रित रखते हैं। आज बड़े बड़े शहरों में कंक्रीट के जंगल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन असली जंगल कम होते जा रहे हैं। अगर हर व्यक्ति साल में केवल एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो धरती फिर से हरी भरी हो सकती है।

वेल गाइज, तेज हॉर्न, लाउड स्पीकर और लगातार शोर भी प्रदूषण का हिस्सा है। ध्वनि प्रदूषण से तनाव, नींद की समस्या और मानसिक थकान बढ़ती है। त्योहार हो या शादी पार्टी, ये सब खुशी का प्रतीक हैं। लेकिन अगर हमारी खुशी किसी और की परेशानी बन जाए तो हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि शांत वातावरण केवल प्रकृति ही नहीं इंसान के मन के लिए भी जरूरी है। सोचिए इस बारे में। तब तक मैं सुनवाती हूँ आपको ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक आर प्रोग्राम अपने रेडियो दोस्त रितु के साथ। और आज के प्रोग्राम की थीम है पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों, आज का युवा पर्यावरण के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक है। सोशल मीडिया पर क्लीन अप ड्राइव, वृक्षारोपण अभियान और पानी बचाने के संदेश लगातार देखने को मिलते हैं। स्कूल और कॉलेजों में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल हो रही है। यही युवा आने वाले कल की उम्मीद है। अगर युवा

ठान लें तो शहर बदल सकते हैं, देश बदल सकता है। याद रखिए, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है।

दोस्तों, पर्यावरण केवल किताबों का विषय नहीं बल्कि हमारी सांसों, हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य का सवाल है। जब धरती मुस्कुराएगी तभी जीवन भी खिलखिलाएगा। तो आइए मिलकर एक स्वच्छ, हरा भरा और सुंदर भारत बनाएं। अपना और अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए और सुनिए ये ट्रैक।

तो दोस्तों समय हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो अपनी रेडियो दोस्त रितु को दीजिए म्यूजिकार प्रोग्राम से इजाजत। अगला प्रोग्राम होगा हेल्थ मैगजीन, जनरल हेल्थ के बारे में बताएंगे डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा, बातचीत करेंगे दीपशिखा गुप्ता, बने रहिए हमारे साथ यानी FM रेनबो कानपुर के साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर।

0: आज का कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। श्रोताओं, आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा को, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कानपुर के प्रख्यात सीनियर सर्जन हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप सेंटेनरी ईयर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसके साथ ही एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: लोगों में गॉल ब्लैडर के स्टोन की समस्या बहुत ज्यादा देखने में मिल रही है, तो क्या कारण होता है इसका और क्या इलाज होता है?
1: जी, गॉल ब्लैडर की समस्या हमारे क्षेत्र खासतौर से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसको कहते हैं गंगा के किनारे, हम लोग गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं और इसमें देखा गया है। वैसे ऐसा नहीं है, गॉल ब्लैडर समस्या सब जगह होती है, साउथ नॉर्थ सभी जगह है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ गॉल ब्लैडर की स्टोन और गॉल ब्लैडर का कैंसर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके कोई डेफिनेट कारण तो नहीं है, लेकिन जब हम मेडिकल में बहुत पहले 40 साल पहले पढ़ते थे तब ये बताया जाता था प्रायः कि जो फैटी फर्टाइल फेयर फीमेल में ज़्यादा होता है, जो बहुत मोटी औरत हो, बहुत गोरी हो और जिनके कई बच्चे हों, उनमें प्रायः गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों में नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों में नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं कि बुड्ढों में नहीं होता, ये सब में एज में होता है, लेकिन महिलाओं में अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, 2:1 के रेशियो या इससे भी ज़्यादा, मतलब महिलाओं में ज़्यादा होगा पुरुषों। ये एक थ्योरी जो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी के टाइम में खून जो है गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होता है और उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होने लगती है। लेकिन टाइफाइड इत्यादि और तमाम सारी चीज़ें हैं जिनमें स्टोन बन सकते हैं, और कुछ रेयर कॉजेज भी हैं जहाँ पे हीमोलिटिक जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया इत्यादि, जहाँ पे हीमोलिसिस होती है वहाँ अलग टाइप के। तो कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट और मिक्स स्टोन कई तरह के होते हैं। मैं श्रोताओं को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अभी लोग ये कहते हैं कि अभी साहब ज़्यादा होने लगे, ऐसा नहीं। पहले अल्ट्रासाउंड नहीं था, अल्ट्रासाउंड एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा तुरंत पेट पे लगा के स्टोन का पता चल जाता है।

0: इसलिए अब पता ज्यादा चलने लगा। पहले लोग गैस गैस करते रहते थे कि पेट में गैस बन रही है या दर्द हुआ,
1: जी
0: और उसको डॉक्टर लोग कुछ गैस की दवा लिख देते थे और काम हो जाए। अभी लोग भी समझदार हो गए, अगर आपको पेट में तनाव हो, खट्टी डकारे, जलन या दर्द हो, तुरंत आप डॉक्टर से भी मिले, अल्ट्रासाउंड भी कराएं। अल्ट्रासाउंड बहुत ही हर जगह उपलब्ध है, आपको इस डायग्नोसिस हो जाती है। एक बार जब डायग्नोसिस हो जाती है तो इसका इलाज मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी पहले बड़े चीरे द्वारा की जाती थी, लेकिन पिछले 3-4 दशकों से, जब से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी आई है, ये सफलतापूर्वक, की होल सर्जरी भी उसको कह सकते हैं, कुछ लोग लेजर सर्जरी कहते हैं, ये सब एक ही चीज़ है, उसके द्वारा व्यक्ति का ये ऑपरेशन हो जाता है, गॉल बैडर में पथरी के निकाल दिया जाता है। लोग कई बार कहते हैं हमारे साथ गॉल बैडर क्यों निकाल लें, हमारी पथरी निकाल दीजिए। तो ये बताना चाहूँगा कि गॉल बैडर जिस पे पथरी बनती है वो बीमार या अस्वस्थ गॉल बैडर होता है, उसको छोड़ने से दोबारा बनने के या कैंसर होने के

0: द्वारा व्यक्ति का ये ऑपरेशन हो जाता है, गॉल बैडर में पथरी के निकाल दिया जाता है। लोग कई बार कहते हैं हमारे साहब गॉल बैडर क्यों निकाल लें, हमारी पथरी निकाल दीजिए। तो ये बताना चाहूँगा कि गॉल बैडर जिस पे पथरी बनती है वो बीमार या अस्वस्थ गॉल बैडर होता है, उसको छोड़ने से दोबारा बनने के या कैंसर होने के चांस हमेशा होते हैं। और ये तकनीक गॉल बैडर पथरी के साथ निकालने की 100 वर्ष से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके ऑपरेशन से किसी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, वो आगे चल के फैटी मील या चिकनाई वाले पदार्थ भी खूब खा सकता है, और इसका टमाटर पालक बीज इत्यादि से कोई मतलब नहीं है। और प्राय ये भी देखा गया है कि लोग सर्जरी ना करा के सर्जरी के भय से आयुर्वेदिक या एलोपैथिक इलाज लेने की तरफ भागते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि किसी भी दवा, ऐसी कोई दवा नहीं है जो गॉल बैडर के स्टोन को ठीक कर सके। जब मेरे पास होम्योपैथी और आयुर्वेद डॉक्टर भी आके सैकड़ों तादाद में अपना या अपने परिवारजनों का ऑपरेशन करा चुके हैं, तो इस भ्रांति में बिल्कुल मत पड़िए। ये सर्जरी बहुत सामान्य है, डरने की आवश्यकता नहीं। इसको एक दिन आपको अस्पताल में रहना होता है और इस मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इनडाइजेशन या गैस बनना, ऐसी समस्याओं का सामना आजकल लोग करते हैं, और ऐसे में हो सकता है कि उनको गॉल ब्लैडर संबंधी कोई समस्या हो। और डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आजकल कॉन्स्टिपेशन की भी एक जो समस्या है वो काफी लोगों में देखने को मिलती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन से संबंधित वे कौन से लक्षण हैं जिनको अनदेखा नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए?
0: कॉन्स्टिपेशन एक गहरी समस्या है, और हम प्रायः देखते हैं कि इसके तमाम सारे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन आता रहता है कि आप ये लीजिए, ये चूर्ण खाइए या ये ले लीजिए, आपका पेट साफ होता रहेगा। लेकिन मैं बिल्कुल बहुत ही जिसको कहते हैं बेसिक बात या देसी भाषा में बात करूंगा कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। अगर आप फास्ट फूड या रिफाइंड मैदा इत्यादि की चीज़ें ले रहे हैं, आलू ही सिर्फ खाते हैं, तरोई, परवल, लौकी इत्यादि चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। तो इसलिए पहले तो अपने खान पान पर ध्यान दें।
1: जी
0: अगर सफिशियंट पानी नहीं पीते हैं तो पानी भी पीना चालू करें। अगर आप बिस्तर पे बैठे रहते हैं या ऑफिस की कुर्सी पे बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तब भी कॉन्स्टिपेशन होगा, तो आप चलने फिरने की हैबिट डालिए, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि हाई फाइबर डाइट आपको लेना है, चाहे पालक, बथुआ, मेथी, लौकी, तरोई, परवल इत्यादि, फिर तरह तरह के सलाद और तरह तरह के अपने फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हो उनको खाने की आदत डालिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप तैयार रहिए किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए, और आपने पाइल्स और फिशर और फिस्चुला इत्यादि बनते हैं वो बनेंगे। मोटे लोगों को भी ये होती है, और मोटे लोगों का मैं चलते ये सब ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है,
1: जी
0: चाहे मोटापा हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो। तो ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, अपने लाइफ को ठीक करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, अपने को तकलीफ झेलिए और खर्च भी करिए। तो स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है, और उसके लिए अच्छी चीज़ें खाना ज़रूरी है, और हाई फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, टहलना फिरना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है। तो ये अगर चीज़ें करेंगे तो पेट साफ होगा, पेट साफ होगा तो बहुत सारी मर्ज आपसे दूर रहेंगे। और मैं देखा डायबिटिक्स को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, मोटे लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, और जो लोग निगेटिव सोचते हैं उनको भी बहुत होता है। जो सकारात्मक सोच नहीं रखते अपने लाइफ में, हर वक्त वो बुरा या उल्टा ही सोचते रहते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्साते चिल्लाते हैं वो भी, उनको भी होता है। तो ये थोड़ा सा अपने को बदलना होगा, थोड़ा योगा मेडिटेशन करिए, थोड़ा थिंकिंग अपनी पॉजिटिव करिए। देखिए जो आपके एफर्ट्स ईमानदार होने चाहिए, बाकी जो हो रहा है वो होगा, यू कैन नॉट स्टॉप, लेकिन अपने प्रयासों को अच्छा करिए और देखिए अगर अभी कुछ खराब हुआ तो आगे अच्छा होगा। कॉन्स्टिपेशन से बचना, बहुत सारे मर्जों से बचना है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात की कॉन्स्टिपेशन से बचने की, लेकिन कॉन्स्टिपेशन से जुड़े ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको अनदेखा नहीं करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए?
0: कॉन्स्टिपेशन में एक पेट में तनाव रहना, गैस बनना, डकारे आना, और आपका किसी काम में मन ना लगना, चिड़चिड़ा होना, जब देखिए

0: पेट साफ होता है तो आपको अच्छा लगता है कुछ काम करने का भी, और दिल करता है, और ऑफिस में भी मन करता है, या कोई अन्य कार्य। तो ये सब तो लक्षण हो गए कॉन्स्टिपेशन। लेकिन कॉन्स्टिपेशन से होने वाली बीमारी
1: जी
0: जिसमें कि पाइल्स या बवासीर प्रमुख है, बवासीर में लोगों को लोग कहते हैं कि बवासीर की वजह से कॉन्स्टिपेशन, मैं कहता हूँ कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर है। और पानी भी पिए, फाइबर भी लें, और उसमें कई लोगों को खून आने लगता है, किसी को मस्से बाहर आने लगते हैं, ये बवासीर के लक्षण हैं। और उनको तुरंत डॉक्टर से चेकअप करा के और अपने कॉन्स्टिपेशन को सुधारें, और बवासीर के लिए जो दवाई उपलब्ध है अर्ली हेमराइड्स या पाइल्स में, उसकी दवा लें। कभी भी हर लक्षण जो जो आपके एनस या पाखाने के रास्ते से जुड़ा हुआ है, वो हर बीमारी पाइल्स नहीं होती। लोग प्राय आते हैं मेरे पास और आते ही बैठते ही कहते हैं साहब मुझे पाइल्स हो गया है। लेकिन जब देखा जाए खासतौर से युवा लोगों में और लड़कियों में फिसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये फिसर से जब मोशन करते हैं, जब आप पाखाने जाते हैं, तो आपको दर्द बहुत होता है और साथ में थोड़ा बहुत खून आ सकता है। ये सीधा सीधा लक्षण जब दर्द ज़्यादा है, ये फिसर की प्रॉब्लम है। और इस फिसर की प्रॉब्लम के लिए भी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। आपको हर जो एनोरेक्टल डिजीज है या जिस तरह पाखाने की जगह की बीमारी है, उसमें कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा फैक्टर है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा खान पान के द्वारा। और दवाइयाँ दवाइयाँ भी बहुत अच्छी उपलब्ध हैं
1: जी
0: जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को एनस के बगल में फोड़ा होना, पेरिएनल एब्सेस, इस्टियोरेक्टल एब्सेस, और उसके बाद भगंदर या फिस्चुला का बनना, तो ये तो हुई बेनाइन एनोरेक्टल डिजीजेज। ये सब बीमारियां कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हैं। इसके अलावा कुछ तरह के कैंसर, कॉलोनिक कार्सिनोमा या रेक्टल कार्सिनोमा, ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं। और इसीलिए देखा गया है प्राय खासतौर से जापान, कोरिया इत्यादि में, जहाँ का फूड वो नॉनवेज और इस तरह का वेजिटेबल कम लेते हैं, वहाँ पे इस तरह के कैंसर की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में भी ये कैंसर की इंसिडेंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन से बचने से आप बहुत तरह की गंभीर, एक और मैं भूल गया, ये अपेंडिक्स की बीमारी, अपेंडिसाइटिस, वो
1: जी
0: भी, और ख़ासतौर से बच्चों में, यंग एडोलिसेंट्स एज में, ये कॉन्स्टिपेशन से होता है। और छोटी सी जो पाखाने की गोली जो जाके अपेंडिक्स के बेस में जम जाती है, फीकोलेथ बोलते हैं, और वो एक अपेंडिक्स का रूप ले लेती है सूजन का, और वो फट सकती है, पस पड़ सकता है, और पेरिटोनाइटिस, और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, उसका भी इलाज सर्जरी है। तो ये सब चीज़ों का अल्टीमेट, अगर ये सब अगर ध्यान रखेंगे तो बचे रहे, अदरवाइज आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी फायदेमंद और ज्ञानवर्धक बातें आज आपने हमसे साझा करी। हमारे बीच आने का, हमसे इतनी सारी बातें करने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका और आकाशवाणी का आभार प्रकट करता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य चेतना सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारे इस कार्यक्रम को इतना सारा प्यार और स्नेह देने के लिए हृदय तल से धन्यवाद। श्रोताओं, हम चाहते हैं कि आप हमको ये बताएं कि आप किन विषयों पर स्वास्थ्य संबंधी चर्चा हमारे इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं, और साथ ही अपने बहुमूल्य फीडबैक से भी हमको अवगत कराएं। तो हमें लिख भेजें। हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, पिन कोड है 2080002। एक बार फिर से हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, पिन कोड है 208002। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aircanso-media@gmail.com। कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना के अगले अंक के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो कानपुर।

0: हेलो दोस्तों, शाम हो, संगीत हो और साथ हो आपके अपने एफएम रेनबो कानपुर का, तो हर पल खास बन जाता है। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर और वेलकम कर रही हूँ आपका आपके फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर में। दोस्तों, कुछ गीत यादों से जुड़े होते हैं, कुछ रिश्तों से और कुछ दिल से, जो पहुंचते हैं सीधे दिल तक। इस वक्त आप जुड़ चुके हैं हमसे, यही तो होता है दिल से दिल का प्यारा सा रिश्ता जो आपका हमारे साथ है।
1: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
0: वैसे जिंदगी की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, पर दिन में कुछ पल ऐसे जरूर होने चाहिए जो सुकून भरे हों, जिसमें मुस्कान ठहर जाए, खुशियाँ लौट आए और दिल अपनों से जुड़ जाए। हेलो कानपुर उन्हीं पलों का ठिकाना है, जहाँ आपकी बातें, आपकी पसंद के गीत मिलकर एक यादगार गुलाबी सी शाम बना देते हैं।
2: शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर।
0: तो आज की इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए सुनते हैं कौन है हमारे आज के फर्स्ट कॉलर। हेलो कानपुर
3: जी, मैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बोल रहा हूँ और आकाशवाणी कानपुर का बिल्कुल रेगुलर लिसनर बोल रहा हूँ।
0: सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है। और आप तो बराबर ईमेल्स भी करते रहते हैं, बराबर आपकी कॉल्स भी लगती रहती हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब श्रोता हमसे इसी तरह जुड़े रहते हैं।
3: जी बहना, जब हम रेडियो से मोहब्बत करते हैं तो ये तो ऐसे लगाओ जब मन में इच्छा होती है भी हमने बात करनी है तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है लेकिन बात हो जाती है।
0: जी और बताइए सतीश जी, क्या करते हैं आप?
3: बस चंडीगढ़ में रहते हैं जी, अपने कामों में थोड़ा बिजी रहते हैं, बाकी रेडियो आकाशवाणी के साथ भी बने रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, टाइम रेडियो के लिए भी निकलता है। अपने काम तो सुबह से, आजकल गर्मी पड़ती है, सुबह सुबह अपने काम निपटा लेते हैं।
0: कौन सा काम करते हैं?
3: काम रियल एस्टेट का काम है जी यहाँ पे।
0: ओ वाओ, वेरी नाइस। तो यानी कि आप लोगों के सपनों का घर ढूंढते हैं और उनका आशियाना बनाने का काम करते हैं ना?
3: कोशिश यही रहती है कि उनको एक अच्छा सा घर बना के दें और उनके चेहरे खुशी आए और उस घर में उनको इतनी बरकतें मिले वो जिंदगी भर हमारे को दुआएं दे और उनकी दुआएं हमारी जिंदगी में काम आए।
0: तो आपको उनके चेहरे की खुशी देख कर कितनी खुशी महसूस होती है?
3: उसको तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल, वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
3: दुआएं करना बहुत आसान होती है लेकिन दुआएं बटोरना, दुआएं लेना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रयास ये रहता भी हमारी वजह से किसी के चेहरे पे शिकन ना आए, खुशी की झलक नजर आए।
0: अच्छा सतीश जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आपसे पूछ ही लेती हूँ कि आपको क्या लगता है आजकल लोग मकान खरीदते वक्त सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देते हैं? मतलब कि जैसे लोकेशन देखते हैं या बजट देखते हैं या फैसिलिटीज देखते हैं, क्या चीज पर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो?
3: आपने बहुत सही बात की है, तो वो तो हर चीज देखते हैं, लोकेशन भी अच्छी हो, घर के अंदर का जो भी कुछ बना हुआ है, किचन है, वॉशरूम है या कोई भी है, वो सारा एक उनकी सोच के बराबर हो
0: जी।
3: तो इन चीजों को देखो, जब हम इतना पैसा खर्चते हैं तो पूरी सुख सुविधा मिल जाएंगे तभी हमें खुशी मिल पाए। घर में एक भी कमी है ना तो वो हमें कमी हमेशा के लिए खलती रहती है
0: जी। वैसे आपके हिसाब से उन्हें सबसे

0: फर्स्ट प्रेफरेंस किस चीज पे देना चाहिए?
1: उसको सबसे पहले यही हो, वैसे घर में जिस तरह हमारे तो घरों में मंदिर बना हुआ है, तो हम जो भी घर बनाते हैं उसमें एक मंदिर का स्पेस जरूर देते हैं।
0: अच्छा,
1: और जिस घर में भगवान की जब स्थापित होते हैं तो उस घर में तो वैसे भी
0: बरकतें होती हैं,
1: जो यानी हर किसी अनुग्रह बहुत मिलता है घर को
0: जी, और उस घर में बरकत ही बरकत होती है,
1: बरकत ही बरकत होती है।
0: अच्छा, काम से फ्री होने के बाद क्या करना पसंद करते हैं? कुछ खास आपकी हॉबीज हैं?
1: हॉबीज तो है जी, मैं कुछ गुनगुना भी लेता हूँ घर में, मेरे को म्यूजिक का शौक भी है।
0: आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: गाना जी, आप गाने सारे अच्छे होते हैं। देखो, गीतकार बेचारा कितनी मेहनत से लिखता है, पर संगीतकार उसको अपने सुरों में डालता है
0: जी जी जी,
1: और गाने वाला तो फिर आपको पता है कमाल ही कर देता है। तो गीत आज सुनाएं आप, मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत है
0: जी,
1: दीवाना लेके आया है, किशोर कुमार की आवाज में गीत है
0: जी। बहुत अच्छा सॉन्ग है और आपकी चॉइस भी बड़ी अच्छी है, और आपके जैसे थॉट्स हैं, जैसे थिंकिंग है, हमेशा वैसे ही बनी रहे। और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ओके, नमस्ते।
1: नमस्कार जी, नमस्कार, ओके जी।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैडम नीतीश त्रिपाठी बोल रहे सनिया पर।
0: मुझे लगता है काफी टाइम बाद आपकी कॉल लगी है।
1: जी मैडम।
0: कैसे हैं आप?
1: मैडम ठीक है।
0: बस हमारे लिसनर्स जब ये कहते हैं कि ठीक हैं, तब बड़ा अच्छा, दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमेशा खुश रहें और ठीक रहें। क्या करते हैं नितेश जी?
1: मैडम खेती किसानी का काम।
0: अच्छा, खेत अपने हैं?
1: जी मैडम।
0: अच्छा, तो आजकल जो मौसम चल रहा है, इस वक्त जब मानसून आने भी वाला है और अभी गर्मी भी बहुत पड़ रही है,
1: जी।
0: और अब की जहां तक मैंने सुना है कि संभावना है कि इतनी ज्यादा बारिश नहीं होने वाली है,
1: जी मैडम।
0: तो ये जो ये सारे हालात हैं जो देखे जा रहे हैं, जो हम लोग को पता चल रहे हैं, तो इनसे खेती पर क्या असर पड़ेगा?
1: मैडम खेती पे तो इससे अगर मानसून देर से आएगा या बारिश कम होगी तो इसका असर बहुत ज्यादा खेतों पे पड़ता है। इस समय मैडम खेतों पे कद्दू लगा हुआ है मेरे, और मुझे ट्यूबवेल से पानी मतलब ज्यादा से ज्यादा देना पड़ता है, जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है फसल को।
0: जी
1: तो अगर बारिश होगी तो ज्यादा ट्यूबवेल का या बम्बा का पानी नहीं लगाना पड़ेगा।
0: जी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी बात ही अलग है।
1: जी मैडम।
0: कहीं ना कहीं अगर बारिश कम हुई या कुछ ऐसा मौसम रहा, तो उससे खेती को हमारी नुकसान पहुंचेगा।
1: जी मैडम। नुकसान पहुंचेगा खेती को, कुछ
0: कितने
1: उत्पादन
0: खेत
1: थोड़े
0: हैं
1: बहुत कम
0: आपके?
1: होंगे। जी मैडम ठीक ठाक है खेत हमारे पास, और अपना ट्यूबवेल है
0: जी
1: और अपने ट्यूबवेल से ही खेतों की सिंचाई कर देते हैं। धान की पौध डाल दी है
0: जी
1: तो कुछ समय बाद धान की पौध तैयार होने के बाद धान लगा दी जाएगी।
0: अगर बारिश का यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि जो धान
1: बहुत
0: की
1: दिक्कत होगी
0: खेती है,
1: मैडम
0: बहुत
1: खेती
0: ज्यादा
1: में।
0: परेशानी होगी, क्योंकि पानी
1: जी
0: की
1: जी
0: ज्यादा जरूरत होती है उसमें।
1: जी मैडम।
0: तो ऊपर वाले से बस यही प्रे करिए कि अच्छे से बारिश हो, जो हमारी खेतों की जरूरत है वो पूरी हो जाए, क्योंकि अन्न ही मेन चीज होती है। जब अन्न अच्छे से उगेगा तभी सारी जितनी भी जनता है वो सब सही से रह पाएगी।
1: मैडम आपकी आवाज बहुत अच्छी और आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का तरीका बहुत ही अच्छा है।
0: जी, तहे दिल से शुक्रिया। बस आप लोगों से इतना लगाव है, आप लोग का इतना प्यार है, जिससे कुछ अच्छा हो जाता है, और बस ऐसे
1: और
0: ही हमारे साथ
1: कानपुर
0: जुड़े रहिए।
1: आकाशवाणी कानपुर के सभी उद्घोषक इतने लाजवाब हैं,
0: जी
1: बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। इसके
0: जी
1: लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
0: जी थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी तन्मयता से सुनते हैं और इतना प्यार अपना बनाए रखते हैं हम सब पर,
1: जी मैडम
0: आकाशवाणी
1: बहुत
0: पर।
1: समय से सुन रहे हैं रेडियो,
0: जी
1: और आपके बहुत पुरानी लिसनर भी रहे हैं।
0: जी और हमें उम्मीद है कि आगे ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: मैडम गदर 2 का सुनवा दीजिएगा, आपके इश्क में पड़ जाते हैं।
0: अच्छा, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, बहुत
1: जी
0: ही
1: मैडम।
0: खूबसूरत ये सॉन्ग है, आपको हम सुनवा देते हैं आपकी
1: मैडम
0: पसंद
1: कुछ
0: का।
1: लोगों का नाम ले लें।
0: हाँ बिल्कुल, ले लीजिए।
1: मैडम संदीप कुशवाहा है बहरमपुर से, TS चंदेल हैं, रोहित गुप्ता हैं गहलो, और मैडम आप।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं अनिल कटियार बात कर रहे हैं, मदारीपुर कानपुर देहात से। जी
0: अनिल जी, वेलकम है आपका हेलो कानपुर प्रोग्राम में। और बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैम, बढ़िया हैं आप? कौशर मैम बात कर रही हैं मैम?
0: जी बिल्कुल, कौशर ही बोल रहे हैं, नाम से पहचान गए, बड़ी ही अच्छी बात है।
1: जी जी मैम, आपकी आवाज़ पहचानते हैं ना, बात होती रहती है आपसे हेलो कानपुर में।
0: कैसे हैं अनिल जी?
1: बढ़िया है मैम, बिल्कुल अच्छे हैं
0: और क्या करते हैं आप?
1: जी। मैम मैं सेना में था, उधर से रिटायर होकर के अभी एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, बड़ी ही अच्छी
1: जी
0: बात है। यानी कि आपने लाइफ में जो देश प्रेम का जज्बा है और अब एक और जो सेवा भाव का जज्बा है, दो दो जज्बे आपके दिल में है। यानी कि दो अहम पड़ाव आपने देखे हैं, पहले देश की सेवा और अब लोगों की सेहत और जिंदगी का केयर कर रहे हैं। बड़ी ही अच्छी बात है।
1: जी मैम, यही हमने अपने लाइफ में सोचा कि पहले देश की सेवा की,
0: जी
1: अब आम जनों की भी सेवा की जाए।
0: जी अच्छा, इन दोनों जिम्मेदारियों में सिमिलैरिटी क्या है, बताइए।
1: सिमिलरिटी यही है मैम, उसमें देश की जब रक्षा कर रहे थे तो देश के बारे में लगता था कि हम देश के लिए खड़े हैं, कुछ देश के लिए कर रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि आम जनों की हम सेवा कर रहे हैं तो आम जनों के बारे में खड़े हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आम जनों की सेवा करके खुशी एक मिलती है मैम।
0: बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, सेना में जो आपने डिसिप्लिन सीखा होगा, क्योंकि सेना की जो जॉब होती है वहां पर बड़ा ही सब नियम कानून बड़े ही सख्त होते हैं, तो वो जो
1: जी
0: आपने वहां पर डिसिप्लिन सीखा है

0: और बनाकर भी रखा है, तो क्या अभी भी आपके डेली रूटीन में वो आपने बना कर रखा है, फॉलो करते हैं उसे आप?
1: बिल्कुल, कोई भी फौजी हो, हमें ही नहीं, हर फौजी फॉलो करता है, चाहे रिटायर होके आ जाए चाहे सर्विस में हो, उसको एक हैबिट बन जाती है कि वो फॉलो करता है, जैसे वहाँ पर रहते तो वही सेम हमारा यहाँ पर रूटीन रहता है।
0: जी, अच्छा, इससे कभी आपकी फैमिली में किसी को ऐसा तो नहीं लगा रहे, जैसे आपके जो परिवार के लोग होंगे, जैसे आपके जो बच्चे होंगे, कि अरे पापा तो हर टाइम पे बस डिसिप्लिन में ही रखना
1: नहीं,
0: जानते हैं,
1: बहुत
0: आजकल के
1: अच्छा
0: बच्चे
1: क्वेश्चन
0: थोड़ा
1: करें
0: सा रहते हैं ना।
1: जी, वो मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये बिल्कुल सही कहा आपने, लगता है क्योंकि हम लोग अपना फौजी जो होते हैं अपने डिसिप्लिन से चलते हैं, बच्चे बेचारे वो सिविलियंस है वो अपने डिसिप्लिन से चलते हैं, तो सिमिलरिटी नहीं हो पाती दोनों लोगों के बीच में, तो हम अपना जब डिसिप्लिन बना रहे तो थोड़ा बोलते पापा आप तो फौज वाला अपना यहीं पर रूल चला
0: हाँ,
1: रहे हो
0: बोलते हैं कि
1: ये।
0: पापा ने तो बड़े कड़े नियम बना कर रखे हैं अभी तक।
1: जी, मैम बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया था इस बार,
0: तो फिर किस
1: भैया
0: तरीके से उनको हैंडल करते हैं?
1: बस समझाते हैं उनको कि भाई देखिए अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि एक आदमी को बहुत अच्छा इंसान बना देती है, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो देश के लिए भी कुछ कर सकते हो अपने लिए भी कर सकते हो,
0: बिल्कुल
1: और इनडिसिप्लिन हो गए तो उसमें फिर कई प्रकार की आपके बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी।
0: बिल्कुल सही बात है। और बच्चों को जो पेरेंट्स अच्छे से समझा ले, वो समझिए उन्होंने बड़ी अच्छी सी अपनी जिम्मेदारी निभा दी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
0: क्योंकि
1: मैम आपने,
0: आजकल के बच्चों को समझाना
1: हाँ
0: बहुत
1: बहुत
0: बड़ी
1: मुश्किल
0: बात है। अच्छा, कौन सी लाइफ आपको ज्यादा अच्छी लगी, जैसे आप जब सेना में थे वो वाली लाइफ, या फिर जो अब मेडिकल में है ये वाली लाइफ, कौन सी लाइफ ज्यादा अच्छी लगी?
1: देखिए मैम, अगर हकीकत में तो सेना वाली जो लाइफ थी वो एक नंबर वन की लाइफ थी, समझाती क्या डिसिप्लिन था, क्या रहन सहन था और क्या जज्बा था दिल में, एक से दोस्त थे सभी
0: जी।
1: और बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ पे हमें रह करके। अब ये थोड़ा सा सिविल में आकर के थोड़ा सा उतना डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, वहाँ वहाँ हम लोगों का एक अलग ही डिसिप्लिन रहता था मैम।
0: जी, बट जो सेवा की भावना एक होती है ना, वो आपकी सेना वाली नौकरी में भी थी और शायद इसमें भी है, इसमें आप मानव की सेवा इसमें भी कर रहे हैं।
1: जी, सेवा दोनों ने भाव से की है, वहाँ पर भी सेवा की, उसमें देश की सेवा के जज्बे से रहते थे और
0: जी,
1: यहाँ पर मानव सेवा के जज्बे से रहती हैं।
0: तो बस ऐसे ही सेवा की भावना अपने दिल में हमेशा जगा कर रखिए। आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: जी मैम थोड़ा सा रोमांटिक गाना सुनना चाहते हैं, ये फिल्म दो रास्ते का।
0: मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक
1: जी
0: सैनिक और एक जो मेडिकल में दो।
1: मैम, ऐसा ना थोड़ा सा फ्री मूड हो गए यहाँ करके ना, तो थोड़ा सा अपने आप को रोमांटिक भी कर लेना चाहिए कभी कभी।
0: जी, तो दो रास्ते फिल्म का गाना आपको सुनवा दिया जाए।
1: हाँ ये रेशमी जुल्फ़ें ये शरबती आँखें।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर कौशल मैम, नमस्ते। आप कैसे हो?
0: नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। कौन बोल रही है?
1: मैं टाइगर बोल रही हूँ। आपकी आवाज सुनते ही मैं तुरंत पहचान गई, कौशल मैम बोल रही है।
0: आवाज से पहचान गई, यही तो हमारे लिसनर्स का प्यार है।
1: मैम आपकी आवाज ही पहचान है, तो आप एक बार हेलो बोलते हो बस मैं जान जाती हूँ हाँ कौन मैम बोल रही है। बस यही अंदाज तो मुझे पसंद आता है।
0: शुक्रिया टाइगर जी। और आपका नाम टाइगर है तो उसी तरीके से आपके अंदर वैसे ही हिम्मत है, टाइगर
1: जी मैम
0: दहाड़ता है जैसे। नहीं, आजकल तो
1: थैंक
0: लड़कियां भी बड़ी बहादुर हो रही है ना, इसलिए क्योंकि
1: यू
0: आजकल तो
1: मैम। यस
0: लड़कियां बिल्कुल लड़कों के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर
1: जी
0: चल रही है, और
1: जी
0: चलना
1: जी
0: भी चाहिए।
1: बिल्कुल मैम, कहते हैं ना लड़की और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं, वो करना चाहिए, एक समान मानना चाहिए, क्योंकि हमारी कहते हैं ना हमारी छोरी क्या किसी छोरे से कम है,
0: बिल्कुल, हमारी
1: हमारे भारत की
0: छोरी
1: बेटी महान है मैम।
0: बिल्कुल। तो वैसे भी आजकल जो है, जो लड़कियों को है ना, हर चीज की आर्ट, जैसे उनको कराटे वगैरह सब कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी जो स्वयं की सेफ्टी है उसके लिए तो वो खुद को तैयार हमेशा रखें,
1: बिल्कुल मैम
0: और
1: बिल्कुल
0: हर तरीके के माहौल से, हर तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए भी हमेशा लड़कियों को तैयार रहना चाहिए।
1: बिल्कुल मैम,
0: तो
1: क्या
0: मुझे लगता है
1: सीखने
0: कि
1: को
0: जैसा आपका नाम
1: मिलेगा
0: टाइगर है ना, वैसे ही आप अपने को वही
1: बिल्कुल
0: जज्बा बना
1: मैम
0: कर रखिए।
1: हाँ बिल्कुल मैम। मैं घर में भी बिल्कुल सब चीजों से फिट रहती हूँ। मॉर्निंग में उठकर रनिंग पे जाती हूँ, योगा करती हूँ, वापस आते हैं जब नाइट में, जब घर में नाइट में जिम करते हैं, और मैं हमेशा फिट रहती हूँ, हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। आप लोगों की जब आवाजें सुनते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, ओहो कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। बहुत अच्छी आपकी आवाज है
0: थैंक यू
1: मैम।
0: टाइगर।
1: जी
0: अच्छा टाइगर, आप गाने कौन कौन से सुनती हैं? वैसे ही एकदम बहादुरी वाले, निडरता वाले गाने सुनती हैं, या थोड़े से रोमांटिक टाइप के गाने सुनती हैं?
1: मैम, मुझे 90s के दशक के एल्बम सॉन्ग, सभी प्रकार के मुझे सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, बट ज्यादा मुझे रोमांटिक सॉन्ग अच्छे लगते हैं। 90s के बहादुरी वाले भी सॉन्ग सुन लेती हूँ। क्या है कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में कौन सा गाना सुनना है, दोपहर में कौन सा गाना सुनना है, नाइट में कौन सा गाना सुनना है, मौसम के हिसाब से, समय के अनुसार मुझे गाना अच्छा लगता है।
0: तो आज वक्त की नजाकत देखते हुए, मौसम को देखते हुए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मैम मूवी है फूल और कांटे, उसका एक गाना है

0: हेलो कानपुर,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। किससे बात हो रही है हमारी?
1: तनु शर्मा मैम तो गंगा लखनऊ से बोल रही हूँ।
0: नाम तो बड़ा अच्छा है,
1: जी
0: तनु वेट्स मनु। एक मूवी भी आई थी, देखी है?
1: नहीं मैम, देखी तो नहीं है।
0: अच्छा, आपकी शादी हो गई है?
1: जी हो गई।
0: तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है?
1: मेरे हस्बैंड का नाम है शैलेश शर्मा।
0: अच्छा, तनु वेट्स शैलेश। चलो, ये तो हंसी की बातें हो गई तनु। थोड़ा सा जिंदगी में हंसना खिलखिलाना भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है ना?
1: बहुत अच्छा होता है।
0: क्योंकि आजकल की लाइफ वैसे भी भागदौड़ भरी और टेंशन भरी है। उस जिंदगी में थोड़े से पल अगर अपने लिए हंसने बोलने के साथ निकाल दिए तो वो बहुत बढ़िया होते हैं पल। और तनु, हाउसवाइफ ही हो कि और कुछ भी करती हो?
1: हाउस वाइफ ही हूँ इस समय तो।
0: अच्छा, तो खाना वगैरह बढ़िया बढ़िया बनाकर अपने घर में खिलाती हो?
1: मैम खिलाते हैं,
0: क्या क्या अच्छा बना लेती हो?
1: बना लेते, ज्यादा कुछ तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो भी है थोड़ा बना लेते हैं।
0: तो लखनऊ का क्या मशहूर है?
1: अब लखनऊ के क्या मशहूर है ये नहीं बता अभी हमको, क्योंकि अभी हमारी शादी को 1 साल हुआ है तो ज्यादा जानकारी नहीं है यहाँ।
0: अपने ससुराल में खूब खुश हो?
1: जी मैम खुश तो बहुत है।
0: चलो, ऐसे ही खुश रहो और आगे का जो तुम्हारी लाइफ है ऐसे ही खूब खुशहाल रहे। और गाने किस तरह की सुनती हो?
1: गाने सुन लेते हैं, ये गाना सुना देना, चांद से पर्दा कीजिए।
0: अच्छा, पति देव ने गाया था क्या आपके लिए?
1: नहीं उन्होंने तो नहीं गाया था, ये तो अपने मर्जी से आपके लिए डेडिकेट कर
0: अच्छा,
1: दिए।
0: मेरे लिए?
1: जी आप आती हो ना प्रोग्राम करने तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है।
0: थैंक यू सो मच तनु। और ऐसे ही प्रोग्राम से जुड़ी रहो, FM रेनबो से जुड़ी रहो, यही हम चाहते हैं, क्योंकि बड़े ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम

ड्रम्स हमारे एफएम रेनबो कानपुर से आते हैं, इनको सुनो और इंजॉय करो और बस जिंदगी की खुशियां आराम से खूब उठाओ, जिंदगी में खुश रहो। आपको सुनवा रहे हैं चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चूरा न ले चेहरे का नूर।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मुंगिशापुर से यश मंसूरी बोल रहा था।
0: यश मंसूरी, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छा हूँ, और आपके प्रोग्राम सुनता हूँ, मजा आता है प्रोग्राम सुनने में।
0: तो इसीलिए तो हम प्रोग्राम करते हैं कि आप लोग प्रोग्राम का पूरा पूरा लुत्फ उठाएं।
1: जी जी बहुत ही अच्छी पेशकश होती है आप लोगों
0: जी,
1: और मजा भी आता है सुनने में। और मेरे पापा तो बहुत समय सुनते आ रहे हैं कार्यक्रमों को, और बराबर पत्र भेजते हैं और ईमेल भेजते हैं।
0: जी
1: तो आज मैंने सोचा मैं ही बात करके देखता हूँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: इस वक्त मैं मोबाइल का काम शुरू कर रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, किस स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं?
1: आईटीआई कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: जी
0: और क्या करते हैं साथ में?
1: बस मोबाइल का काम सीख रहा हूँ, आगे मोबाइल काम करने का इरादा है।
0: अच्छा, मोबाइल का ही काम करने का इरादा है आगे?
1: जी
0: तो मोबाइल यानी कि आपकी शॉप है, रिपेयरिंग करते हैं, क्या सीख रहे हैं?
1: हाँ, मोबाइल को बनाना सीख रहे हैं।
0: अच्छा, आकाशवाणी से FM रेनबो से कब से जुड़े हैं आप?
1: अब हम तो कभी कभी कार्यक्रम सुन लेते हैं, और मेरे पापा बहुत सुनते हैं कार्यक्रम।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा ये बताइए, मौसम बदल रहा है अभी तो, काफी उमस भी।

0: हो रही है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो
1: तेज
0: रही है।
1: धूप भी हो जाती है।
0: हाँ, तो मतलब ये जो मौसम बदल रहा है कि बारिश भी हो रही है, धूप धूप भी कभी निकल रही है, ऊपर से फिर उमस भी हो जाती है एकदम से, तो ये ऐसे मौसम में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम पानी में भीगे भी ना और धूप में भी ज्यादा ना निकलें। ये सब चीजों का ख्याल रखें और थोड़ा खान पान पर भी ध्यान रखें। तली हुई चीजों को ना खाएं, तली हुई चीजें हुई जैसे कटी हुई चीजें, फल वगैरह हुआ, इसको ना खाएं। तो यही सब सुरक्षा चाहिए हमको और सभी लोगों को।
0: अच्छा, मोबाइल का क्रेज इतना जो बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि पूरी तरीके से लोग जो आजकल मोबाइल पे ही डिपेंड हो रहे हैं, ये सही है या इसका असर कुछ कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो रहा है? क्या लगता है आपको?
1: इसका असर नुकसानदायक ही है।
0: जी
1: आंखों की रोशनी चली जाती है इससे और उंगलियों भी कमजोर होने लगती है, दिमाग भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो मोबाइल का ज्यादा अच्छा नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से।
0: देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं और थोड़े से उसके खतरनाक भी परिणाम होते हैं, तो मोबाइल के बिना तो आजकल मुझे लगता है ज्यादा चीज पॉसिबल नहीं है, तो मोबाइल चलाएं लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरत के, इतना ज्यादा ना चलाएं कि रात दिन मोबाइल में ही आप अपनी नजरें लगाए रहें तो आंखों पर असर पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: टाइम टाइम पे अपने वक्त के लिए, अपनी जरूरत के लिए मोबाइल चलाएं तो ही वो हमारे फायदेमंद चीज साबित होगी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है हीर राजा, आवाज मोहम्मद रफी साहब की है और गीत के बोल हैं तेरे कुछ में तेरा दीवाना दिल खो बैठे।

0: हेलो कानपुर,
1: आदरणीय दीदी जी को हमारा राम राम।
0: राम राम, कौन बोल रहा है?
1: ये आपका भाई पंडित राम जी गर्ग रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी।
0: बताइए राम जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, और आपका प्रोग्राम हमेशा सुनता रहता हूं तो मेरा दिल एकदम प्रफुल्लित होता रहता है, और आपका ये प्रोग्राम हमें एकदम टॉनिक दवा की तरह काम करता है।
0: चलिए, तो ये टॉनिक आपको हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। ये जो मेडिसिन है ना, ये बहुत बढ़िया वाली मेडिसिन है। वैसे भी म्यूजिक एक तरीके का मेडिसिन ही होता है।
1: जी जी जी जी, इसमें कितने भी दुख में रहे, कष्ट में रहे, पर जब म्यूजिक संगीत सुन लेते हैं दीदी तो थोड़ा जी हल्का हो जाता।
0: बिल्कुल, और ऐसे ही सुनते रहिए और ऐसे ही हम आपको एंजॉय कराते रहेंगे। बताइए, करते क्या हैं आप?
1: और तो मैं अपने रीवा में ऑटो चलाने का कार्य करता हूँ दीदी, या इस कार्य को मैं इस भाव से करता हूँ कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है।
0: सही बात है
1: जी जी।
0: आजकल ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा हर शहर में हो गई है।
1: जी जी जी जी जी।
0: जब ऑटो चलाते हैं उस टाइम पे क्या क्या ध्यान रखते हैं, थोड़ा बताइए।
1: जी जी, बहुत चीजों को ट्रैफिक में ध्यान रखना पड़ता है दीदी, क्योंकि किसी का अगर फोन आए तो गाड़ी खड़ा करके फोन रिसीव्ड करना चाहिए। उसके साथ बहुत तेजी गति से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, बाएं दहिने आगे पीछे बिल्कुल ध्यान देकर के गाड़ी हम चलाते हैं, और देरी से भले पहुंचे पर बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं। कहते ना है कि
0: दुर्घटना से देर भली।
1: जी जी जी, जीभ में लबों में जो शब्द थे तो आपने खुद ही समझ गई और बोल दी।
0: तो राम जी, वैसे तो जिस भी फील्ड के लिए नियम बनाए गए हैं वो हमेशा फॉलो करने चाहिए, क्योंकि नियम बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए, हमें उनको तोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपसे भूले भटके कोई नियम टूटा हो?
1: नहीं, मैं नियम को तो हूँ अपने दिल की डायरी में नोट किए रहता हूँ। हम नियम बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं, नहीं तो फिर अपने को भी घाटा परेशानी बनती है और दूसरे को भी परेशानी आ जाती।
0: तो आप दिल की डायरी में और दिमाग के कलम से नोट करते हैं।
1: ये नास्तिक फिल्म का गाना आप प्ले कर दीजिए दीदी।

0: आगे चल चल आज का ये दिन कल बन जाएगा कल पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल।
1: हेलो कानपुर।
2: हेलो कानपुर।
1: हाँ जी, कौन बोल रही है?
2: जी मैम, मैं शिल्पा बोल रही हूँ।
1: शिल्पा जी कहाँ से बोल रही हैं? जगह का नाम भी बता दीजिए।
2: चेंडी दलीपुर से।
1: शिल्पा जी क्या करती हैं आप?
2: मैं हाउस वाइफ हूँ।
1: हाउस वाइफ हैं
2: जी।
1: कौन कौन है आपकी फैमिली में?
2: मेरी फैमिली सास है, ससुर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है।
1: कितने बच्चे हैं आपके?
2: दो बच्चे हैं।
1: स्कूल जाते हैं?
2: जी मैम, मेरा बच्चा एक इंटर पास आउट कर चुका है, एक हाई स्कूल पास हो गया है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं।
2: जी मैम।
1: तो अब आपको थोड़ा सा तो सुकून होगा ना? जब बच्चे छोटे होते तो उनकी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही निभानी पड़ती है। वैसे बच्चों की तो जिम्मेदारियां हमेशा ही निभानी पड़ती है।
2: हाँ मैम, समय के साथ जिम्मेदारियां थोड़ा सा बदलती रहती,
1: थोड़ा सा बदलती
2: है, अलग होती रहती
1: है। तो बच्चे पढ़ने में कैसे हैं?
2: मैम ठीक है।
1: तो बेटी भी है?
2: नहीं बेटी नहीं है, दो बेटे हैं।
1: दो बेटे हैं
2: जी मैम।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप दो बेटों की मम्मी हैं। और आपकी आवाज से बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि आपके बच्चे थे इतने बड़े हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे लगा कि छोटे होंगे।
2: नहीं मैम, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं।
1: तो अच्छा बताइए, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो आप पूरा दिन किस तरह से अपना बिताती हैं?
2: कुछ नहीं मैम, सुबह बच्चे जाते हैं, एक स्कूल जाता है छोटा वाला, बड़ा वाला कोचिंग जाता है। तो सुबह नाश्ता कर उनको नाश्ता बना के भेजा, फिर घर का काम किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर बच्चे आ जाते हैं दोपहर में, फिर उनको खाना वाना देते हैं। बस इसी तरह से सब टाइम निकल जाता है।
1: और साथ में एक काम तो आप बताना भूल ही गई कि हाँ, आप जो रेनबो सुनती हैं।
2: हाँ रेनबो सुन लेते हैं।
1: और वो सुनने के बाद ही तो आप हमारे साथ जुड़ी हैं।
2: जी मैम।
1: कैसे लगते हैं आपको हमारे यहाँ के प्रोग्राम्स?
2: आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बहुत अच्छे लगते हैं
2: जी मैम।
1: किस तरह के प्रोग्राम्स ज्यादा आपको पसंद है?
2: हमें फोनिंग प्रोग्राम ज्यादा पसंद है, और हेलो कानपुर है, आपकी फरमाइश है, इस टाइप के प्रोग्राम।
1: और गाने किस तरह के सुनने पसंद है?
2: गाने नए पुराने सब तरह के पसंद है। एक आपका सखी सहेलिया तो वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है।
1: सखी सहेली मुंबई से आता है
2: जी मैम।
1: मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स आपको सुनना पसंद है। तो ऐसा ही प्रोग्राम हमारे यहाँ से जाता है, सुबह 11 बजे जाता है हमनवा।
2: जी जी।
1: आपने सुना है वो प्रोग्राम?
2: हाँ सुना है।
1: तो उस प्रोग्राम को आप सुना करिए, आपको वो प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। हर तरीके के विषयों पर बात करते हैं, महिलाओं पर भी बात होती है, बच्चों पर भी बात होती है, समाज से जुड़े जितने भी विषय हैं, जितने भी मुद्दे हैं, ज्यादातर उन पर बात होती है। और बहुत ही दिलचस्प बात होती है, आप सुनेंगी तो आपको पसंद आएगा।
2: जी मैम ठीक है, अब सुना करेंगे।
1: जी तो आज कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
2: हरे रामा हरे कृष्णा का टाइटल सॉन्ग।
1: हरे रामा हरे कृष्णा का टाइटल सॉन्ग, यानी कि दम मारो दम।
2: जी मैम।
1: आपको सुनवाते हैं ये गाना, और आप हमारे साथ FM रेनबो के साथ जुड़ी रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच।

0: तो डियर लिसनर्स, ये थी आज के हेलो कानपुर प्रोग्राम की म्यूजिकल जर्नी। इस ब्यूटीफुल जर्नी में मैं थी आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर। और मेरे साथ कौन था? जी हाँ, ऑब्वियसली मेरे साथ थे आप। और सच में आपकी बातों, फरमाइशों और आपके प्यार ने इस प्रोग्राम और शाम दोनों को बहुत ही खूबसूरत बना दिया, खुशनुमा बना दिया। और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वैसे यही तो है हेलो कानपुर प्रोग्राम की खूबसूरती कि यहाँ हर लिसनर एक कहानी की तरह है और हर कहानी के साथ जुड़ा है एक प्यारा सा गीत।
1: आओ सुनाओ प्यार की कहानी।
0: तो अगली कहानी होगी नेक्स्ट टाइम मिलने पर अभी इतना जरूर कहूँगी कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो, उसमें संगीत की एक खिड़की हमेशा खुली रखिए जिंदगी के मुस्कुराने के लिए। तो अब मुझे बोलना है आपसे,
2: जाती हूँ मैं।
0: जी जल्दी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो हो गया है कंप्लीट। और मुझे आपसे बोलना है टेक केयर, बाय बाय। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राहुल पाल, तकनीकी सहयोग आलोक सोनवानी और अन्नपूर्णा का।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में विकसित ग्राम विकसित भारत के विजन को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में देशभर से आए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर लखपति दीदी डेस्क बोर्ड का शुभारंभ किया गया और माई जीओवी पोर्टल पर आयोजित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। श्रीराम मंदिर दान प्रकरण में आज सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में वर्चुअल पेशी कराई गई। पुलिस ने किसी भी आरोपित की रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। वहीं अयोध्या बार में वकीलों की बैठक में तय किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता इन सभी आरोपितों की केस नहीं लड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर विस्थापित परिवारों को नागरिकता प्रदान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता मिले और जमीन का मालिकाना हक मिले। मुख्यमंत्री ने पीलीभीत में बंगाली विस्थापित परिवारों को नागरिकता के प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में 55,000 से अधिक लोगों को अब तक जमीन का मालिकाना हक दिलवाया जा चुका है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ पीलीभीत जिले का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के उद्गम स्थल को भी विश्व स्तरीय पर्यटन एवं आस्था केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र की कलीनगर तहसील स्थित गोमती उद्गम स्थल के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 1,04,00,000 रूपये की परियोजना स्वीकृत की है। इसके तहत प्रथम चरण में 78,00,000 रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा गोमती उद्गम स्थल को एक प्रमुख आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: फ्रेंड्स, 5:03 और 46 सेकंड हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर एक बार फिर से आरजे अलका आपके साथ है। मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी अगले कुछ घंटे। फिलहाल बता दूं आपको कि प्रोग्राम आपका शुरू हो चुका है टॉप 10। तो टॉप 10 में आज किन 10 गानों को हम शामिल करने वाले हैं, जिनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा अब से कुछ ही देर में। फिलहाल आज हम टाइम मशीन में बैठेंगे और सीधे चलेंगे उस दौर में जब प्यार का मतलब ब्लू टिक नहीं बल्कि खेतों, जो खास तौर पर जो लेटर्स होते थे उस दौर में, जो खत होते थे उनमें छिपी जो खुशबू होती थी वो हुआ करती थी, जब गानों में शोर नहीं हुआ करता था, सुरीलापन हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्लोरियस 90s की। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से और पहुंचाते हैं आपको नंबर 1 पर। नंबर 10 पर जिस मूवी का ट्रैक रहा और जिसने उस वक्त 90s में धमाल मचा रखा था वो था ये।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: सुनिए,
4: कहिए, कहिए,
3: सुनिए, सुनिए,
4: कहिए, कहिए ना।

सो फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है नंबर 10 के बाद नंबर 9 की, और नंबर 9 पर उस वक्त एक ऐसी मूवी के ट्रैक ने जमकर धमाल मचा रखा था। एक्चुअली मूवी मोहरा की मैं बात कर रही हूँ, उस दौर में यानी 90s में मोहरा एक ऐसी फिल्म थी जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। रीजन था कि उस वक्त जो बहुत सुपर डुपर स्टार में अक्षय कुमार शामिल थे और उनकी फिल्म थी मोहरा, और मोहरा ने बहुत जबरदस्त जो है वो कमाई करी थी उस वक्त, और उसके जो ट्रैक्स थे वो लोगों को बेहद पसंद थे। इनफैक्ट ये जो ट्रैक नंबर 9 पर जमकर बैठा उस वक्त, इस ट्रैक को भले ही कभी आप याद करें ना कहें, लेकिन आज के भी इस दौर में आप उसे बारिश के मौसम में जरूर गुनगुनाना चाहेंगे, और गुनगुनाते भी हैं लोग और उसे बेहद पसंद भी करते हैं।

सो फ्रेंड्स, नंबर 8 के बाद नंबर 7 की आ गई है बारी, नंबर 9 के बाद और माफ कीजिएगा नंबर 8 की बारी आ गई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। नंबर 9 के बाद बारी नंबर 8 की आ गई और बॉम्बे फिल्म इस वक्त नंबर 8 पर जम कर चिपकी हुई थी, क्योंकि एक ऐसी फिल्म थी बॉम्बे जो सामाजिक उथल पुथल के बीच पल रही एक ऐसी लव स्टोरी को लेकर आई थी जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया और साथ साथ इसके जो ट्रैक्स थे उसे भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि गाने भी जो थे वो बहुत चुनिंदा गाने थे इसमें और कम ही गानों के साथ इस फिल्म को लॉन्च किया गया था, लेकिन जो भी थे वो सुपर डुपर हिट थे और उसका ही एक ट्रैक था नंबर 8 पर उस वक्त।

सो फ्रेंड्स, 5:22 हो चुके हैं और वक्त हो गया है अगले ट्रैक की तरफ आगे बढ़ने का. और ये जो ट्रैक है अगला, वो है नंबर 7. नंबर 7 पर छाई थी फिल्म दिल से, और दिल से का ये ट्रैक जिसे सुनने के बाद आपको थिरकने का मन करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ट्रैक ही कुछ ऐसा है. इस ट्रैक को एंजॉय करने के बाद आपको लगेगा कि आज भी अगर डीजे फ्लोर पर या फिर अदर किसी पार्टीज में, आप जहां पर गैदरिंग में रहे और ये सॉन्ग प्ले हो जाए, तो आप नाचे बिना नहीं रह सकते.

सो फ्रेंड्स, बारी आ जाती है जल्दी से नंबर सिक्स की। नंबर सिक्स पर एक ऐसा ट्रैक जो मुझे लगता है अब थिरकने के बाद आपको थोड़ा सा गमगीन कर सकता है, क्योंकि नंबर सेवन के बाद आएंगे नंबर सिक्स पर, और जिस पर थी फिल्म नाम। अब आप थोड़ा थोड़ा शायद समझ रहे होंगे, उसका ये जो ट्रैक है ये एक गाना नहीं था, बल्कि भावनाओं को बयां करता और दर्द को बयां करती एक कहानी कह रहा था ये ट्रैक पूरा। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि ये जो ट्रैक है वो कितना दिल को छू जाने वाला था।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
3: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओं बाजार नहीं,
2: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
3: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
4: धड़कन लखनऊ की
3: 100.7 FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आज 5:32 और 41 सेकेंड है ये वो ट्रैक जिसे आप इंजॉय करने वाले हैं नंबर 5 पर। जी हाँ, नंबर 5 पर इस ट्रैक को इंजॉय कीजिए फ्रॉम द मूवी 1942 लव स्टोरी।

नंबर चार की आ गई है बारी। 5:36 हो चुके हैं दोस्तों, और इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं आज का टॉप 10 आरजेएल का के साथ 100.7 FM रेनबो पर। सो फ्रेंड्स, नंबर चार पर थी वो फिल्म जिसने सबके दिल को छुआ। एक्चुअली 90s का जो दौर था वो अपने आप में गोल्डन एरा था, क्योंकि उस वक्त जो मूवीज रिलीज हुई थी 80s और 90s में, इनफैक्ट 90s के खास तौर पर बात करें तो वो लगभग सबके दिलों को छूने वाली थी। और उनके जो ट्रैक्स थे, उनके जो सॉन्ग्स थे, वो आज भी उतना ही सुख चैन और आराम देते हैं, दिल को सुकून देते हैं, जितना उस समय दिया करते थे। सोचिए तब से लेके अब तक इतने डिकेड्स बीत चुके हैं, लेकिन इन गानों का जो चार्म है वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और उन सुपर डुपर हिट लिस्ट में शामिल थी साजन। साजन की जब बात आती है तो आप सोच सकते हैं मैं किस तरह के, किस लेवल के गानों की बात कर रही हूं। तो सुपर डुपर हिट फिल्म साजन का ये ट्रैक पहुंच चुका था नंबर 4 पर। तो आइए इस ट्रैक को करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की।

0: 100.7 FM रेनबो।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज टॉप 10 में 90s के उस दशक की। तो 90 के दशक की शुरुआत हुई थी एक ऐसे एल्बम से जिसने गुलशन कुमार चुके टी सीरीज और कुमार शानू को हर घर की आवाज बना दिया था। फिल्म थी आशिकी और गाना था जो आज हर आशिक दिल की पहली पसंद बन गया है। जी हाँ, उस दौर से लेकर इस दौर तक अभी भी उसी खूबसूरती के साथ लोगों के दिलों को छूने वाला फिल्म आशिकी का ये ट्रैक इस वक्त पहुंच चुका है कहाँ, जी आप समझ सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर हम आ चुके हैं और अब बारी आ चुकी है उस फिल्म की और उस गाने की जिसने नंबर 3 पर बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह बना रखी थी। तो चलिए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं फ्रॉम द मूवी आशिकी।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है नेक्स्ट ट्रैक की, और 90s सिर्फ एक रोमांस का नहीं बल्कि कॉलेज बंक करने और अपनी पहली नजर के उस जादुई एहसास का भी दौर था। तो आमिर खान की लाल टोपी और जतिन ललित का वो आइकॉनिक पियानो पीस, बिल्कुल आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, पेश है 1992 का वो गाना जिसने स्लो मोशन में दौड़ने का कूल बना दिया था और लोगों ने उसे बेहद पसंद किया था। चलिए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर।

बजकर 55 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं और अब बारी आ गई धीरे से नंबर ट्रैक वन की। नंबर वन पर पहुंच चुके हैं। वैसे इस गाने को सुनकर आज भी थोड़ा सा पेट में तितलियां उड़ती हैं। एक्चुअल में ये ट्रैक था उस दौर का ऐसा गाना, जब बात 90s की हो तो किंग खान यानी कि शाहरुख खान और उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर को कैसे आप भूल सकते हैं। सरसों के खेत हो, हाथ फैलाए राज और सिमरन हो, तो आप उन्हें बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। तो ये खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक रहा उस दौर में नंबर वन पर। तो चलिए करते हैं इसे इंजॉय और वापस आते हैं लेकर आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम शाम। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो विद आरजे अलका।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी स्वयं की संपत्ति और वैभव राष्ट्र में कैसे सहायक हो सकता है। दानवीर भामाशाह जी का प्रेरणादायक व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुरादाबाद का चहुमुखी विकास हो रहा है और जिले ने पीतल नगरी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वहीं

चित्रकूट में भामाशाह जयंती पर व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन राज्य कर विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर जनपद के शीर्ष करदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने व्यापार को और सुगम बनाने, नगर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और युवाओं के स्वरोजगार को लेकर प्रशासन के विभिन्न पहलों की जानकारी साझा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये कदम स्वस्थ भारत और अधिक डिजिटल के रूप में सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ वो वर्तमान में भारत के शीर्ष और विश्व रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मिर्जापुर में कल शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि 6 लोग झुलस गए। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
3: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: और हमेशा की तरह हो गया है आगाज आपके शामी अवध का, क्योंकि 6:07:06 हो चुके हैं दोस्तों, और इस खूबसूरत ट्रैक को एंजॉय करिए, क्योंकि इसके कुछ ही देर के बाद आपकी लखनऊ अपडेट शुरू होने वाली है। तो शहर के बारे में होंगी बहुत सारी जानकारियां खूबसूरत गानों के साथ। स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो विद RJL का।

वेल फ्रेंड्स, टाइम हो गया 6:09 और 28 सेकेंड, और इस वक्त शामी अवध में जो पहली जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा काम की है। काम की ऐसे है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस में, ट्रेन में कई जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हमें पता नहीं होता कि हम उस प्रॉब्लम को चलती बस में या चलती ट्रेन में कैसे सॉल्व करें। तो समस्या ये हो जाती है कि सही जानकारी का ना पता होना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। तो आपको बता दें, आज की अगर आप बस में सफर कर रहे हैं तो इसके दौरान यात्री अगर आप हैं उस वक्त, तो आप शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं अगर आपको, आपके संग कोई भी दुर्घटना हो रही है, कोई भी आपको परेशानी हो रही है। तो रोडवेज बस में सफर करने के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो कंट्रोल रूम नंबर 8726-0058 और 08, फिर से एक बार नोट कर ले, 8726-0058-08 पर फोन करके अपनी शिकायत को आप दर्ज करा सकते हैं। और अपनी शिकायत बस नंबर और डिपो के साथ आपको दर्ज करानी होगी अगर आपके संग कोई भी असुविधा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उस ट्रैवलिंग के दौरान हो रही है। तो

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग। Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

सो फ्रेंड्स, 6:19 हो चुके हैं, लगभग आधा घंटा निकल चुका है, लेकिन शामी अवध में अभी अपडेट का सिलसिला जारी है। जो लोग डाक अदालत का वेट करते हैं उनके लिए है अगली जानकारी कि लखनऊ मंडल के उपभोक्ता जो हैं, उनकी डाक और पेंशन संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनके त्वरित निपटान के लिए 1 जुलाई को सुबह 11 बजे से न्यू हैदराबाद स्थित प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालय में डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शिकायत पत्र पर डाक अदालत लिखना अनिवार्य है। आपकी जो भी शिकायत है उसे एक पत्र पे लिखिए, उसे एक एनवेलप में डालिए और उस लिफाफे पर आपको शिकायत पत्र लिखना अनिवार्य है। और 1 जुलाई इसकी डेट निर्धारित है, समय होगा 11 बजे, न्यू हैदराबाद स्थित प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालय में ये डाक अदालत आयोजित की जाएगी। तो अगर आपकी कोई भी इस तरह की शिकायत है तो आप बिल्कुल इसका त्वरित निपटान जो है वो कर सकते हैं इस अदालत का लाभ उठाकर।

फ्रेंड्स 6:43 हो चुके हैं 107 FM पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवदार जेलका के साथ। वैसे जो गर्मी है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और मुझे लगता नहीं है कि मानसून को इतना लेट होना चाहिए था। अभी भी प्रॉपर जिस तरह से बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। कुछ जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन कुछ जगहों पर बारिश अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। इनफैक्ट अपना लखनऊ भी पूरी तरह से भीगा नहीं है। अभी कुछ एरियाज में होती है, कुछ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है और ये जो वेदर चेंज है ना, तेज धूप और दिन थोड़ा सा मौसम चेंज और हल्की फुल्की बूंदाबांदी, यही जो है वो इस तरह की थोड़ा सर्दी गर्मी और फिर फीवर का आना, गले में खराश का होना और सर्दी खांसी हो जाना, ये नेचुरल है, ये तो फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है। प्रॉपर अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अपने आप को कवर करके फ्रेंड्स जरूर रखिए क्योंकि ये तपती धूप जो है वो आपको कब प्रभावित कर देगी, कब परेशान कर देगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अगर आप कहीं बाहर है, अचानक वेदर चेंज हुआ और पानी बरसने लगा, तब तो फिर मुसीबत ही है। यानी थोड़ी देर पहले आप धूप में थे और थोड़ी देर के बाद आप वापस पानी में भीग रहे हैं। तो इस तरह से अपने बचाने के लिए अपने साथ हमेशा आप अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह गाड़ी में रखकर चलिए। अगर आप पब्लिक कन्वेंस से चल रहे हैं तो भी आप उसे कैरी करके चले क्योंकि वेदर कभी भी बदल सकता है। मानसून तो आ ही चुका है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो इस तरह से धूप है तो धूप में भी खुद को बचाइए और अगर बारिश हो जा रही है तो उसमें भी आप खुद को बचाइए जरूर, क्योंकि सेहत है तो सब है।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

0: पुष्पांजलि हर सुबह 6 से 7 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
2: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: To main aapko sunana chahta hu us saal ka lokpriya geet ye ye ye. ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

वेल फ्रेंड्स, 6:33:48 वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। फिलहाल अभी शामी अवध में वक्त बाकी है, ताकि कुछ अपडेट्स मेरे पास हैं आप सभी के लिए आपको बताती चलूं। जैसे कि अभी प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको बसेस से संबंधित और बस में यात्रा के दौरान अगर आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो कैसे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, रोडवेज बस के बारे में मैंने आपको बताया था। और अभी एक जानकारी और है मेरे पास आपके लिए, ये सिटी बस यात्री सेवा के लिए है, और इसमें अगर सिटी बस का कोई भी यात्री जो समस्या में पड़ गया है तो आप कहां पर शिकायत कर सकते हैं, कहां पर आपको टोल फ्री नंबर कैसे उपलब्ध हो बता देते हैं। एसी सिटी बसों में सफर करने वाले जो भी डेली सफर करने वाले यात्री हैं, दैनिक यात्री हैं, उनको सिटी ट्रांसपोर्ट ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। सफर के दौरान किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो जो भी यात्री हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी शिकायत और सुझाव के लिए आप सीधे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब क्या है वो नंबर, वो भी आपको बता देते हैं। 1800-1805014, यानी कि 1800-1805014, ये वो टोल फ्री नंबर है जिस पर आप अपनी शिकायत, अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और डायरेक्टली आप बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उस सफर के दौरान फेस कर रहे हैं।

सो फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो है वो लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज से है। स्मार्ट क्लास होगी यहाँ पर। जी हाँ, अमीनाबाद इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास में होगी अब पढ़ाई और अगस्त तक अब प्रवेश हो सकेंगे। अमीनाबाद इंटर कॉलेज में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ लगभग 1200 सीटों पर छात्रों के संग संग छात्राओं के भी दाखिले अब होंगे। फिलहाल कॉलेज में 1000 विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे में बची 200 सीटों पर अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकता है। यानी कि ये खबर जो है वो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। अगर आप इस कॉलेज में प्रवेश चाह रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं अगर प्रवेश चाह रही हैं तो। वैसे एक जानकारी और आपको दे दें कि कॉलेज की जो स्थापना है उसके 139 सालों के बाद बालिकाओं को भी प्रवेश इस कॉलेज में दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कॉलेज में, अमीनाबाद इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वक्त अभी भी है, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना आपको जुलाई के संग संग मिल सकता है एडमिशन के लिए।

0: कहानी है बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा लगा,
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: ओ गॉड,
0: स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सो फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो है वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI से है। अगर आपके बच्चे का आधार अपडेट नहीं है तो UDIS पोर्टल से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कैसे, आपको बता दें कि बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं तो ध्यान दीजिए कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट नहीं है उनकी जानकारी UDIS पोर्टल से आप ले सकते हैं। जी हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है। UDIS पोर्टल के माध्यम से विद्यालय

जानकारी ले सकते हैं। कैसे, आपको बता दें कि बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं तो ध्यान दीजिए कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट नहीं है उनकी जानकारी यू ड्राइव पोर्टल से आप ले सकते हैं। जी हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है। यू ड्राइव पोर्टल के माध्यम से विद्यालय अपने नामांकित विद्यार्थियों का विवरण और MBU अपडेट की स्थिति भी देख सकते हैं। तो इस पोर्टल के जरिए आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। अभिभावकों और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने 5 से लेकर 17 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए बायोमेट्रिक अपडेट की जो तिथि है वो 30 सितंबर 2026 तक निशुल्क कर दी है। तो ये डेट अभी 30 सितंबर तक के लिए रखी गई है जो कि अभी एक लंबा समय है। अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसका लाभ उठाइए।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग। Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रिंद।

और इस खूबसूरत ट्रैक के साथ फिलहाल शामी अवध को वाइंड अप कर रही हूँ मैं आपकी आज दोस्त हल्का, क्योंकि कुछ ही देर में आपका एक और फेवरेट शो लेकर हाजिर होना है। भाई बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप, हेलो एफएम की बात कर रही हूँ मैं। जल्दी से अपनी उंगलियों को रेडी रखिए नंबर डायल करने के लिए 2238852 या 2238845।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज मुरादाबाद का चहुमुखी विकास हो रहा है और जिले ने पीतल नगरी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये फैसला वकीलों और डीड राइटर्स की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में देश भर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। मिर्जापुर में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए प्रदेश सरकार ने 2 निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने की मंजूरी दी। साथ ही बेहद कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की भी संस्तुति दे दी है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। रोहित वर्तमान में भारत के शीर्ष और विश्व रैंकिंग सूची में 2 स्थान पर पहुंच गए हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते जाइए और मिलाते जाइए 2238-8052 या 2238-8045। जी हाँ, ये वो नंबर है जो आपको आपकी पसंद के ट्रैक को एंजॉय करा सकते हैं। 100.7 FM रेनबो पर शुरू हो गया है हेलो FM, आपके साथ है आपकी RJ दोस्त अलका।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: तो फ्रेंड्स, 7:53 हो चुके हैं और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो देखते हैं ये शुरुआत किस मेल से हो रही है या फीमेल से। हेलो,
5: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
4: गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, शुरुआत एक फीमेल से हो गई। मैं यही गेस कर रही थी कि आज की शुरुआत प्रोग्राम की मेल से होती है या फीमेल से। तो ये प्यारी सी आवाज किसकी है, अपना नाम बताएं।
5: मेरा नाम है रोशनी रावत।
4: रोशनी, आप चंडीगढ़ में है। रोशनी, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में। और कैसी हैं आप?
5: मैम बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात हो रही तो बहुत ज्यादा ही अच्छी हो रही, क्योंकि मेरी चौथी बार आपसे बात हो रही है।
4: हाँ जी रोशनी, मैंने आपको पहचान लिया। जी जी जी, और बताएं आज क्या है फरमाइश आपकी?
5: मैम मुझे एक एल्बम सॉन्ग सुनना है, आती है रात ओढ़े दर्द का कफन।
4: ओके,
5: अभिजीत भट्टाचार्य जी के बोले।
4: हाँ, और किसको सुनवाना चाहती हैं?
5: सुनाने है मुझे बबीता राव जी, सुन रहे हैं आपको गोसाईगंज लखनऊ से। गुलस्ता दीदी चंडीला से सुन रहे हैं। नीलू शर्मा दीदी रूपुर चंडीला से। साहिबा साजियांसारी और समा परवीन, यासिर भैया, महेंद्र भैया, ताली भैया, आसिफ भैया, सभी लोग सुन रहे हैं।
4: सभी लोग
5: हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, सभी को डेडिकेट रहेगा।
4: ओके,
5: और आपको भी मैम,
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं भी नाम लेती तो ये मतलब अंडरस्टूड है कि मेरे लिए तो है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच,
5: भूल गई मैं इतना।
4: कोई नहीं कोई नहीं। रोशनी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, और ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए और आपके सभी वो लोग जिन्हें आपने डेडिकेट किया है। थैंक यू, थैंक यू।

0: सो फ्रेंड्स 7:15 हो चुके हैं, नेक्स्ट कॉलर लाइन पर है, चले करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: हम रीता बोल रहे हैं, दलागांव के टेंपरोवर से रूरक पास पड़ता है।
0: ओके रीता, बहुत बहुत वेलकम है आपका। कैसी हैं रीता?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: वेरी गुड, तो बताइए रीता आज क्या सुनना चाहती हैं?
1: सैनिक फिल्म का गाना।
0: गाना कौन सा?
1: पति परमेश्वर के सिवा मुझको नहीं परमेश्वर।
0: ये फिल्म सैनिक का गाना नहीं है, ये फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ट्रैक है, लता जी की खूबसूरत आवाज में। लेकिन गाना आपको हम यही सुनवाएंगे। और बताइए किसी को सुनवाना चाहती हैं ये गाना? दोनों फ्रेंड्स को आप सुनवाना चाहती हैं रीता। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, और ये प्यार सा गाना आपकी फ्रेंड्स के लिए और आपके लिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार,

0: प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
1: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
0: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की सीबीआई की जांच की मांग भी करेगा।
2: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालत करने के वकालतनामा दाखिल करने, अब जो कि ये भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
3: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी, और इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
4: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
5: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम किस्ती बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ, उसको हम निरस्त करते हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा

0: दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देशभर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से यूपी टीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
1: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें दो लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, और यहाँ से रोहित यादव, दो लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। और अब वक्त हो गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अगले अपडेट का।
2: Of a stoppage time winner, Canada will meet Netherlands or Morocco next.
3: Given Morocco's last 6 years, they're a modern giant, and I think that given the success of the Dutch national team for what feels like centuries, that's a traditional giant. So now we're at that phase of the tournament, and I feel like it's a free hit, and we're going to go after it and do everything we can to see if we can find a way to get a win.
2: The defeat for South Africa was the final match in charge for retiring head coach Hugo Broos. He offered his assessment of where South African football needs to improve.
4: Modern football is more than technique.

0: वेलकम अगेन फ्रेंड्स, 7:32:40 हो चुके हैं। 100.7 एफएम रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का हेलो एफएम आरजेएल का के साथ, और हमारे साथ साथ निभाने के लिए इस वक्त कॉलर जुड़ चुके हैं। चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: और ये दिल मुस्कुराया, आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला याद आया। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। गाते गुनगुनाती आवाज किसकी है भाई?
1: गाती गुनगुनाती आवाज है सत्यम कुमार की, ग्राम प्रतिनिधि कैसरगंज भराई से। आज बहुत दिनों के बाद मेरी आवाज रेडियो तक पहुंची है।
0: तभी आपने सोचा कि शुरुआत ही हम गुनगुनाने से कर लेते हैं, है
1: ना? दरअसल मेरे रेडियो में भी प्रॉब्लम आ गई थी और फोन में भी आ गई थी।
0: ओके।
1: तो गूगल पर सुन रहे थे। जी।
0: ओके,
1: और
0: ओके।
1: अब फोन भी सही हो गया।
0: ओके, तभी आपने इतनी प्यारा सा जो है गाना सुना दिया हमें पहले। ये तो बनता तो है कि आपने हमें सुनाया तो हम भी आपको सुनवाए जरूर। तो बताइए आज क्या सुनेंगे आप?
1: पहले गाना बता दीजिए, फिर पहले डेडिकेट कर दो।
0: पहले गाना बताना पड़ेगा, तभी तो डेडिकेशन बताएंगे आप।
1: ए दोस्ती।

0: भाई वाह, आपने मौका छोड़ा नहीं दोबारा गुनगुनाने का भी, है ना सत्यम? That's very good. आप बताइए कि किसको आप सुनवाना चाहते हैं गाना?
1: मैम अपने दोस्तों को, मैंने सोचा था मैम कि मेरे दोस्त मुझे भूल चुके होंगे ज्यादा दिन तक आवाज न सुनने पर, लेकिन वो लोग बराबर मेरा नाम लखीमपुर से बहन समापरदीन अंसारी, सॉरी सीतापुर से समापरदीन अंसारी, लखीमपुर से शाहजहां अंसारी, बाराबंकी से बाबू अंसारी भाई है, उन्नाव से श्री प्रकाश दादा है, और रायबरेली से रिंकी पिंकी बहन है, लखनऊ से बबलू यादव भाई है, और सभी सुनने वालों को और आपको
0: थैंक यू सो मच सत्यम, और हम सभी की तरफ से आपको भी।

0: वेरी नाइस ट्रैक। और 7:39, 14 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, और हमारे अगले जो कॉलर है वो लाइन पर आ चुके हैं। चलिए उनसे करते हैं बात, उन्हें ज्वाइन करते हैं। हेलो।
1: जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो कोई गम न करो, बस FM रेनबो लखनऊ ट्यून करो और बजाते रहो।
0: भाई वाह, भाई वाह, क्या दिल जीता है आपने। खूबसूरत शायरी, और मतलब कोई गाना गुनगुनाता है तो कोई शायराना अंदाज में जो शुरुआत करता है, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का इस तरह से जुड़े रहना FM रेनबो के साथ। तो बताए ये कौन बोल रहे हैं?
1: मैम रजनीश चौरसिया, नवाबों के शहर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से।
0: रजनीश बहुत अच्छी शायरी बोली आपने, मतलब दिल को छू गई बिल्कुल। और थैंक यू सो मच रजनीश, वेलकम है आपका प्रोग्राम में। और आज क्या है आपकी पसंद बताएं?
1: मैम फिल्म है साजन और इसका बहुत खूबसूरत गाना है तुमसे मिलने की तमन्ना है।
0: वैसे साजन
1: प्रिय लिसनर हैं सभी के लिए।
0: ओके, वैसे साजन फिल्म आपने जो चूज की है ना, इसके सारे गाने लाजवाब है, लाजवाब। तो सभी लिसनर्स के लिए आपने डेडिकेट किया है ट्रैक, और कुछ कहना चाहेंगे रजनीश?
1: जी मैम, सब लोग खुश रहे, मस्त रहे, सुनते रहे FM रेनबो।
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सो फ्रेंड्स, 7:45 हो चुके हैं, अभी भी प्रोग्राम में कुछ समय हमारे पास बाकी है और अपने अगले कॉलर से करते हैं बात कि क्या है उनकी फरमाइश। हेलो।
5: हेलो मैम।
4: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। ओके मौर्य जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आने की कोशिश करें।
5: अच्छा जी मैम।
4: जी मौर्य जी, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
5: अगर जिंदगी मेरे संग हो।
4: ओके, फ्रॉम द मूवी बलमा। किसी को सुनवाना चाहते हैं ये गाना?
5: सभी लिसनर्स
4: को। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, और ये ट्रैक सभी को डेडिकेट आपकी तरफ से।

0: 7:50 हो चुके हैं, अगले कॉलर लाइन पर आ चुके हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हमारा नाम वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ब्लॉक हरगांव, जिला सीतापुर।
0: सीतापुर से वकील अहमद बोल रहे हैं। वकील जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में।
1: आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे, आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले का रहमो करम है।
0: बिल्कुल, और होना भी चाहिए। आज बताइए कि कैसा, कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं आप?
1: मौसम हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है, आज हमारे यहाँ बारिश हुई थी रात में जो है, और थोड़ी गर्मी से रात मिली है, और आगे बारिश होने की संभावना है।
0: बिल्कुल संभावना है
1: कि बारिश हो, सब किसान जो आदमी है गन्ने में पानी लग जाए, और जो है सब आराम, गर्मी से भी राहत मिले,
0: गर्मी से राहत मिले, क्योंकि गर्म कुछ ज्यादा ही इस बार हो रही है।
1: बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है,
0: सभी जगह है, सभी जगह है। मतलब अब बारिश का बहुत
1: बेसब्री, सब लोगों की बहुत अच्छी लगती है हमको।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। गाने बताएं, कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाने के बोल रहेंगे सुन।

0: छुपा रुस्तम।
1: ओके, और किसको सुनवाना
0: नाम
1: चाहते
0: ले
1: हैं? हाँ बिल्कुल लीजिए।
0: जैसे साहिबा अंसारी, ताजिया अंसारी, तमा परमीन, गुलता सिद्दीकी, अहमद नवाब और जितने लोग सुन रहे हैं सभी,
1: और आपको भी
0: गाना डेडिकेट रहेगा।
1: थैंक यू।
0: और आपको खास कर
1: थैंक यू।

0: सो फ्रेंड्स, 7:54 हो चुके हैं और वक्त हो गया है आज के प्रोग्राम के लास्ट कॉलर को लाइन पर लेने का, तो चलिए करते हैं उनका वेलकम। हेलो
1: हेलो दीदी को राधे।
0: हेलो
1: हेलो दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
0: केसरी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया दीदी, और आप कैसे हो?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। काफी दिन बाद आपसे बात हो पा रही है।
1: हाँ दीदी, हाँ, लगभग 1-2 महीने का अंतराल हो गया।
0: तो बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे केसरी जी?
1: प्रेम प्रतिज्ञा का सुनवा दीजिएगा दीदी।
0: कौन सा?
1: कभी कम नहीं करना।
0: ओके, और डेडिकेशन
1: कर लेना।
0: किसको आप सुनवाना चाहते हैं गाना?
1: आपको केंद्र से ऋचा दीदी को मेरा राधे राधे बोलिएगा।
0: बिल्कुल।
1: और राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, और जितने लाइव सुन रहे हैं सबके लिए रहेगा। सारून अंसारी जी भी सुन
0: रहे हैं। सभी सभी को डेडिकेट। बहुत खूबसूरत ट्रैक, चलिए थैंक यू सो मच। और आपको भी डेडिकेट ये ट्रैक, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केसरी जी।
1: जी सेम टू यू दीदी, राधे।
0: थैंक यू। और इस खूबसूरत गाने के साथ प्रोग्राम हेलो एफएम को यहीं पर वाइंड अप करती है आपकी रेडियो साथी अलका। और अब वादा मुलाकात खूबसूरत गानों के साथ, खूबसूरत बातों के साथ। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देश भर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टैंप और न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने बताया कि यह फैसला वकीलों और डी राइटर्स की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन, उत्पादन वृद्धि तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री सचान ने पोल्ट्री उद्योग से ज्यादा लोगों को जोड़ने और इस उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले अत्याधुनिक एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का निर्माण इस वर्ष सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण गोरखपुर

पुर के तालकंदला में 47 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्रफल में किया जा रहा है। ये एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नया गौरव बनेगी। एनसीसी ग्रुप गोरखपुर प्रदेश के 11 पूर्वी जिलों का प्रतिनिधित्व करता है। कुशीनगर और देवरिया में दानवीर भामाशाह जयंती पर व्यापारिक कल्याण दिवस 2026 पर आज जनपद के शीर्ष करदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं अलीगढ़ में स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

उतरा वही इस तरह लाए हैं। हम आंखों के भरोसे रहने वाले चांदनी नजरों में उतार लाए हैं। रातों की चमक को घटाने वाली कोई बात नहीं करेंगे आज। आओ सुबह को सीधा करो, हम आबशार लाए हैं।

ये अंदाज, ये फरमा रवानी क्या कहिए, दरवेशों के दिलों पर आपकी हुक्मरानी क्या कहिए। रफाकत चंद रोजा और दिलों के घाव जिंदगी भर के, मरज ता कयामत और चार दिनों की जिंदगानी क्या कहिए।

कलम उठाओ तो जिंदगी को जीने के लिए, कलम उठाओ तो जिंदगी को जीने के लिए, हिसाब करने के लिए, जख्म सीने के लिए, सारे जमाने की नेमतें एक तरफ कर सको तो कलम उठाओ, वरना कारोबार बहुत है, कुछ और करते हैं चलो जीने के लिए। कलम उठाओ तो जिंदगी को जीने के लिए।

कौन क्या कहेगा सबका हिसाब रखते हैं, वो अपने सवाबों की हमारे गुनाहों की किताब रखते हैं, वो रखते हैं अपना चेहरा सरे रात भी धूप की ओर, वही अकेले तो हैं जो अपनी आंखों में

हजारों बार कहकर भी इसे पाया जा नहीं सकता। बेतरह बारिशों से भी सहरा की तशनगी को बुझाया जा नहीं सकता। हर को हुसार में है कहीं छिपकर बैठी कोई गंगा, मगर मशीनों की बेहिस चीखों में उसे यहां तक लाया जा नहीं सकता।

गई शामों के किस्से अपने लहजे में समेटे, अब भी घूमते हैं हम। बिखर कर टूट कर भी सभी बच जाएं, रास्ता अब भी ढूंढते हैं हम। जिसे कह दें वही तो दूर तक दिखता नहीं है फिर। शिकवे छिपा कर मुस्कुरा कर न बचें, ऐसी अपनी दुनिया को अब भी ढूंढते हैं हम।

किसी रोज हम साथ न होंगे तो किसी पन्ने पर नोचोगे, किताबों में रिसालों के पन्ने पर तलाशोगे हमें, किसी बहाने से खोजोगे हर सिमत, मगर फिर आसमां में टाक कर नजरें किसी सितारे के गिरने पर तलाशोगे हमें। शुक्राना महफिले गजल आबशार में हमारा साथ निभाने के लिए।

0: 8:44 अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार, मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट

0: जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया।

0: श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और

0: सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क

0: लंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
3: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dheeraj

विजय पाल यादव जी ने ललहुआ खीरी से मैसेज भेजा है। आबशार बहुत ही अच्छा लगा। आबशार में आप गजल के पहले जो शेर सुनाते थे, तो हुजूर उसको शेर न कहिए, वो क्विक बंदी है, कहीं से भी शेर है ही नहीं वो। पर आपको अच्छा लगा, मधुर आवाज में बहुत ही अच्छा लगता है। पॉप टाइम कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है, सभी परिवार के साथ कार्यक्रम सुन रहा हूँ, प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लग रही है। ये लिखा है विजय पाल यादव, बबलू यादव, राजेश कुमार, ग्राम वपूस, ललहुआ, जिला खीरी से। बहुत प्यारी सी मेल और ढेर सारी और भी बातें, एक कविता भी लिखी इन्होंने। श्री गणेशाय नमः। पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, रामचरण, प्रजापति, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, धीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। आपका कार्यक्रम सुपर हिट है, बहुत ही अच्छा लगता है। फरमाइश ये है, तो ये वाले प्रोग्राम में तो फरमाइशी गाने नहीं ना बजते हैं जी। एक और रिक्वेस्ट फॉर सॉन्ग है कमांडर यादव जी की, काइंडली प्ले माई सॉन्ग। तो इस वाले प्रोग्राम में तो नहीं, लेकिन फिर कभी लौटे तो आपका गाना जरूर प्ले करेंगे। विलेज एंड पोस्ट एट कोहना लखीमपुर खीरी से बड़े दिनों बाद, गुड इवनिंग डियर नितिन ब्रो, व्हाट्स अप। तो मैं बहुत अच्छा हूँ आरती, आप कैसी हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। वी वार्मली वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम एंड थैंक यू फॉर योर एक्सलेंट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच आरती, शुरुआत में ही आपने लिख कर भेज दिया है, अब प्रोग्राम तो अच्छा होना चाहिए ना। मैं सौरभ प्रजापति, उत्तर प्रदेश, जिला अमेठी, ग्राम

गौतम पुर। नमस्ते सर जी, एंट्री बोले तो वाह तबाही, मैं तो अच्छा हूँ, बस गर्मी हाल बेहाल कर रही। सच में गर्मी बहुत बुरा हाल कर रही है नहीं तहजीब में मेरे कि तुम्हें बदनाम करूं, कि रात को दिन और दिन को रात करूं। ये जो तुम मेरे फलसफे को दोष देते हो कि दिल चाहता है मुखातिब हूं तुमसे, पर मलाल है कि सच बयान करूं तो कैसे बयान करूं। दिल का टेलीफोन उठाइए और जो बातें आपको बतानी है बता दीजिए, हमसे नहीं, हम तो बस मेल पे ही अवेलेबल हैं इस वक्त। जिनसे आपको अपने दिल का सच बयां करना है वो दिल के टेलीफोन से हो जाना चाहिए हुजूर।

हेलो एंड गुड इवनिंग नितिन भाई, ये लिखकर भेजा है हमें गुलबसा सिद्दीकी जी ने। मैं ठीक हूँ, आपने हमसे पूछा है तो मैंने आपको बता दिया। संडीला से आपने ये नहीं लिखा है कि आप कैसी हैं, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आप इस समय छत पर हैं, हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रोशनी रावत, बबीता राव, नीलू शर्मा, निशा अंसारी, ममता गौतम, महक अंसारी सब मिलकर सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो हम बहुत खुश हैं आपकी इस बात से और थैंक यू सो मच। बाकी सबसे भी कहिए।

कि वो भी प्यारी सी एक मेल लिखकर भेज दे हमारे पास तक, ताकि हमें यकीन भी हो जाए कि सब लोग मिलकर सुन रहे हैं। विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर। पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सरजी को गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, सादर प्रणाम। आपका अंदाज, आपकी प्रस्तुति सुपर हिट रहती है, अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका। कुछ मेरे दोस्त हैं आजाद सिमरी से, ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, क्षमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, संजय अतरौली से, ममता हरदोई से, सब लोग साथ में मिलकर सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये बताइए ना। राजकमल यादव जी लिखते हैं, हमारे यहाँ भतीजे का जन्म हुआ है तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एफएम की पूरी टीम की ओर से।

this message, eh?

अनुज, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग। आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। और ये गाना सुनकर के काहे सब लोगों को दुख देना चाहते हो? गर्मी तो ऐसे ही बहुत ज्यादा है। वकील अहमद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाने अच्छे बज रहे हैं। अर्ज है, वो गर्मी में भी सजा देता है, वो सर्दी में भी सजा देता है, टंकी का पानी हर मौसम में दगा देता है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, अहमद नवाब, रिंकी पिंकी, सबका नाम आपने ले लिया है। अब इन लोगों से ये भी बोलिए, मेल भी करें जिन लोगों ने अभी तक मेल नहीं भेजा है। जिंदगी ने सिखाया है कि हर खुशी आसान नहीं होती, कुछ मुस्कुराहटें कमानी पड़ती हैं और कुछ आंसुओं को छिपाना पड़ता है। वक्त के साथ सब बदल गया, ख्वाहिशें बढ़ गईं, सुकून कम हो गया, हम जीने लगे सपनों के पीछे और जीना ही कहीं पीछे रह गया। आनंद तिवारी लिखते हैं, दारुकुया मल्लावा हरदोई उत्तर प्रदेश से। प्रोग्राम के आगे इन्होंने 100 लिख के भेजा, इसका क्या मतलब है इन्हीं से पूछिए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नितिन भैया जी। ब्रजेश सिंह, दीपू, इटहुआ, कैसरगंज, बहराइच से लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण जबरदस्त है, साथ में मीठी सी आवाज सुनकर मन एकदम मस्त मलंग हो जाता है। मोहम्मद अजान साहब, आपने जो लिखा है ना, ये काले रंग में एकदम हल्के कलर में जो आपने लिख के भेजा, हमें बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा, चश्मा लगाए हम फिर भी नहीं दिख रहा है। मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से, सुन रहा हूँ प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं, ऐसा लिख के इन्होंने हमें भेजा है तो हम मान लेते हैं कि ये बात सच भी है। वैभव प्रकाश सिंह, सुंदर सी अपनी मेल में एक तस्वीर भेजकर कहते हैं, बेवजह खुश रहिए, वजह बहुत महंगी है। ये लिखने के साथ ही उन्होंने हमें वजह दे दी है कि हम एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए प्ले कर दें और जब वापस लौटेंगे और ढेर सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन आपने अगर हमें अभी तक मेल नहीं भेजी तो काहे का इंतजार कर रहे हैं, बताइए।

अरे भाई मंडे तो बस हफ्ते की शुरुआत से। आज जो हमने रफ्तार पकड़ी से ना पूरा हफ्ता इसी एटीट्यूड गेलने चलेगा। अपना तो उसूल से काम हो या म्यूजिक दोनों में कोई कसर ना छोड़ते। ये जो अगला गाना बजाने वाला से यो उसी धाकड़ और बेखौफ हौसले के नाम जो मारसा ने कदे रुकन नहीं देता। अपनी हिम्मत ने बुलंद रखो और सुनते रहो FM रेनबो 100.7 तड़कन लखनऊ की।

जैसे जैसे ही सुमार की संझिया गहिर होत बा, केहू आपन बहुत याद आवत बना। काम धंधा के बीचे में जब अचानक से कोनो इंसान के दिल के बीच में ख्याल आ जाला, तो दिल के धड़कन अपने आप ही तेज हो जाला। पाप टाइम के अगला गीत तो ही बेकरारी या मीट मीट प्यार के नाम बा। उकरा के याद करी जरा दिल के बेहद करीब बा, और मुस्कात रही कि इह एफएम रेनबो 100.7 धड़कन लखनऊ के।

नाजिम राइन दिल्ली से सुन रहे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आपको। नाजिम कुछ अपने बारे में भी लिखते, हमें तो लगता है आपसे हमारी पहली मुलाकात है। हेलो नितिन भाई, आम जीशान खान संडीला से। ये प्रोग्राम मुझे सबसे अच्छा लगता है और मैं इस वक्त सऊदी अरब में सुन रहा हूँ आपको। आप गाने बहुत अच्छे बजाते हो। कुछ नाम है जैसे मेरी पत्नी गुलफ्सा सिद्दीकी, हसन खान, जिया खान, नूर अक्सा, तो सबका नाम हमने ले लिया है जीशान जी। अच्छा, आप सबसे एक सवाल है, आप में से कितने लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, लेफ्टी हैं? और ये बताइए कि कुछ परेशानी होती है क्या लेफ्टी लोगों को? हमको नहीं पता बिल्कुल भी। मेरी भांजी का नाम पलक, मेरी छोटी बहन का नाम पल्लवी, मेरे चाचा जी का नाम है श्री राम नरेश। हम सब लोग बैठे एफएम सुन रहे हैं, सॉन्ग अच्छे बज रहे हैं। सर जी, मेल पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबुरिया पोस्ट बरौली मालिक जिला पाराबंकी से, और नाम है इनका शिवराज, अपना ही नाम नहीं लिखे, बाकी सबका लिखे। नाम मोइनुद्दीन कोडरी, खैराबाद सीतापुर से सुन रहे हैं। पहले तो प्यार भरा नमस्कार, बहुत धमाकेदार प्रोग्राम चल रहा है और बहुत जबरदस्त गर्मी लग रही है। सच है, गर्मी तो बहुत तगड़ी है। तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से, बहुत दिनों के बाद मेल कर रहा हूँ एफएम रेनबो पे। क्यों बहुत दिनों बाद क्यों कर रहे हैं? रोज किया कीजिए ना मेल, पर भी था और बिजी भी थे। मेरा लास्ट मेल 22 जून को था, बट आई हैव कम बैक। आप गीत बहुत अच्छे प्ले करते हैं, थैंक यू तालिब। और अब आप कम बैक कर चुके हैं तो अब वापस ना जाइएगा। टाइगर पूर्णिमा रूपपुर चंदेला से, नितिन भैया हो या निखिल भैया, नाम में कंफ्यूजन हो जाती है। प्रोग्राम बहुत बिंदास लग रहा है, मेरी सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। रोशनी, बबीता, स्नेहा, सोनी, सारा, पीहू, गुलफ्सा दीदी, वंदना शुक्ला दीदी, सबको नमस्कार इन्होंने कह दिया है। और नाम में कंफ्यूजन होती है इसलिए हमने वक्त बांट रखा है। रोशनी कहती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गर्दा उड़ाने की कोशिश ना, गर्दा उड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं, गर्दा उड़ाने

0: हमको छींक बहुत आती है तो हम गर्दा बिल्कुल नहीं उड़ाते। बबीता राव, नीलू दीदी, गुलफ्सा दीदी, शाजिया जी, साहिबा अंसारी, यासिर भाई, महेंद्र, देपन भाई, तालिब भाई, आसिफ भाई जी को मेरा सलाम बोल दीजिए। ये रोशनी ने लिखा है, हम सलाम बोल दिए, चंडीगढ़ से आप सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेल्स ढेर सारे हैं, सारे मेल पढ़ दूं। गुड इवनिंग प्रिया आरजे नितिन, सर जी आप कैसे हैं सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत सुपर हिट सर, एकदम से दिल को सुकून मिल रहा है आज सर, ये लिखा है इन्होंने। अब सबने इतनी तारीफ लिख दी है, हमारा जो पांव है वो धरती से 4 अंगुल ऊपर हो चुका है, तो हमें नीचे लाने के लिए कोई बुराई भी लिख के भेजेगा, जरूर कोई ना कोई तो भेजेगा ही, और हम पढ़ के आपको बताएंगे कि क्या बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये तो सब आपने बता दिया है।
1: Oh my God!

मुनेश कुमार आज गांव भानपुर हरौआ जिला रखीमपुर खीरी आरजे जी को शुभरतिया कार्यक्रम रेनबो पॉप टाइम हर कार्यक्रम बेमिसाल सुनते सुनते हो गए कई साल और लगता है बारिश होने वाली है आपके वहां मौसम कैसा है मैम तो कौन सी मैम को लिख के भेजे थे और ये रात में फिर से भेज दियो है और पॉप की स्पेलिंग POP होती है पॉपुलर सॉन्ग जो होते हैं ना उन्हें पॉप भी कहा जाता है और वो गाने जब बजते हैं तो उस वक्त को कहते हैं पॉप टाइम फिल वक्त यहाँ पे जो मौसम है उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हम स्टूडियो के अंदर है और अंदर मौसम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा तो आप जो बता रहे हैं उसी से हमको पता लग रहा है कि कैसा मौसम है और मैम वाली मेल ये रात में काहे भेज रहे हो जी हैं

हमको भेजो ना मेल, सुन रहे हो ना प्रोग्राम आप। पता बेलीकला, गुसाईगंज, नवाबों का शहर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सर जी, हमें आपका गजलों का आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, पॉप टाइम भी मस्त लग रहा है, एकदम झक्कास आपका प्रोग्राम। विनीता दी, रजनीश भाई, महेंद्र भाई राजस्थान से, रोशनी रावत जी, गुलफसा जी, आसिफ भाई, शाजिया अंसारी, साहिबा जी के साथ सुन रहे हैं, बेहतरीन प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और आप जो भोजपुरी में बात कर रहे हैं वो भी बहुत मस्त लग रहा है। ईमेल शामिल करने के लिए तह ए दिल से शुक्रिया। बबीता राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी सी मेल हमें लिख के आपने जो भेजी है ना, इसके लिए हमें दिल से आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू हमने बोल दिया है आपको। साबिर साहब लिखते हैं, कानपुर से प्रोग्राम मस्त लग रहा है। नीतीश सर कानपुर से लाइव सुन रहे हैं, मेरे दोनों भाइयों के नाम ले लीजिएगा। आपने हमारे भाई का नाम ले लिया, हम भी आपके भाई का नाम ले लेते हैं। आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, तो नाम ले लिए हैं। और एमन लिखती हैं, हेलो डियर नितिन भाई, कैसे हैं आप? लो मैं भी आ गई, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो स्वागत तो हम कर लिए हैं, पॉप टाइम की क्या बात करूँ, डांस बजन की क्या बात है, स्वैग से स्वागत। मुझे ऐसा लग रहा है सारी मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट लेकर आए, बहुत मजा आ रहा है, सुपर सॉन्ग्स आज, बहुत खूबसूरत बात हुई। तो बात यह हुई कि इन्होंने ठंडा ठंडा शरबत पिया और उसे लेकर के चली गई छत से सूखते हुए कपड़े लाने के लिए, और वहां पर इन्होंने बाउंड्री पर अपने शरबत का गिलास रख दिया और एक चिड़िया आई और उसने भी शरबत पी। बहुत अच्छा कि आपने फोटो नहीं ली, क्योंकि चिड़िया फिर उड़ जाती, और आपने जो आंखों से उसे देखा है ना, ये आपकी मेमोरी में हमेशा रहेगा। तस्वीर में होता है तो कुछ दिनों में धुंधला पड़ जाता, तो बहुत अच्छा किया आपने कि चिड़िया के लिए ये अनजाने में ही आपने पानी रखा, मीठा पानी, और उसने पिया। आप लोग भी अगर चिड़िया के लिए पानी रख सकते हैं तो रखिए, दाना रख सकते हैं, दाना भी रखिए। एमन रखती हैं दाना पानी, यह ऐसा उन्होंने हमें बताया है। मेल तो शामिल कर लिए हैं शिवराज जी, अब एक ही मेल कितनी बार हम शामिल कर लिए हुजूर? हाँ, तो आपकी जो बातें हैं वो सारे मेल्स हम शामिल कर रहे हैं, और सबके सबके मेल्स शामिल करने का वादा करके आए हैं। मौसम अगर अच्छा है तो थोड़ा सा शेकी शेकी हो जाइए,

पूजा ने हमें लिख के भेजा है, पर पूजा आपके नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें, ये पूजा पल पल है या पूजा पाल पाल है, क्योंकि दो बार लिखा है तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है। इस कंफ्यूजन को अगली बार मिटा दीजिएगा। बिठौली लखनऊ से प्रोग्राम सुन रही हैं, इस टाइम उनके साथ में निशा और रोशनी भी प्रोग्राम सुन रही हैं। अपनी पसंद का सॉन्ग सुनवा दीजिए, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच पूजा ये लिखने के लिए कि अपनी पसंद का गाना सुनवा दे, क्योंकि गाना जो है वो आपकी पसंद का हो तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारी पसंद का हो तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है, लेकिन पॉप टाइम तो

यू सो मच पूजा ये लिखने के लिए कि अपनी पसंद का गाना सुनवा दे, क्योंकि गाना जो है वो आपकी पसंद का हो तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारी पसंद का हो तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है, लेकिन पॉप टाइम तो आरजेस की चॉइस पर ही होता है, इसलिए इस समय थोड़े से फरमाइशी वाले जो गाने होते हैं हम नहीं प्ले कर पाते, उसके लिए माजरत जिन लोगों ने भी हमसे फरमाइशी गाने के बारे में पूछा था। गुलफसन लिखती हैं कि नितिन भाई मैं तो नहीं हूँ, मेरे अब्बू लेफ्ट हैंड से ही सारे काम करते हैं, तो एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे सवाल को ज़रा सी तरह दी है और जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफसन आपका हमें प्यार से इतनी मोहब्बत से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। क्या परेशानी होती वो तो आप नहीं बता सकती हैं, लेकिन आपने बताया, हमारे सवाल का जवाब दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप शो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुझे सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं, ये लिखा है हमें वारिस अली खान साहब ने संजय नगर ऐशबाग से। आप सच बोलने की ठान चुके हैं तो फिर हर कदम पर किसी दुश्मन से उलझना होगा, वो जो कहते हैं कि बदलेगा ये दौरे जुल्मत, उनको पहले तो खुद अपने को बदलना होगा। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, आप बहुत अच्छे हैं, आपको हम सऊदी अरब से रोज सुनते हैं, मेरा घर कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है और मैं डेडिकेट करना चाहूंगा आपको और हमारी प्यारी बहनों को, रिंकी और पिंकी रायबरेली से अगर सुन रही हैं प्रोग्राम तो आपको एक गाना नहीं पूरा प्रोग्राम डेडिकेट किया है अजान साहब ने। और इनके साथ में कौन लिखा है ये वाली मेल, मोहम्मद नौशाद ने लिखी है। तो ये सारे जो नाम हम पढ़ रहे हैं ना, ये इस वजह से हो गया है क्योंकि कहीं नाम कुछ और होता है मेल में और अंदर कुछ और नाम होता है। कोई बात नहीं मुनेश जी, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी होती है, आपसे भी होती, कोई बात नहीं। आपके दिल की गहराई में डूबा था तभी याद आया मुझे तैरना नहीं आता, ये वाह वाह वाह भी लिख कर भेजा है तालिब ने, ये बिल्कुल आप हमारी तरह ही शायरी करते हैं, न किया कीजिए, है ना, हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं तो हम अब नहीं करते हैं। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए और उसके बाद थोड़ी सी और बातें होंगी अगर मौका रहेगा तो, या शायद नहीं रहेगा मौका तो फिर बातें नहीं होंगी, तो यहीं से कहना पड़ेगा। पॉप टाइम में बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी मेल्स अपने दिल की बातें हमसे शेयर करने के लिए। पॉप टाइम की स्पेलिंग POPTIME है तो ये याद रखिएगा सब लोग, और सब्जेक्ट में जरूर लिखा कीजिए। कुछ लोग अभी भी रेनबो कैफे वाले मेल भेज देते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा ना करें। इतनी मेहनत से आरजीज यहाँ चिल्ला चिल्ला के आपको बताते हैं पॉप टाइम हो गया, पॉप टाइम शुरू हो गया, पॉप टाइम शुरू हो गया, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। और आप सब ने इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सजी धजी हुई मेल समय भेजी, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कहीं जाइएगा मत, ये वाला प्रोग्राम पॉप टाइम आखिरी सॉन्ग के साथ यहीं पर ठहरेगा, उसके बाद एक समाचार और फिर वापस लौटेंगे तो आपको सुनाएंगे ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत, कहाँ रजनीगंधा में, बस यहाँ। ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 365 करोड़ रुपए की 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के उत्तर प्रदेश में विकास भी है, विरासत भी है। पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तानी होती थी, इसलिए पहले पैसा कब्रिस्तान में लगता था, अब मंदिरों के विकास में लगता है। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ इसके उदाहरण हैं और अब मथुरा की बारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का विजन विकास नहीं, इनका विजन परिवार का विकास है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर का 10वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 37 मेधावियों को स्वर्ण पदक तथा 25 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को सीख देते हुए कहा कि जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लो, लेकिन संस्कार नहीं भूलने चाहिए। आज हम पूरे विश्व को दिशा दिखा रहे हैं। मैनपुरी में दानवीर भामाशाह की जयंती पर कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वाधिक राज्य कर जमा करने वाले और समाज में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टूल किट और ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। बस्ती जनपद में संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला विकास समन्वय एवं सभागार में निगरानी समिति की बैठक सांसद रामप्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के हित में जो भी योजनाएं हैं उससे किसानों को 100% लाभ दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: दिन भर खुद को बस किसी तरह से वैसा हो जाने से बचाते हुए बीता, जैसा हम सबको देख करके बस जज करते हैं, जहां सब किसी और के बगीचे की खुशबू पर मर मिट रहे थे, वहां खुद के लगाए पौधों को धूप की आग में कुम्हलाने से बचाते हुए जब लग रहा था कि दिन बहुत संभव है कि आज बीतेगा ही नहीं, तभी फिर बीत गया एक और दिन। फिर रात आई, रात जिसमें अपने हिस्से का ढेर सारा सुख लेकर सबसे साझा करने इकट्ठा होते हैं हम, म्यूजिकल दुनिया के सबसे दिलकश हम सफर यानी रजनीगंधा में। और कहाँ, बस यहीं तो जो है हमारा ठिकाना, 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

दुनिया वालों में, खासकर किसी से मोहब्बत का दम भरने वालों में एक बुरी आदत होती है, जो मोहब्बत की अज्जल गगरी को छलका रहे होते हैं। ज्ञान की तरह ही प्रेम भी जिनका बात बेबात छलक जाता है, उनमें बहुत होता नहीं है, मगर सबको मोहब्बत में होने का एक मुअम्मा, एक झूठी पहेली भी बरकरार रखनी है। अब ऐसे में अक्सर आपकी मुलाकात उन खुंद जहन लोगों से होती है जिनको लगता है कि उन्हें पता है कि आजकल सच्ची मोहब्बत की कोई वक्त नहीं रह गई है। अब उन्हें कौन बताए कि वक्त व्यापार में होती है और मोहब्बत में ये व्यापार नहीं किया जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी उसे प्रेम के नजरिए से हटाकर लेन देन, डीलिंग, व्यापार में मत समझिए। आज रजनीगंधा में मौजूए महफिल मुअम्मा मोहब्बत का।

वैसे तो नामुमकिन के बराबर ही मुश्किल है, लेकिन अगर किसी रोज जिंदगी में जरूरतों को महदूद कर लेने की क्षमता काबिलियत आ गई, उस रोज इंसान का वकार मामूली से बहुत ऊपर उठ जाता है। वैसे ही जिस रोज मोहब्बत के कारोबार से वसूली की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, बस उस रोज मोहब्बत मुकद्दस हो जाएगी। किसी से मोहब्बत करने के लिए सबसे पहले खुद को खोना पड़ता है। अगर आप हर बात में खुद अना के जहर आलूद निवाले खाकर ही खड़े हो पाते हैं, तो आप कतई मोहब्बत करने ना निकले। पहले अपनी अना को आत्मसम्मान में तब्दील कीजिए, फिर मोहब्बत की ओर एक कदम बढ़ाइएगा। उससे पहले तो कतई नहीं।

मोहब्बत को लेकर अक्सर एक बहुत ही गैर मुमकिन बात होती है, और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए उस दिन आप सच्ची मोहब्बत की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे।

दुनिया से भिड़ जाना मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि मोहब्बत के इतर भी तो जिंदगी है, और मोहब्बत सिर्फ इतनी है भी नहीं। मोहब्बत में जमाने को ठोकरों पर रखना बहुत बाद की बात है, पहले खुद से लड़ना होता है बार बार। मोहब्बत का जो मीठा जहर आप सिनेमा के भरोसे खुद को और दूसरों को बांटते फिर रहे हैं, जरा खुद को एक चिकोटी काटिए और पूछिए कि आप जो अक्सर एक बदतरीन सलूख पहले अपने साथ और फिर अपने आसपास के लोगों के साथ, परिवार के साथ करते हैं, वो भला मोहब्बत के किस अंदाज से किया जा रहा है? यकीन जानिए, आप इस सवाल से भाग तो सकते हैं, लेकिन अगर इसका जवाब मिलेगा तो पांव उखड़ जाएंगे। दुनिया भर में मोहब्बत बांटने की झूठी मुनादी से पहले ये बहाने, ये फसाने, इश्क के गढ़ने से बहुत बहुत पहले खुद से सच्ची मोहब्बत करना सीखिए।

मोहब्बत वैसी नहीं है जैसी किताबों में लिखी है, वैसी तो कतई नहीं है जैसी सिनेमा में दिखी है। मोहब्बत की खातिर, जी हां, मोहब्बत की खातिर भी

0: मोहब्बत के खाम ख्याली का ये किला बनाने में एक हिस्सा उनका भी है जिन्हें ये लगता है कि दुनिया में, ये 7 बिलियन लोगों की दुनिया में मोहब्बत के अलावा तो कुछ है ही नहीं। बस एक बार कोई मोहब्बत कर ले उनसे या उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए, दुनिया तमाम की बाकी सारी चीजें तो खुद ब खुद हो जाएंगी। ये नहीं तो वो नहीं तो कोई और बहाना बनाकर मोहब्बत को जिंदगी बताने वालों से हमेशा गिन के 100 गज की दूरी पर रहिए। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, काम के नाम पर सिर्फ विश्राम करते हैं, दौलत के नाम पर इनके पास बस उधार होता है और शोहरत के नाम पर दुनिया भर की बदनामियां। ये मोहब्बत का मुअम्मा अगर आपके आसपास कहीं मंडराए तो अपने ख्यालों से उसे फूंक कर उड़ा दीजिएगा, वरना बहुत सारी मुश्किलें पैदा होंगी। वो कभी बताएगा नहीं कि वो बहाना कर रहा है।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा,

ख्वाब में भी किसी से सच्चा इश्क किया है तो आपको उसके लिए जान की बाजी लगाने यानी जहांबाजी की जरूरत शायद न पड़े, बशर्ते आप खुद को किसी महाकाव्य का कोई नायक या नायिका न समझ बैठे। हां, आपसे मोहब्बत में बस तनिक सी समझदारी की उम्मीद हमेशा रहेगी। मोहब्बत रिश्तों की शुरुआत के लिए आहे भरने भर से काम चल जा रहा है तब तक बात चल भी जाती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कुर्बत में आए तो मोहब्बत आपको दुनियावी जरूरतों के बरक्स तौलती जरूर है। मोहब्बत किसी ख्वाब जैसी लग जरूर सकती है, लेकिन ये कभी पल भर के लिए नहीं आती, ये आएगी तो ठहर जाएगी और फिर आती ही जाएगी, और उस वक्त आपको अगर दुनियावी तालीम नहीं हासिल है तो बहुत दिक्कत होगी।

ख्वाब में तो इंसान जो चाहे कर सकता है, उड़ सकता है, एक साथ अनगिनत कहकशा में काबिज हो सकता है, मगर हम और आप जो वाकईतन दुनिया के साथ चल रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सच को महसूस करते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि ये जिंदगी तो ख्वाब में भी ख्वाब जैसी नहीं होती। यहां सच अपना इमाम दस्ता लेकर हमेशा तैयार रहता है। जब मोहब्बत सच के साथ होती है तो जिंदगी को भुलाया नहीं जा सकता। अगर मोहब्बत में वक्त की झूठी तलाश से फारिग हो गए हों तो खुद में पैदा लियाकतों को पहले वक्त की कसौटी पर कसें, और फिर अगर आप अपनी जिंदगी अपने खर्चे अपने ढंग से जीते हुए चला सकते हैं, तभी मोहब्बत की दीवानगी में सर के बल उतरें, वरना जिगर पर हाथ रखकर सोचिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है।

सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

किसी और के बगीचे की खुशबू गुल पर मर मिटने की अपेक्षा अपने बगीचे के फूलों को पानी देना बेहतर होता है। कई बार लोग मोहब्बत के खत्म हो जाने की बातें कुछ यूं कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत तो भाई साहब दुनिया में रही ही नहीं, अब कहां मिलेगी। अब उन्हें कौन बताए कि सच्ची मोहब्बत तो है, मगर जब आप उसमें वक्त तलाशते हैं तो व्यापार में तब्दील हो जाती है। मोहब्बत अना का खेल नहीं है, मोहब्बत ख्वाब भी नहीं है, मोहब्बत वैसी भी नहीं है जैसी किताबों में, रिसालों में, नगमों में सुनाई देती है। लेकिन मोहब्बत होती बड़ी मुकद्दस है, जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो अक्सर मोहब्बत को जो लोग बुरा भला कहते हैं उनसे दूर भी होने लगेंगे। फिलवक्त एक गीत, फिर समाचार उस पार, एक बार और मोहम्मा मोहब्बत का रजनीगंधा में 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।